No,

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुररंजनी में अभी आप सुन रहे थे नवल किशोर मलिक के स्वर में ध्रुपद गायन, राग थी रामकली। यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिघहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आइए आप सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में हनुमान अष्टक।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम चिंतन। इसके बाद रामचरितमानस का प्रसारण होगा। इसके बाद होगा कार्यक्रम संगीतिका। संगीतिका के बाद गीतों भरे गुड मॉर्निंग का प्रसारण किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं चिंतन कार्यक्रम में राम प्रसाद बिस्मिल के विचार।
1: नमस्कार। राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे क्रांतिकारी जो मात्र 30 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे पर झूल गए। बहुभाषाविद, साहित्यकार, अनुवादक, इतिहासकार, महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। 1915 में भाई परमानंद जी की फांसी का समाचार सुनकर रामप्रसाद ने ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की और मात्र 19 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी मार्ग पर अपना कदम बढ़ाया। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों से जो धन प्राप्त होता था उससे उन्होंने हथियार खरीदे। उनकी पुस्तकों में क्रांति का स्वर था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन पुस्तकों को जब्त कर लिया। सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में उनकी भेंट लाला लाजपत राय से हुई। लाला जी ने उनकी लिखी हुई पुस्तकें देखी तो वह बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी की अति उदारता से असहमति रखते हुए राम प्रसाद ने क्रांति का मार्ग चुना। अपने अभियान के लिए संसाधन जुटाने के लिए बिस्मिल और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटा। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में जिन 10 लोगों ने उस रेलगाड़ी को लूटा, उनमें अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, मम्मत नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती और मुरारी शर्मा जैसे लोग थे। ट्रेन जब

1927 को प्रातः बिस्मिल को फांसी दे दी गई। बिस्मिल का शव जब परिजनों को सौंपा गया तो उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोगों ने भाग लिया। राप्ती नदी के तट पर अंतिम संस्कार हुआ। इस घटना से आहत होकर भगत सिंह ने जनवरी 1929 में कीर्ति, जो पंजाबी पत्रिका थी, उसमें विद्रोही छद्म नाम से लिखा कि फांसी पर ले जाते समय जोर से कहा था वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए बिस्मिल ने कहा था, मालिक तेरी रजा और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं और न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही फिक्र और तेरी ही जुफ्त जू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर बिस्मिल ने दोहराया था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूं। महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने कई कविताएं, गजल और पुस्तकें लिखी। उनकी एक गजल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, क्रांतिकारियों का मंत्र बन गई। ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाने में, इस देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई, उनके प्रति इस देश की जनता के अंदर बहुत सम्मान है। ऐसे महान क्रांतिकारी के प्रति शत शत नमन।

चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल के विचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, प्रस्तुत है रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे रामचरितमानस से बालकांड

श्री रामचरित मानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूल की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। इसके अंतर्गत आज आपने सुना बालकांड भाग 78। श्रोताओं, 6:55 होने को हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं विहितवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां विहितवान्। सहैव जनसभामपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं समागच्छत्, यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविका निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अन्तिमा तिथिः जून मासस्य 7 पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। सीबीएसई परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15

0: किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भंडारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अण्डमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति। सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपराम् सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैम्पलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्रीपुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारम्भो विहितः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकासयात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पञ्जीकृतं 7.7% जीडीपी विकासं निर्दिश्य श्रीशाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणां अंडर 18 इति आ 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां आ 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुयोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुयोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर-18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर-18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना स्तुति तिवारी के गाए भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:30 होने के हैं और पूरे 25 सेकेंड हो चुके हैं। ये समय है कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का। आज के गीतों भरे इस सफर में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट
1: सुषमा। और दोस्तों, हमेशा की तरह आज थोड़ा सा दिन तो बदला ही है, आवाज थोड़ी सी अलग है आज, क्योंकि शो तो रोज होता है सिद्धार्थ, आपने भी देखा है, लेकिन रोज हमारी अंदाज बदल जाते हैं, आवाजें बदल जाती हैं। और सुबह का जो मौसम होता है, सुबह सुबह की जो बात होती है वो अलग ही होती है। उसमें कहते हैं ना कि जोश बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और कहते हैं कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, यानी शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो आपका दिन खूबसूरत रहता है, अच्छा रहता है। और कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग करने के लिए जब भी हम किसी से गुड मॉर्निंग या सुप्रभात बोलें तो चेहरे पर मुस्कुराहट होनी बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है तो वो दूसरों को के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखेर देता है। क्यों सुषमा?
1: बिल्कुल, आपने बहुत पते की बात बोली। और एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, और ये भी कहा जाता है कि जिंदगी की खूबसूरती इसी बात पर निर्भर करती है कि आप उसे किस नजर से देखते हैं और किस नजरिए से आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। और देखिये, ये आपने देखा होगा सिद्धार्थ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम सुबह की शुरुआत करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है कि आज दिन भर हमें क्या क्या करना है। तो कई बार हम सोचते हैं कुछ भी काम, अरे ये करना है, तो पहले से इतना बोझ मान के चलते हैं, अरे आज ये भी करना है, बहुत सारी, और टेंशन में आ जाते हैं। तो मैं तो यही करूंगी कि भाई, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, टेंशन मत लीजिए, बिना टेंशन के सुबह की शुरुआत करिए। और सुबह जितनी खूबसूरत होगी, जिंदगी को जितना खूबसूरती के साथ और हल्के फुल्के अंदाज में देखेंगे तो उतनी ही अच्छी लगेगी।
0: बिल्कुल, सुबह बेहद खूबसूरत है। और जैसा कि दिल्ली का

0: मौसम भी पिछले दो दिनों से बेहद खूबसूरत और खुशनुमा बना हुआ है, क्योंकि बारिश के बाद अब इस समय सुबह जो है किस तरह का मौसम है, इस मौसम को हम आइए आप तक पहुंचाते हैं इस गीत के माध्यम से।
1: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत है और सभी श्रोताओं का हम एक बार स्वागत भी कर लेते हैं अपने इस प्रोग्राम में, गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल भी, जुड़ जाइए हमारे साथ।
0: गुड मॉर्निंग
1: जी।

जी हाँ, कोयल भूली दुनिया डोली, सुबह सुबह का वक्त और पक्षियों की ये चहचहाहट, और सामने से एक जिस तरह

0: का पूरा दृश्य उभर कर आता है। जैसा कि हमने बात करी कि सुबह का वक्त एक सकारात्मक सोच का है, एक एक एक खुश रहने की वजह आपको देता है। और सुषमा, मुझे ऐसा लगता है कि खुश रहने के लिए कोई बड़ी वजह का होना आवश्यक नहीं है, हम अपने आप में भी खुश रह सकते हैं। और कई बार तो बहुत छोटी छोटी बातों पर अगर हम खुश हो सकते हैं तो यही जिंदगी का सार होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने सिद्धार्थ, क्योंकि हम मैंने जिसे पहले भी कहा था ना कि लोग हम हमारा ये स्वभाव बन गया है सब लोगों का कि छोटी छोटी बातों को लेके ना हम टेंशन में आ जाते हैं। हम कहते हैं अरे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है ऐसी करके। बट छोटी छोटी खुशियां अगर हम आसपास देखते हैं तो छोटी छोटी छोटी छोटी चीजों में ही हमें खुशी मिलती है, जो कि हमने शायद अब जीना छोड़ दिया है। वो जो सीख मिलती थी हमें आसपास पहले हमने बड़े बूढ़ों से, वो शायद उनकी वो कमी, क्योंकि हम अब बड़े बूढ़ों के साथ नहीं रहते, क्योंकि उनसे हम सीखते थे पहले कि छोटी छोटी बातों में ही कैसे अब खुश रह सकते हैं। तो छोटे छोटे बहाने ढूंढिए खुश रहने के लिए, हम यही कहेंगे। क्योंकि आप सुन रहे गीतों भरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम, आपकी अपनी दोस्त सुषमा और
0: सिद्धार्थ के साथ। और जैसा कि सुषमा ने कहा कि छोटी छोटी खुशियों को ढूंढते हैं, तो आज सुबह सुबह से ही प्लान हैं कि पहले तो किसी और को खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि पहले हम खुद को खुश करें। तो सबसे पहले एक बार आईने में देखिए, खुद मुस्कुराइए और बोलिए आज मैं बेहद खुश रहने वाला हूं इस गीत के साथ।

0: जी हाँ, ये तो बात थी खुशी की। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब दुनिया में आते हैं तो सबको खुशी दे जाते हैं, क्योंकि हम सभी इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपने जीवन में ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि उनको हम हमेशा याद रखते हैं, याद करते रहते हैं। और कुछ इसी तरह की एक शख्सियत हैं जिसको आज हम याद कर रहे हैं। राजेंद्र कृष्ण दुग्गल, जिनका पूरा नाम है, वो उनकी आज जयंती है, जो कि बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक थे। उन्होंने एक से एक बढ़कर फिल्में की, उन्होंने जो इस तरह के गीत गीत लिखे और उन्होंने पटकथा लेखन किया। कुछ फिल्मों के नाम अगर हम आपसे शेयर करें तो जंजीर, प्यार की जीत, अलबेला, अनारकली, आज़ाद, भाई भाई, देख कबीरा रोया, छाया, पतंग, बहुत सी ऐसी फिल्में थीं जिसके लिए उन्होंने मतलब उनको याद किया जाता है। और इस तरह की शख्सियत जब भी आती है, आपको एक पड़ोसन फिल्म याद होगी, क्या आपको याद है?
1: और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूंगी,
0: जी
1: आप राजेंद्र जी की बात कर रहे थे तो
0: जी
1: उन्हें खानदान फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसके लिए उन्होंने उन्हें एक नेशनल अवार्ड भी मिल चुका था उस फिल्म के लिए। और अगली जो फिल्म आपने निकाली हुई है वो भी बहुत ही खूबसूरत है और उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते
0: जी बिल्कुल। ये
1: हैं।
0: पड़ोसन फिल्म की हम बात कर रहे थे। 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और जिसके डायरेक्टर थे ज्योति स्वरूप, और ये फिल्म महमूद और एनसी सिप्पी ने प्रोड्यूस की थी, लेकिन इसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। और इस फिल्म में, क्योंकि जब भी हम हंसते मुस्कुराने की बात करते हैं तो पड़ोसन फिल्म सबको पीछे छोड़ देती है। जिस तरह का अभिनय का अंदाज इस फिल्म में देखने को मिला, सुनील दत्त और किशोर कुमार साहब को, महमूद का जो अंदाज था, तो उसने इस फिल्म ने सबके दिलों में राज किया।
1: और मैं
0: तो
1: बताऊं आपको
0: जी
1: सिद्धार्थ कि आज भी अगर ये टीवी पर आ रही होती ना तो मैं तो इवन से यूट्यूब पर भी हम ढूंढ ढूंढ कर कोशिश करते हैं कि इस फिल्म को कभी देखें और अपना मूड जो है वो लाइट कर लें थोड़ा सा।
0: जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं फिल्म पड़ोसन का ये गीत।

0: दोस्तों, इस समय प्रोग्राम चल रहा है गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, और आज हम बात कर रहे हैं कि गुड मॉर्निंग कैसे हो सकती है बिना मुस्कुराहट के, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी मुस्कुरा ही देता है। और सबसे बड़ी खुशी जीवन की वो होती है जिसमें सुषमा हम अगर हम कहते हैं कि जीना उसका नाम है जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दे, आपकी कोई बात से कोई मुस्कुरा दे, आपको याद करके कोई हंस पड़े, कोई खुश हो जाए, तो कितनी अच्छी बात होती है सुषमा।
1: बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना कि एक फर्स्ट मतलब सामने वाले को भी सहज कर देता है जब आप मुस्कुरा के उससे बात करते हैं या तो एक स्माइल पास करते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत सीरियस रहते हैं तो हर कोई दूर दूर भागेगा, नहीं नहीं इसके पास नहीं जाना है। और सुबह की शुरुआत जितना मुस्कुरा के करें और तो हर चीज आपको खूबसूरत नजर आएगी। वैसे तो सुबह ही नहीं, पूरा दिन भर मुस्कुराते, ऐसा नहीं कि आनंद ससुरी मुस्कुराते रहे, लेकिन हाँ जब आप एक एटिकेट भी है कि आप किसी से मिलते हैं तो आप एक हल्की सी स्माइल हमेशा मुंह पर लाकर आप चेहरे पर अपने रखें और फिर आप बात करें।
0: बिल्कुल, और कहते भी हैं कि ऐ गमे जिंदगी ना हो नाराज, मुझको आदत है मुस्कुराने की। क्योंकि कई बार मुझे लगता है सुषमा, वॉरियर या योद्धा

0: वो नहीं, सिर्फ वो ही नहीं होता जो युद्ध के मैदान में होता है, योद्धा वो भी होता है जो दिल में दर्द रखकर अपने होठों पर मुस्कुराहट भी रख सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत आपने तो लाख टके की बात बोली है ये, और हम तो सुबह सुबह ही अपने
0: जी
1: सारे श्रोताओं को यही कहेंगे कि चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों जिंदगी के, हमेशा मुस्कुराते हुए हर एक पल और हर एक क्षण को आप फेस करिए, उसका सामना करिए, क्योंकि लड़ना आपको है, जूझना आपको है उस चीज से, पर मुस्कुराते लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल सुषमा, मैं तो यही कहूंगा कि तुम हंसो तो दिन निकले, चुप रहो तो रातें हैं, किसका गम कहाँ का गम, सब फजूल बातें हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो भाई ये सब तो दुनियादारी है, चलती रहती है, संघर्ष भी करना है, जीवन को भी जीना है, लेकिन मुस्कुरा के जिएंगे तो हजारों यादें साथ रहेंगी।

0: जी हाँ, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं मुस्कुराहट की, जिंदगी की, कि किस तरह से हंसते गाते जब हम जिंदगी के सफर पर आगे बढ़ते हैं तो इस सफर का पता ही नहीं चलता है। और कहते हैं कि जिंदगी कभी सपाट नहीं होती, इसमें उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि इसी का नाम तो जिंदगी है। सुषमा, कभी हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई मुसीबत आती है, तो
1: जी
0: कभी
1: जी
0: हमारा सफर बहुत अच्छा रहता है। तो इसी तरह से उतार और चढ़ाव को जब हम एक ही तरीके से लेते हैं ना, बहुत ज्यादा जब हम हमारे

0: पास खुशी होती है तो हम उड़ते नहीं हैं, और जब हम हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम एकदम गिरते नहीं हैं, हम दोनों को बराबर से फेस करते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी को जीने का जो हौसला होता है वो मजबूत रहता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम सारे श्रोताओं से भी यही कहेंगे कि जिंदगी में देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा कि जिंदगी तो इसी का नाम है ना, उतार चढ़ाव आएंगे, खुशी गम सब कुछ होगा, बस अपने आप को सहज करके हर एक चीज को सहना है, उसे उसका मुकाबला करना है और आगे बढ़ते जाना है।
0: बिल्कुल जिंदगी का, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अगर इस सफर में कोई हम सफर मिल जाता है तो कहते हैं कि जिंदगी और भी ज्यादा हसीन हो जाती है, क्योंकि जिंदगी जब और ज्यादा हसीन होती है हम सफर मिलने के बाद, तो कुछ दिल के ख्याल इस तरीके से होते हैं।

0: और सिद्धार्थ, इस खूबसूरत गीत के साथ अब हमारा ये गीतों भरी गुड मॉर्निंग का सफर यहीं खत्म होने को है।
1: तो इजाजत लेते हैं, विदा।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 8 बजने को हैं, अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी और उर्दू में। तो आइए सुनते हैं देश दुनिया के समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा

0: रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा, क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
6: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि

0: पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार

0: लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान। इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन पर्प्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra, the headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
3: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदा, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय महीशत आलमी इक्तसादी बुहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रागिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजिन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के मकसद से अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम के शिमाली जिलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम की है। वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इक्तसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की जबरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई है। कल शाम दमन में तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के बाद एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में कायम है। उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुल्क बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की और गरीबों के लिए फलाही स्कीमों को तरजीह देते हुए अपनी

0: तेज रफ्तार इस्लाहात के साथ आगे बढ़ेगा।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया एक सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रही है और भारत माहौलियाती तहफ्फुज़ के साथ इक्तसादी तरक्की को मुतवाज़न बनाकर इस रास्ते पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले जनाब मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज किया। इज्तम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने इशारा दिया कि भारत की काबिल तजदीद तवानाई की 250 गीगावाट की सलाहियत में से गुजरात अकेले ही 50 गीगावाट फराहम करता है जो भारत की माहौल के लिए साजगार तवानाई का एक अहम 5वां हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अमोनिया की तरफ मुंतकिल होने में एक बड़ा रोल अदा करने के लिए तैयार है जो तवानाई के मैदान में खुद कफील बनने के लिए लाजमी है।
1: दुनिया अब हरित युग की तरफ ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
0: सूरत में यकसर तब्दीली के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने शहर के जज्बे और इसकी सरसब्ज शहर में मुंतकिली की तारीफ की। उन्होंने सूरत के सर्कुलर आबी मईशत के मॉडल और कचरे से दौलत बनाने की पहल को सराहा जो पिछले 12 साल में एक अवामी तहरीक बन गई है। सूरत पहुंचने के बाद वजीर आजम ने सबसे पहले हजीरा का दौरा किया और सनती नीज बुनियादी ढांचे के कामकाज का जायजा लिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन जाब्तों को मजीद आसान बनाया है जिनके तहत सरकारी तमस्कात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां FPIs सरमाया लगाती हैं। इस ताज़ा फ्रेमवर्क का मकसद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए सरमायाकारी को मजीद आसान बनाना और अमल दरामद की पेचीदगियों को कम करना है। तफसील मुंबई के हमारे नामनिगार से।
2: इस ताज़ा फ्रेमवर्क के तहत जो गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां सरमाया लगा रही हैं उन्हें मजीद सहूलत दी जाएगी क्योंकि बहुत सी बंदिशें खत्म कर दी गई हैं। RBI ने आम और तवील मुद्दती सरमायाकारी के मौजूदा ज़ुमरों को मरकजी सरकारी तमस्कात और रियासती सरकारी तमस्कात को एक दूसरे में जम कर दिया है। माली साल 2026-27 के लिए मरकजी सरकारी तमस्कात के लिए सरमायाकारी की हद साल की पहली छमाही के लिए 4,62,490 करोड़ रुपए पर और साल की दूसरी छमाही के लिए 4,77,600 करोड़ रुपए तय कर दी है। रियासती सरकारी तमकसात के लिए जवाबी हदूद 1,53,043 करोड़ रुपए और 1,64,242 करोड़ रुपए भी तरतीब मुकर्रर किए हैं। ये ताज़ा हिदायत फौरी तौर से लागू हो गई हैं। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: ज़िराअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने कहा है कि मुल्क में 9,42,000 से ज्यादा किसान जून के महीने तक खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं जिसकी वजह से कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल की यह मुहिम एक मुल्कगीर अवामी तहरीक बन गई है। इस मुहिम का आगाज ज़िराअत और किसानों की बहबूद की मरकजी वजारत ने किया है जिसका मकसद कीमियावी खादों के मुतबादिल इस्तेमाल को फ़रोग देना, मिट्टी की जरखेजी को बरकरार रखना और मुस्तकिल ज़रई तौर तरीकों की हौसला अफजाई करना है। एक रिपोर्ट।
3: ज़राअत की वजारत ने बताया कि इस मुहिम के तहत अभी तक 17,800 से ज्यादा अबदेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए जा चुके हैं जिनमें तकरीबन 6,98,000 किसानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा तकरीबन 3,700 तरबियती प्रोग्राम मुनक़द किए गए जिनमें 1,57,000 से ज्यादा किसानों को कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल, मिट्टी की जरखेजी को बरकरार रखने और साइंसी ज़राअत की तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। वजारत ने बताया कि इस तरबियत का मकसद मिट्टी की तवील मुद्दती जरखेजी और कीमियावी खादों पर ज्यादा इन्हिसार में कमी लाना है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नंबरों की तस्दीक और जवाबी पर्चों की दोबारा

0: जमानत के लिए दरख्वास्त देने की तारीख में तौसी करके इसे 7 जून तक कर दिया है। सोशल मीडिया पर दी गई एक पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि तलबा अब इतवार की रात तक अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। CBSE के मुताबिक उसने तलबा के मफाद के खातिर ये फैसला किया है कि ताकि दरख्वास्त के अमल को मुकम्मल करने के लिए उन्हें मजीद वक्त फराहम किया जा सके। इससे पहले उसकी आखिरी तारीख का सबूत थी। इससे पहले उसकी आखिरी तारीख 6 जून थी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल के साथ बातचीत करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों फरीक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे, जिसका मकसद अहम शोबों में तआवुन को बढ़ाना है, जिनमें तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तवानाई और अवाम के दरमियान रवाबित शामिल हैं। जनाब खनाल अभी भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खसूसी शराकत दारी को मजीद मजबूत करने में मदद मिलेगी। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत के पास नेपाल के साथ एक वसी तर एजेंडा है, जो तरक्याती तआवुन और अवाम के दरमियान रवाबित तिजारत और सरमायाकारी तक मुहित है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत इस कसीर जहती शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की अपनी आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और उसे चाहिए कि वह अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान की महज लफाजी और खोखले दावे इस बुनियादी हकीकत को नहीं बदल सकते कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अटूट और अलग न हो सकने वाला हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुनाफरत फैलाने वाले अपने सियासी मफादात के लिए बहुत सी गलत मालूमात फैलाकर और गुमराह कुन बातें करके काउंसिल में अपनी मौजूदगी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो जनरल असेंबली को दी गई काउंसिल की सालाना रिपोर्ट पर एक मुबाहिसे के दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके के बारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा आसिम इफ्तखार अहमद की तरफ से जिक्र किए जाने का जवाब दे रहे थे। अमरीकी फौजों ने ईरान के उन 4 ड्रोन्स को मार गिराने के बाद जिन्होंने इलाकाई समंदरी ट्रैफिक को निशाना बनाया था, आबनाए हुरमुस के करीब ईरान की साहिली निगरान रडार तंसीबात पर हमला किया है। अमरीकी मरकजी कमान ने बताया कि उसने मजीद हमलों से बचने के लिए ग्रुप और किशन जजीरे पर ईरान के साहिली निगरान रडार मकामात पर हमला किया है। यह हमला 3 महीने से जारी इस जंग में ताजा तरीन हमला है, जिसकी वजह से अमरीका और ईरान के दरमियान अमन बातचीत में जारी तातुल में और भी शिद्दत आ गई है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशें रुकी हुई हैं। इन कोशिशों में जिस बात की वजह से तातुल आगाया हुआ है, ईरान के बैरून मुल्क मुंजमद असासों में से अरबों डॉलर जारी करने का ईरान का मुतालबा। ईरान के अफसरान ने किसी अबूरी समझौते पर पेशरफ को फंड्स के इंजमात को खत्म करने से जोड़ दिया है, जबकि अमरीका मुजाकरात में इस मामले पर पीछे हटने से हिचकिचाता रहा है क्योंकि वो इस मामले को मुजाकरात का एक अहम पहलू समझता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अब जबकि केरल में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो चुका है, भारत के महकमे मौसमियात ने रियासत के शिमाली जिलों में 9 जून तक नहायत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मल्लापुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगाड अजला में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलबत्ता कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट बरकरार रहेगा। शतरंज के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कैमर आखिरी मरहले में हराकर ये जीत हासिल की है। नॉर्वे शतरंज के मुकाबले में सिर्फ दूसरी बार हिस्सा लेने वाले प्रज्ञानंद ने इस मुकाबले का बेहतरीन अंदाज में इख्तिताम किया है। इन मुकाबलों के दौरान उन्होंने आलमी नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 मरतबा हराया है। गोवा के शहर मारगांव में जारी सैफ फुटबॉल खवातीन चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा है। भारत अब तक 5 बार इस खिताब को जीत चुका है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया असलम। قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات

0: सूर्यकांत के इस बयान को नुमाया किया है कि इंसानियत और इंसाफ के सामने AI सबसे बड़ा चैलेंज, मसनूई ज़हानत की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल पर जोर। अखबारात ने सनअती हल्के के इस रद्दअमल को अहमियत दी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एरानात सरमायाकारी बढ़ाने वाले। इसके अलावा अखबारात ने मीनाक्षी मदन राय की पटना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेने की खबर को भी सफे अव्वल पर जगह दी है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत आलमी इक्तसादी बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रगिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजिन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के मकसद से अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमा मौसमियात ने केरलम के शिमाली जिलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम की है, वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, स्वास्थ्य केवल रोगों से मुक्ति का नाम नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की एक अवस्था है। आज के इस विशेष अंक में पर्यावरण संरक्षण, बच्चों के पोषण तथा गर्मी की छुट्टियों में स्वास्थ्य संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपको जानकारी देंगे। स्वस्थ जीवन की कल्पना एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के बिना नहीं की जा सकती। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, हरियाली और संतुलित प्राकृतिक संसाधन हमारे अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला है। यही संदेश लेकर हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज का बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक कचरा और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। सांस संबंधी रोग, हृदय रोग, गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं और जल जनित बीमारियां कहीं न कहीं पर्यावरणीय असंतुलन से जुड़ी हैं। आइए सुनते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर ये विशेष संदेश।
4: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके साथ जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर एवं चिंताजनक विषय पर कुछ चर्चा करूँगा। दोस्तों, हर वर्ष 5 जून को संयुक्त राष्ट्र संगठन के तत्वाधान में हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण यानी हमारी पृथ्वी पर उपस्थित मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं और एवं पेड़ पौधों के जीवन का आधार। पृथ्वी का पर्यावरण ही इसे हमारे सौरमंडल में उपस्थित अन्य ग्रहों से अलग बनाता है और इसी वजह से यहाँ जीवन संभव हुआ है। लाखों वर्षों से पृथ्वी के पर्यावरण ने जीवन को संभाल कर रखा है, परंतु मानव सभ्यता के विकास की प्रक्रिया में पिछले एक शतक में हमने पृथ्वी के जीवनदायी पर्यावरण को इस प्रकार से चुनौती दी है कि इसकी प्राकृतिक क्षमताएं निरंतर कमजोर होती जा रही हैं। इसी पर्यावरण का एक अंश है जलवायु। जलवायु यानी हमारे वातावरण का तापमान, बरसात, आर्द्रता, हवा की गति और सौर्य विकिरण। हमारी पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। जलवायु परिवर्तन यानी पृथ्वी एवं समुद्र का बढ़ता तापमान, बेमौसम बरसात, अत्यधिक गर्मी और शीतलहर की बढ़ती हुई घटनाएं। दोस्तों, औद्योगिकरण, शहरीकरण और निरंतर

तर बढ़ते यातायात के बोझ से कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा में बढ़ोतरी, ओजोन की परत में सुराग और धरती के सतह पर ओजोन की मात्रा के बढ़ने जैसी घटनाएं जीवन के लिए विभिन्न रूप में हानिकारक साबित हो रही हैं। मसलन पृथ्वी एवं समुद्र के तापमान का बढ़ना एवं परिणाम स्वरूप जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन एवं आकस्मिक प्राकृतिक आपदाओं से जैसे बाढ़, भूस्खलन, तूफान और बवंडर जैसी घटनाओं में तेजी से वृद्धि होना। इसी तरह से मौसम की आवृत्ति में बदलाव जैसे असामयिक बारिश का होना, ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडे दिनों की वजह से फसलों पर कुप्रभाव, बीमारियों और असामयिक मृत्यु की दरों में वृद्धि जैसी अवांछनीय घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह परिवर्तन हानिकारक है और सभी जीवों के लिए एक चुनौती बनकर उभर रहा है। प्रकृति के विरुद्ध जाकर उन्नति का यह मार्ग आने वाली पीढ़ियों और अधिक कठिन एवं शरीर को रोगी बना देगा। पृथ्वी के बढ़ते तापमान से मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस और अन्य संक्रामक रोगों की चपेट में नए क्षेत्र शामिल होते जा रहे हैं। यह कहीं से भी मानवता के लिए शुभ एवं वांछनीय नहीं है। इसका प्रभाव सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित नहीं है, यह पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और प्राकृतिक संपदाओं पर निरंतर दुष्प्रभाव डाल रहा है। इसलिए मित्रों, समय आ गया है जब हमें जलवायु परिवर्तन की इस प्रक्रिया को सिर्फ रोकना ही नहीं है बल्कि इसे विपरीत दिशा में मोड़कर पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर से सुरक्षित एवं जीवन योग्य बनाना है। साथ ही वर्तमान में वो सभी उपाय करने होंगे जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के साथ साथ हमें भी इसके कुप्रभावों से बचाकर रख सके, और ये जिम्मेदारी हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से उठानी होगी। हमारे व्यक्तिगत प्रयास ही देश के और विश्व के संस्थागत प्रयासों को मजबूत बनाएंगे और हम सामूहिक रूप से इस त्रासदी का सामना कर पाएंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी जीवन शैली में ये परिवर्तन लाएं जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से आपको सुरक्षित रखेंगे और जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकने में मददगार होंगे। इस मुहिम में सबसे पहला कदम हमारा, हम पैदल चलें, साइकिल चलाएं और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को प्राथमिकता दें। खनिज ईंधन के उपयोग को कम करना जलवायु संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कार्बन और ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन में कमी आएगी। पैदल चलने और साइकिल चलाने से शारीरिक व्यायाम होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ शहरों में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। बिजली का इस्तेमाल कम करें, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें, सूर्य की रोशनी से घर में उजाला रखें, एयर कंडीशनर के बजाय ताजी हवा से घर को ठंडा रखें, ठंडे पानी में कपड़े धोएं और प्राकृतिक हवा में सुखाएं। जितनी बिजली की खपत ज्यादा होती है उतनी ही बिजली उत्पादन करने में खनिज तेल का उपयोग होता है, मशीनें चलती हैं और वातावरण में तापमान बढ़ता है। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। ये हमारी संस्कृति में एक प्रचलित पुरानी कहावत है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल जलवायु को प्रतिकूल बनाता है। यह सभी उपकरण आज जिंदगी के अभिन्न अंग है, परंतु इनके उपयोग को आवश्यकता अनुसार सीमित किया जा सकता है। सभी उपकरणों का इस्तेमाल ऊर्जा पर आधारित होता है और जितनी ऊर्जा हम खर्च करते हैं उतनी ऊर्जा पैदा करने की प्रक्रिया में जलवायु पर कुप्रभाव पड़ता है। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में खाने पीने की वस्तुओं का चुनाव महत्वपूर्ण साबित होगा। पेड़ और पौधों से मिलने वाला खाना जैसे सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और मेवा इत्यादि को उगाने और इनको प्रोसेस करने में कम पानी और जमीन की जरूरत होती है। वहीं जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन को पकाने में ज्यादा ईंधन और पानी की जरूरत होती है। इसलिए अपने भोजन की शैली को बदलना, अधिक से अधिक पेड़ पौधों से मिलने वाला खाना खाना और प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड के इस्तेमाल को कम करना जलवायु परिवर्तन रोकने में मददगार साबित होगा। आखिर में दोस्तों, दुनिया भर में जितना भोजन पकाया जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा खाया नहीं जाता, कंज्यूम नहीं किया जाता और इससे भोजन बर्बाद होता है। इसलिए जरूरत से अधिक भोजन बनाना और फिर उसका उचित सेवन न कर पाना भी पानी और ऊर्जा की बर्बादी है। जितनी ऊर्जा हम बचाएंगे
जितना पानी हम कम खर्च करेंगे प्रकृति एवं जलवायु उतने ही सुरक्षित रहेंगे। हमारा ये भी कर्तव्य बन

0: है कि हम अपने आसपास की हरियाली को सुरक्षित रखें, जंगलों को काटने ना दें, ताकि प्रकृति अपने संसाधनों से अपने आप को अक्षुण्ण रख सके। शहर की हरियाली और ग्रामीण इलाकों के जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं। इन्हीं की बदौलत हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारी जिंदगी का आधार है। उत्पादित सामग्री का उपयोग हम कम करने का प्रयास करें, हम कम खरीदें और उनका इस्तेमाल जहां तक संभव हो सके लंबे समय तक करें। जल्दी जल्दी चीजों को बदलना यानी नई चीजें खरीदना उत्पादन बढ़ाती है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा पानी और प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत, इसलिए वहां पे संयम बरतना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। वायु प्रदूषण एक जटिल समस्या है। शहरों में, खास करके हमारे देश के बड़े शहरों में, प्रदूषण बहुत बढ़ा हुआ है और यह प्रदूषण भी जलवायु परिवर्तन की नकारात्मक घटनाओं को बढ़ाता है। हमारा हर कदम जो ऊर्जा बचाता है, पानी को संरक्षित करता है, प्रकृति को सुरक्षित रखता है, वह जलवायु परिवर्तन को भी रोकता है। हमारे व्यक्तिगत स्तर पर उठाए गए यही छोटे छोटे कदम सामूहिक स्तर पर क्रांतिकारी साबित होंगे। धरती फिर से जीवंत होगी, जलवायु अनुकूल होगी, जीवन की खुशहाली लौटेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, हम हमारे जीवन की सार्थकता को महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद।
1: अभी आप विश्व पर्यावरण दिवस पर डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, UCMS और GTB अस्पताल नई दिल्ली का ये विशेष संदेश सुन रहे थे। आइए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक के उपयोग को कम करेंगे, जल और ऊर्जा का संरक्षण करेंगे और स्वच्छता को बढ़ावा देंगे। याद रखिए, स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ भविष्य की कुंजी है। श्रोताओं, पर्यावरण और स्वास्थ्य का संबंध जितना गहरा है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सही पोषण। कहा जाता है कि स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ जीवन की नींव है, और इस स्वस्थ बचपन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है उचित पोषण। बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले तो न केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनते हैं बल्कि उनका मानसिक और बौद्धिक विकास भी बेहतर होता है। आइए सुनते हैं बच्चों में सही पोषण विषय पर भेंटवार्ता, जिसमें विश्व कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे के संदर्भ में भी जानकारी शामिल है। हमारी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और IAP वेस्ट दिल्ली की प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर राधिका सचदेव। भेंट करता है रश्मि गुप्ता।
2: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पोषण क्या है और बैलेंस डाइट से हमारे लिसनर्स क्या समझें।
3: पोषण या फिर बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सही मात्रा में एज के हिसाब से हर चीज होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में, जिससे बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट एडिक्वेटली पूरी हो सके और बच्चे की ग्रोथ,
2: जी
3: फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, उस पे सब कुछ का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो अच्छे से हो सके।
2: जी, जी।
3: इतनी मात्रा में कितनी चीज कैसे दी जाए।
2: तो किस उम्र से बच्चों को सही पोषण मिलना चाहिए और किस उम्र तक माता पिता को पोषण का खास ख्याल रखना चाहिए?
3: सही पोषण तो एक गर्भवती स्त्री से ही स्टार्ट हो जाता है।
2: जी, जी।
3: क्योंकि अगर बच्चा अच्छा पैदा होगा तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। और हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं शुरू के 1000 दिन।
2: अच्छा।
3: मतलब जो प्रेगनेंसी के 9 महीने हुए
2: जी,
3: प्लस 2 साल, वो पोषण अगर सबसे अच्छा हुआ, माँ ने आयरन कैल्शियम की गोली ली, अच्छा आहार लिया, अच्छी नींद ली, और फिर बच्चा अच्छा होगा, सही टाइम पे होगा, बच्चे का वेट अच्छा होगा, फिर 6 महीने तक बच्चे ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किया
2: जी,
3: सिर्फ माँ का दूध पिया, कुछ भी और नहीं, उसके बाद जैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां से लेके बच्चे की नींव जो बनती है वो इसी टाइम पे बनती है, उससे लेके एडोलेसेंट तक, एडल्ट तक, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जो बच्चे खाते हैं, हम शुरू में बोलते हैं कि पहले 1 साल नमक नहीं देना, चीनी नहीं देनी, 2 साल तक चीनी नहीं देनी, क्योंकि आगे देखा जा रहा है कि जो पहले हमारी जनरेशन में जब डायबिटीज और हाइपरटेंशन होता था, ओबेसिटी होती थी, वो आजकल जल्दी हो रहा है। तो बैलेंस डाइट का कंसेप्ट तो प्रेगनेंसी से ही शुरू हो जाता है।
2: अच्छा, जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी से ही बच्चे का जो पोषण है वो स्टार्ट हो जाता है, जब नवजात शिशु की यदि हम बात करते हैं तो उसको पोषण के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, और खास तौर पे जो शुरुआत के 6 महीने आपने बताए कि माँ का जो दूध होता है वो संपूर्ण आहार

0: की तरह काम करता है, ऐसा किस लिए?
1: क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चा माँ के अंदर इतना सुरक्षित होता है, तो बाहर निकल के भी उसको ऐसी चीज मिलनी चाहिए जो वो सुरक्षित रहे आगे भी। माँ के दूध में ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं, नेचुरली की बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। उसमें ऐसे एंटीबॉडीज, ऐसे एंजाइम्स, ऐसे तत्व होते हैं जिनसे ये सब बच्चा फाइट कर सकता है और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। प्लस उसमें इतना पानी होता है, इतना फैट, इतना कार्बोहाइड्रेट, वो अपने में ही एक बैलेंस डाइट है। तो पैदा होते ही चाहे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो चाहे ऑपरेशन से हो,
0: जी,
1: 1 से 4 घंटे के अंदर माँ की छाती पे लगाकर इसको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। और उसके लिए कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग शहद चटाते हैं या पानी पिला देते हैं, घुट्टी दे देते हैं, ग्राइप वाटर दे देते हैं। तो प्लीज याद रखें, पहले 6 महीने में माँ के दूध में इतना पानी होता है, इतनी पौष्टिक तत्व होते हैं कि उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जो माँ के दूध में शुरू में आता है उसको बोलते हैं 4 मिल्क।
0: अच्छा।
1: उसमें होता है पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब कुछ होता है।
0: अच्छा।
1: तो वो बच्चे की थर्स्ट को पूरा कर देता है। और अगर गर्मी है, बच्चा बार बार प्यासा हो रहा है, तो वो बार बार दूध पिएगा तो 4 मिल्क ज्यादा जाएगा। और लास्ट के कुछ मिनट में जो मिल्क आता है वो हाइंड मिल्क होता है, उसमें फैट होता है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, गर्मियों में पानी ना शुरू करें 6 महीने तक। दूसरा, प्री लैक्टियल फीड्स वो नहीं दे। तीसरा, एक बार में एक तरफ से पिलाएं, फिर 2 से 3 घंटे बाद या बच्चा दब डिमांड करता है तो दूसरी ब्रेस्ट से पिलाएं।
0: 6 महीने के बाद बच्चे के आहार में क्या बदलाव करना चाहिए और किस तरह का ठोस आहार देना चाहिए?
1: आज लकीली मैं बहुत अच्छे दिन आई हूँ। आज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे मनाती है। तो पहले कंसेप्ट था वीनिंग का, कि आप बच्चे को ब्रेस्ट से वीन ऑफ कर दीजिए और ऊपर का खिलाना शुरू करिए। अब कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का, कि आप ऐसा आहार शुरू करें जो ब्रेस्ट मिल्क को कॉम्प्लीमेंट करे। ब्रेस्ट मिल्क आप स्तनपान 2 साल तक चला सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही 6ठा महीना खत्म हो, अब 6ठा महीना क्यों चुना? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बच्चे की गर्दन संभल जाती है, बच्चा बैठने को तैयार हो जाता है, सपोर्ट से या बिना सपोर्ट के बैठना शुरू कर देता है। बच्चे की जो जीप के मसल्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, जो जबड़े के मसल्स हैं वो भी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। तो बच्चा थोड़ा सा स्वॉलो करना सेमी सॉलिड चीजों को और निगलना, थोड़ा दांत आने शुरू हो जाते हैं 6 महीने से, चबाने की प्रक्रिया, ये सब सीखना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं 6 महीने से। अब क्या शुरू करें? घर की चीजों से शुरू करें, बाहर के सामान से नहीं शुरू करें, अनलेस आप ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेन में है। अब घर का क्या सामान, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि दाल का पानी, चावल का पानी, दूध में बिस्किट डाल के या रोटी को दूध में गला के या छनी हुई चीजें,
0: अच्छा,
1: फल के जूस छान के, सब्जियों को मिक्सी में पीस के, ये ना दें।
0: अच्छा, ये नहीं देना?
1: बिल्कुल नहीं देना। तो पहले बात करी जो नहीं देनी, अब देना क्या है? पूरी दाल दीजिए, मूंग दाल दीजिए, खिचड़ी दीजिए, दलिया दीजिए। दलिये को आप ग्राइंड करके रख सकते हैं, दाल और सब्जी के साथ बना सकते हैं। जैसे 6 से 8 महीने का बच्चा है तो 2 बार खाना, 1 बार सीजनल फल।
0: अच्छा।
1: 9-10 महीने का बच्चा है, 3 बार खाना, 1 बार फल। 11 और 12 महीने पे 4 बार खाना, 1 बार फल। मतलब 1 साल का बच्चा जितना हम खाते हैं उससे अप्रोक्सीमेटली आधा खा सकता है। एक ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, रात का खाना और बीच में स्नैक। अब स्नैक में आप उबला हुआ आलू दे सकते हैं, उबली हुई शकरकंदी मैश करके दे सकते हैं, सीजनल फल खिलाएं, केला बहुत अच्छा है, सेब को मैश करके घिस के खिला सकते हैं, पपीता खिला सकते हैं, चीकू है, सूजी है, सूजी की खीर बना सकते हैं। देन दलिया दाल के साथ, जैसे मैंने बताया, उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए आप फैट डाल सकते हैं। बट प्लीज ये याद रखें, ऊपर से नमक नहीं डालना 1 साल तक, और चीनी का प्रयोग 2 साल तक नहीं करना। जो नेचुरल शुगर्स हैं, जैसे फलों में मिल रहा है या जैसे खजूर है, वो जिस नेचुरल शुगर्स आप दे सकते हैं, बट एडेड शुगर, चीनी ना डालें। जिन बच्चों को चीनी जल्दी शुरू करी जाती है, आगे जाके तकलीफ होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बच्चे का नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है सिर्फ मीठा खाने की, वो बाकी चीजें नहीं खा पाता आराम से, उसकी प्रेफरेंस हो जाती है। और नमक से ये होता है कि हमारे बच्चे, यही बच्चे आगे जाके हाइपरटेंशन इनको जल्दी होगी।
0: जी, मेरा अगला सवाल यही था कि यदि बच्चों को सही पोषण ना मिले तो कौन कौन सी समस्याएं उनमें हो सकती हैं, किस तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो सकते हैं?
1: मैल न्यूट्रिशन, जिसमें कि बच्चों का

0: वजन नहीं ठीक से बढ़ रहा,
1: जी
0: मतलब बच्चा कमजोर है, उसमें प्रोटीन की कमी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही है, वो बहुत दुबला पतला, उसके साथ साथ एनीमिया भी हो जाता है,
1: जी
0: खून की कमी आयरन की वजह से, फॉलिक एसिड या B12 की वजह से, देन विटामिन डी की कमी, रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां इफेक्ट हो जाती हैं।
1: ओके,
0: तो ये तो हो गया पोषण बहुत कम मिलने से। और एक है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी आज का मेल न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसमें भी पोषक खाना तो जा नहीं रहा
1: बिल्कुल।
0: तो ओबेसिटी एज वेल एज मेल न्यूट्रिशन, ये दोनों बैलेंस डाइट नहीं होने की वजह से होते हैं।
1: अच्छा, माता पिता कैसे पहचाने कि बच्चे में पोषण की कमी है?
0: अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो मैलनरिश बच्चे होते हैं वो उतने खुशमिजाज नहीं होते।
1: अच्छा,
0: वो थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है।
1: बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए खान पान किस तरह से योगदान देता है?
0: हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे की हम थाली बना रहे हैं उसमें सब तरह का सामान हो।
1: जी,
0: जैसे गो फूड्स जिनसे एनर्जी मिलती है,
1: हाँ।
0: जैसे कि चावल है, रोटी है, मिलेट्स हैं, रागी ज्वार बाजरा है, फिर ग्रो फूड्स जैसे कि दूध दही छाछ, प्रोटीन वाली चीजें, राजमा दालें चने सोया पनीर, और तीसरा होता है ग्लो फूड
1: जी,
0: जिसमें सब्जियां, हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाद की चीजें और फल आते हैं। तो ये तीनों चीजों की एडिक्वेट अमाउंट में मात्रा होनी चाहिए, मतलब हमारी थाली पूरी रंगीन होनी चाहिए, दाल भी हो, चावल भी हो, हरी सब्जियां भी हो, फल भी हो, सब कुछ हो।
1: बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई, गो ग्रो एंड ग्लो।
0: बिल्कुल,
1: तो कुल मिलाकर यदि हमें बच्चों को स्वस्थ बनाना है और अपने समाज के का निर्माण स्वस्थ बच्चों के साथ करना है, तो हमें उनके पोषण का बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा। मैम, आज आपने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन चलते चलते उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी आप जो अपने बच्चों को शुरुआत से कम उम्र से ही अच्छा पोषण देना चाहते हैं, उनके लिए बेसिकली क्या सुझाव आप देना चाहेंगे?
0: अच्छा खाना, और एक निमोनिक बना है जंक्स, JUNCS, जंक्स मतलब जे से जंक फूड, जिसमें कि बहुत फैट शुगर और सॉल्ट होते हैं। यू से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जैसे बर्गर पैटी पिज्जा पास्ता। एन से नॉन न्यूट्रिशियस चीजें, इनअप्रोप्रिएट चीजें जिसमें न्यूट्रिशन ना हो। सी से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, मीठी चीजें, और एस से एक्सेस शुगरी, ये सारी चीजें ये अवॉइड करें तो आपका बच्चा अपने आप एक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बच्चा हो जाएगा।
1: जी, आप यहाँ आई, आपने इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर।
0: थैंक यू सो मच।
2: बच्चों में सही पोषण, अभी आप इस विषय पर भेंट वार्ता सुन रहे थे। हमारी विशेषज्ञ थी वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राधिका सचदेव। आपसे बात कर रही थी रश्मि गुप्ता। निश्चित रूप से जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संतुलित पोषण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। गर्मियों की छुट्टियों में स्वास्थ्य पुनर्जीवन पर ध्यान केंद्रित करना बेहद आवश्यक है। इस समय का उपयोग न केवल विश्राम और मनोरंजन के लिए किया जा सकता है, बल्कि ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का अवसर भी है। आज की वार्ता में हम आपके लिए कुछ सुझाव लेकर आए हैं। छुट्टियों में स्वास्थ्य पुनर्जीवन यानी हेल्थ रेजुनुवेशन इन समर वेकेशन। हमारी वार्ताकार है साइकोलॉजिस्ट स्मिता मीना।
3: आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कंपटीशन, सोशल मीडिया, करियर अनसर्टेनिटी, इन सब का असर सिर्फ पढ़ाई पर नहीं बल्कि बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ रहा है। कई बच्चे वेकेशंस में भी मेंटली स्ट्रेस रहते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि हर समय प्रोडक्टिव नहीं रहे तो वो पीछे रह जाएंगे। इस लगातार प्रेशर का असर ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है, जैसे स्लीप साइकिल, ईटिंग हैबिट्स, इमोशनल बैलेंस और कंसंट्रेशन। ऐसे समय में समर वेकेशन सिर्फ छुट्टियां नहीं है बल्कि बच्चों के लिए रिकवरी, इमोशनल ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ इम्प्रूवमेंट का एक सुनहरा अवसर है। आज के स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन रिच है लेकिन इमोशनली ओवरलोडेड भी है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड, यानी दिमाग पर लगातार इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन का दबाव। जब ब्रेन को लगातार स्ट्रेस मिलता है तो बॉडी में कॉर्टिजोल्स यानी स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ता है, स्लीप डिस्टरबेंस होती है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और एंजाइटी बढ़ सकती है। यानी मानसिक दबाव केवल इमोशंस तक नहीं सीमित रहता बल्कि फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। इसीलिए आज WHO और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स बार बार यह कह रहे हैं कि स्टूडेंट वेलबींग इज एन इम्पोर्टेंट एज एकेडमिक अचीवमेंट। समर वेकेशंस बच्चों के लिए एक

0: साइकोलॉजिकल रिकवरी पीरियड और साथ ही साथ मेंटल रिस्टोरेशन फेज हो सकते हैं पूरे एकेडमिक ईयर के दौरान। लंबे स्टडी हार, स्क्रीन एक्सपोजर, एग्जाम प्रेशर और इरेगुलर रूटीन से बच्चों के नर्वस सिस्टम और बॉडी दोनों को थका देते हैं। इसीलिए वेकेशंस के दौरान प्रॉपर स्लीप, इमोशनल रिलैक्सेशन, फिजिकल मोमेंट और फैमिली बॉन्डिंग बहुत ही जरूरी हो जाती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन, यानी आपकी इमोशंस और स्ट्रेस को हेल्दी तरीके से मैनेज करना। आज CBSE और NEP भी फोकस कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट और ब्रेन ग्रोथ, जिसमें शामिल है AI लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन फ्यूचर रेडी बनने का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना नहीं है। रिसर्च ये कहती है कि बच्चों में क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस भी इम्पोर्टेंट है। क्रिएटिविटी बच्चों को नए आइडिया सोचने और अलग तरीके से प्रॉब्लम को देखने में मदद करती है। यह इनोवेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन दोनों को बढ़ाती है, जो फ्यूचर करियर में बहुत जरूरी है। आज की बदलती दुनिया में अडेप्टेबिलिटी यानी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे बदलाव को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, वे स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों को चैलेंजेस से घबराने की बजाय सॉल्यूशंस ढूंढना सिखाती है। कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को मजबूत बनाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और सही तरीके से मैनेज करना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। मेंटल फिटनेस उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल फिटनेस। कुछ हेल्दी समर हैबिट्स जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग, जर्नलिंग, नेचर वॉक, योगा एंड स्ट्रेचिंग और लिमिटेड टाइम स्क्रीन, ये एक्टिविटीज नर्वस सिस्टम को काम कर देती हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग में रोज कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग करने से माइंड शांत होता है और एंजाइटी कम होती है। यह कंसंट्रेशन और इमोशनल रेगुलेशन को इम्प्रूव करता है। जर्नलिंग में आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स लिखने से इमोशनल क्लैरिटी मिलती है। यह स्ट्रेस को रिलीज करने और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक हेल्दी तरीका है। प्रकृति के बीच समय बिताने से ब्रेन रिलैक्स होता है और मूड बेहतर होता है। नेचर एक्सपोजर मेंटल फटिगनेस को कम करने में मदद करता है। योगा और स्ट्रेचिंग की बात करें तो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ मेंटल कामनेस भी बढ़ाते हैं। यह स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। लिमिटेड स्क्रीन टाइम, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम एक्सपोजर अटेंशन स्पैन और स्लीप दोनों को प्रभावित करता है, तो स्क्रीन टाइम लिमिट करने से फोकस, मूड और सोशल इंटरेक्शन बेहतर होते हैं। जब बॉडी रिलैक्स होती है तभी ब्रेन इफेक्टिवली लर्न कर पाता है। साथ ही साथ हेल्दी ब्रेन के लिए हेल्दी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। समर में बच्चों को हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, सीजनल फ्रूट लेने चाहिए और एक्सेसिव जंक फूड कम करना चाहिए। न्यूट्रिशन डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके मेमोरी, मूड, कंसंट्रेशन, एनर्जी लेवल और ब्रेन को भी, तो प्रॉपर फ्यूल चाहिए ना। कई स्टडीज यह दिखाती है कि पुअर स्लीप और अनहेल्दी फूड मिलकर स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स का यह समझना भी बहुत जरूरी है कि वेकेशंस केवल एक्स्ट्रा ट्यूशंस का समय नहीं है। बच्चों को चाहिए रेस्ट, इमोशनल कनेक्शन, हॉबीज, फिजिकल एक्टिविटीज और सेल्फ एक्सप्लोरेशन। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सपोर्टिव इमोशनल एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल जहां बच्चा प्रेशर नहीं बैलेंस महसूस करे। आज भी भारत के कई हिस्सों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लिमिटेड है, काउंसलिंग सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, पेरेंट्स और स्टूडेंट गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। ऐसे में आकाशवाणी जैसे प्लेटफॉर्म बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये मीनिंगफुल हेल्थ और साइकोलॉजिकल गाइडेंस देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। कई स्टूडेंट्स पहली बार ऐसे प्रोग्राम सुनकर समझते हैं कि स्ट्रेस होना नॉर्मल है, मेंटल हेल्थ भी हेल्थ का हिस्सा है, हेल्प लेना कमजोरी नहीं है। याद रखिए, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और हेल्दी इमोशंस, यही है ट्रू फ्यूचर रेडीनेस। नमस्कार।
1: इन सुझावों का पालन करके आप गर्मियों की छुट्टियों का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को पुनर्जीवित कर सकते हैं। स्वस्थ रहना आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अभी आप सुन रहे थे वार्ता हेल्थ रेजुनोवेशन इन समर वेकेशंस, यानी छुट्टियों में स्वास्थ्य पुनर्जीवन। वार्ताकार थी साइकोलॉजिस्ट स्मिता मीना। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? इस कार्यक्रम में और आप क्या सुनना चाहते हैं? आप हमें लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में कोई सुझाव देना चाहें, अपनी

0: प्रतिक्रिया देना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, हमारी मेल आईडी healthairdelhi@gmail.com। इसके अलावा भी अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं, तो हमें अवश्य लिखिए। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम धरती आकाश। नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
1: आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर आर के कोटनाला। आप चेयरमैन हैं न्यू साइंस क्रिएटर्स इंस्टीट्यूट के। आपने रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत काम किया है और सिलिकॉन सोलर सेल पर IIT दिल्ली से सबसे पहले PhD करने वाले आप ही हैं। प्रोफेसर कोटनाला, आपका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर कोटनाला, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो सिलिकॉन सोलर सेल पर आपने रिसर्च किया था, ये क्या था?
2: हमने जब सोलर सेल बना रहे थे, क्योंकि हम पहले ये बन चुका था, तो हम उसको एक तरह से नए ढंग से बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने जो सोलर सेल बनाया था वो P+N+ करके एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें बोलते थे BSF इफेक्ट, मतलब बैक सरफेस फील्ड, जो आजकल पर्क सोलर सेल इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। आज की डेट में ये हमारा काम है 1985 का, तो 1985 से जो था वो देखिए कि अभी पर्क सोलर सेल को आए हुए 8-10 साल हुए हैं। तो पर्क सोलर सेल इसमें हाईली एफिशिएंट है। उस समय हमने क्या किया कि एक छोटा सेल 10 mm का साइज से लेकर के हम उसको 2 इंच डायमीटर, मतलब बेसिकली 2 इंच 5 सेंटीमीटर का बनाते रहे, और उससे हमने छोटी सी एक मतलब मोटर चलाई, थोड़ा सा लाइट जला लेते थे, एक बड़ी पैनल बना ली थी, और उसके बाद हम उस पर आगे कार्य करते रहे।
1: ये बताएं कि ये जो आपने सोलर सेल पर काम किया, ये आजकल के जो सोलर सेल है उनसे कितने अलग थे?
2: मूल रूप से सोलर सेल आज भी वही है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी गई थी, उन्होंने ये काम भी किया, इस पे भी किया, और अभी मैंने आपसे कहा कि पर्क सोलर सेल इसका ही एक नया रूप दिया गया है, जो इस समय 22% एफिशिएंसी पे दिखाता है। उस समय हम इसको 12% बना रहे थे 1990 में।
1: प्रोफेसर कोटनाला, सौर ऊर्जा पर सरकार का भी बहुत ध्यान है, और इसमें अच्छी बात यह कि हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में कुछ समय को छोड़ दें तो धूप रहती रहती है, और खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब धूप अच्छी खिली रहती है, तो इसको लेकर हमारे यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें कही जाती है कि एक तो हमारे यहाँ सोलर सेल और सोलर सेल की जो टेक्नोलॉजी उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं है, और सोलर सेल्स भी जो है वो बाहर से बनकर आते हैं विदेशों से। इन बातों में एक तो कितनी सच्चाई है, और क्या सोलर एनर्जी को लेकर हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं?
2: जब हम सोलर सेल यहाँ पे बना रहे थे देश में, मैं राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में कार्य कर रहा था दिल्ली में, फिर IIT दिल्ली भी, तो अब उस समय हम अपने आप सोलर सेल बना रहे थे। सिलिकॉन हम बाहर से खरीदते थे तब भी, और कुछ केमिकल भी, लेकिन आज की जो स्थिति है, हम जितने भी सोलर के बड़े बड़े मतलब हमने पावर स्टेशन बनाए एक तरह से, तो वो जो पावर स्टेशन है मतलब वो सारे के सारे बाहर से खरीदे जाते हैं। तो इसमें आत्मनिर्भरता तो चाहिए। आज की डेट में ये हो रहा है कि वो सोलर सेल ही पूरा बन के आता है, इवन की पैनल भी बन के आते हैं, और ये बहुत महंगा है ऐसा भी नहीं है, और हम आयात करते जा रहे हैं। तो इतना आयात करते हैं कि यदि हम मोटा मोटा आइडिया लगाएं सरकार और बाहर, तो $6 बिलियन का हम आयात करते हैं आज भी। तो इसके लिए आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि आत्मनिर्भरता हो, उसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ऐसे कदम नहीं उठाती है, या तो सरकार उनके ऊपर कुछ जोर देगी तब होता है, लेकिन तरीका ये है कि इसको सरकार पे कदम उठाना चाहिए था। जब हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी का जो सबसे बड़ा महत्व है वो ये है कि जो ये जो एनर्जी निकल रही है, इसके प्रोसेस में जब मतलब ये एनर्जी के लिए जो डिवाइस बनाया, ये फाइनली हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर ऐसे केमिकल का इस्तेमाल

0: ना हो जो हमारी सेहत के लिए खराब है या मिट्टी पानी के लिए खराब है, तो हमें उसके लिए एक नया रास्ता देखना था। तो ग्रीन एनर्जी इसीलिए कहा गया कि इसके सारे स्टेप्स, प्रोसेस के स्टेप्स भी हैं, वो कैसे हो कि उसमें कोई भी ऐसी हमारी सेहत के लिए, अर्थ की सेहत के लिए ना हो खराब।
1: तो कौन कौन सी एनर्जी ग्रीन एनर्जी हुई?
0: ग्रीन एनर्जी में जब बात करते हैं तो आमतौर पर सोलर सेल का भी नाम लिया जाता है। वैसे तो देखा जाए विंड एनर्जी भी है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड जगह ही होती है। और विंड एनर्जी के साथ साथ लोगों ने कोशिश करते हैं कि और कोई हम ग्रीन एनर्जी के लिए विकल्प ढूंढते रहे, तो उसमें जैसे हाइड्रोजन प्रोडक्शन का था, तो इसमें आज की तारीख में पूरी दुनिया में एक अद्भुत आविष्कार है जो हमने और हमारे स्टूडेंट ने, डॉक्टर ज्योति सार ने किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल, जिसके प्रोसेस में कहीं पर भी हम ऐसे केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, सब देश का ही है, और उससे हम हाइड्रोजन भी जनरेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं।
1: इसीलिए इसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल।
0: हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल तो इसलिए किया गया कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट
1: जी
0: करेगा
1: जी
0: और ये सेल स्ट्रक्चर में है, तो इसलिए इसका हाइड्रो सेल रखा। लेकिन ये जो प्रोसेस है कि इसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन ऑल्सो दूसरे फॉर्म में, तो ये दोनों की दोनों बहुत ही वो क्लीन है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हमने इस्तेमाल नहीं किया कोई केमिकल। उधर से जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आपको मालूम ही है कि जब हाइड्रोजन इससे प्रोड्यूस कर दिए, पानी डाला डिवाइस पे और आपको हाइड्रोजन मिल गई, जैसे हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं। तो हाइड्रो डैम्स में हम क्या करते हैं, पानी रोकते हैं ऊंचाई पे, फिर पानी गिराते हैं टर्बाइन्स पे, तो टर्बाइन पे पानी गिरता है, तो उसको भी हम बहुत अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी भी मानते हैं, बशर्ते कि आसपास में हमने वहां पेड़ न काटे हों लाखों करोड़ों में, जो कि जब कोई भी डैम बनता है तो ये होता है। तो अदरवाइज ये भी एक बहुत अच्छा रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन वो लिमिटेड है, जहाँ पानी होगा और कुछ ऊंचाई आप करनी है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल है जिसको हम कहीं पर भी कैसे भी इस्तेमाल करेंगे, लैब में बनाते हैं, अभी हम इसको इंडस्ट्री की तरफ भी ले जा रहे हैं।
1: प्रोफेसर कोटनाला, ये सबसे पहले आपको विचार कब और कैसे आया कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल भी बनाया जा सकता है और इससे एनर्जी जनरेट की जा सकती है?
0: देखिए, हाइड्रोलिक सेल यदि मैं इसका श्रेय दूं तो पहला श्रेय यही जाता है कि जब हमने उस पर काम कर रहे थे सोलर सेल पे, तो हम चाह रहे थे कि एक बहुत बेहतर सोलर सेल बनाएंगे, लेकिन हमें दिखाई दिया कि हम पश्चिम देशों पे, मतलब वेस्ट की तरफ से जितने उनका इक्विपमेंट थे, जितना फंड्स थे, उसके हिसाब से हम उतनी फैसिलिटी नहीं बना पा रहे थे। और इसके अंदर हमने कोशिश करने के बाद देखा कि ये हम इस पे नहीं कर पा रहे और सब कुछ बाहर का है, मटेरियल भी ये। तो फिर हम उस समय से बड़ी खोज में थे, शुरू से यंग एज से, कि एक ऐसा डिवाइस बनाए। तो फिर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल तब किया शुरू जब 2001 में हमने नैनो मटेरियल्स पे काम शुरू किया, और हमने ये नैनो मटेरियल ली जो है ऑक्सीजन डिफिशियंट, नैनो पोरस मैग्नीशियम फेराइट बनाया, जो पानी को बिना किसी एनर्जी के स्प्लिट करता है H+NOH में, तो आपको बिजली भी मिलती है और हाइड्रोजन भी मिलती है।
1: ये बताएं कि फिर इस पर आपने कब शोध शुरू किया और कब इसका रिजल्ट मिला?
0: शोध हमने इस पर एक्चुअल में हमने 2002 में कॉन्सेप्ट बना लिया, रियलाइज करने के लिए ये होगा, और हम इस पर काम करने लग गए। तो 2002 से हम लगातार चलते रहे, और वो 2016 में हमने पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल, छोटा सा जिसमें बहुत कम करंट और वोल्टेज थी, वो हमने पब्लिश किया एक एनर्जी के जर्नल में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल है एनर्जी में। और उससे पहले ही हमने, जब ये तैयार हो चुका था हाइड्रो सेल, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर एक इंडियन पेटेंट डाला और एक यूएस पेटेंट डाला, दोनों हमें मिल गए और वो पेपर पब्लिश हो गया। तो हमारी जो आविष्कार थी वो दुनिया के एक्सपर्ट्स जो भी हैं उस एरिया में, उन्होंने वैलिडेट कर दिया कि नहीं, इसको आप पब्लिश कर सकते हैं। तो जब पब्लिश हो गया, हमारा आविष्कार 2016 से वो हो गया।
1: प्रोफेसर कोटनाला, ये सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक आगे सेल भी आ रहा है, लेकिन शोध में फिर इतना समय कैसे लग गया?
0: ये बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स है जो थॉट प्रोसेस है, मतलब पानी को कैसे आप H+NOH में तोड़ेंगे, ऐसा कौन सा जादू होगा। तो इसलिए हम जब मटेरियल पे काम कर रहे थे और नैनो मटेरियल से, हमने देखा कि हम कुछ कोशिश करेंगे, किसी ने भी आज तक दुनिया में ऐसा मटेरियल नहीं खोज पाए कि जो मटेरियल पे पानी गिरे और वो H+NOH में टूट जाए। तो ये इसको करने के लिए, सोचने के लिए, फिर उसको फाइनली कैसे डिवाइस फॉर्म में करेंगे, तो हम जबकि रात दिन एक काम करते हैं, मतलब हमारा ये है कि हम लैब में 12 घंटे पिछले 25 साल से आते हैं लैब में, और रात को भी घर में जाके 2 घंटे काम करते हैं, और मंडे टू सैटरडे, तब भी आप देखिए हमें 14 साल लग ही गए उसको एक फाइनल शेप देने में, कि ये डिवाइस है, वर्केबल है ना, अब इसको कोई मना नहीं कर सकता।
1: ये बताएं कि जब ये डिवाइस आपका बन गया तो आपको कितनी संतुष्टि मिली, और आप क्या आशान्वित हैं कि भविष्य में इसके जरिए भारत में भी मास स्केल पर एनर्जी डेवलप की जा सकती है?
0: जैसे ये हाइड्रो सेल वो हुआ, तो हमें दो चीजें ध्यान में आई, एक ये आई कि हमने अपना वैज्ञानिक होने का रोल पूरा अदा किया, दूसरा हमें ये हुआ कि देश से पिछले 108 साल में कोई भी बड़ी इतनी आविष्कार नहीं बना, इतनी बड़ी रिसर्च नहीं हुई जो नोबेल प्राइज के लिए

0: बिल्कुल रेडी है क्योंकि इस पे नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये दो हुए कि एक तो देश की देश ने ये कह सकता है कि देखिए हमने एक ग्रीन एनर्जी डिवाइस बनाया है हाइड्रोजन सेल जो हाइड्रोजन भी देता है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी भी देता है। और मुझे लगा कि वाकई मैंने जो अपनी पढ़ाई करी या एज ए वैज्ञानिक के पद पे मैं बहुत ऊपर ऊपर भी जाता रहा वो हमने उसको एक तरह से अहम रूप दे दिया।
1: शोध एक चीज होती है और उसके बाद उसका प्रोडक्शन या उसका एक तरह से रियलिटी में आना या अमल में आना एक अलग चीज होती है। एडिसन ने बल्ब बना दिया लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर बाद में उसमें क्या क्या चीजें हुई, किन किन लोगों ने बल्ब उत्पादन शुरू किया, अभी तक लोग बल्ब बना रहे हैं। तो आपका जो ये उत्पाद है बाद में इसका कमर्शियल क्या क्या उपयोग कब से हो सकता है, कब चालू हो सकता है और उसके बाद उसके रिजल्ट्स कब तक आ सकते हैं?
0: जब आपने ये बात करी कि सर एडिसन ने जब बल्ब बनाया सबको मालूम है कि इतना बड़ा बल्ब था उसको इतनी बिजली दे के जलना होता था, टिमटिम जलता था। तो उनका एक कॉन्सेप्ट था कि हीटर हीट करेंगे वायर को और आपको बिजली मिलेगी और वो उन्होंने किया। तो उस बिजली के साथ जो लाइट मिल रही थी वो उसको भी डेवलप करने में कि वो कई सालों लग गए उनको कि उसमें वो जल जाता था हीटर जल्दी, जो वायर है हीटिंग रेजिस्टेंस वायर टंगस्टन का था तो उसको उन्होंने वो भी देखा, कई सारे अलग मटेरियल भी यूज किए थे मेटल, लेकिन फाइनली टंगस्टन में आए और ये देख लिया उन्होंने कि हाँ वाकई ये हो सकता है। तो ऐसा ही जो हमारे उसमें आपने कहा हम इसका प्रोडक्ट के लिए ये रेडी है क्योंकि हमने प्रोटोटाइप में 1 इंच सेल से लेके 4x4 इंच का सेल बनाया है हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेल और इसको हम ये चाह रहे हैं कि अब इसकी प्रोडक्शन नंबर्स बढ़े। तो नंबर्स बढ़ने के लिए पायलट प्लांट लगाना होता है और इसका पायलट प्लांट में कम से कम 8 से 10 करोड़ का खर्चा है। और ये जो आपका दूसरा सवाल था कि कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है, ये तो एक ऐसा भगवान का ईश्वर का वरदान है कि ये किसी भी सेल की जगह हटा दो, कोई भी सेल बात कर रहे हैं, सोलर सेल हटाओ, फ्यूल सेल हटाओ, ये सबका एक बहुत अच्छा सटीक बेहतर और सस्ता, आप भूल जाइए लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी जो कि हमारे लिए कैंसरस भी हैं, वैसी भी हैं, तो ये हमारा वो करने के सारे सारे गुण रखता है।
1: प्रोफेसर आर के कोटनाला आप स्टूडियो आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका हृदय से आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी।
2: भारत सरकार स्वास्थ्य, खेलकूद और फिटनेस को लेकर फिट इंडिया मूवमेंट जैसी योजनाओं पर काफी ध्यान दे रही है। इन सब में विज्ञान किस तरह सहायक हो सकता है, जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना स्रोत संस्थान निस्केयर CSIR के अनिरुद्ध तिवारी।
3: विज्ञान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवाचार को बल देता है या किसी विषय के बारे में जानने और सीखने की प्रक्रिया है। विज्ञान के आविष्कारों से मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। विज्ञान का स्वास्थ्य के साथ अटूट संबंध रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला होता है। स्वास्थ्य विज्ञान, जिसे हम चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं, ने मानव को स्वस्थ एवं सुखी जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे समाज में पहला सुख निरोगी काया जैसी संकल्पना रही है। मानव के उद्भव के समय से ही स्वास्थ्य विज्ञान हमारे समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। प्राचीन काल में जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतना विकास नहीं हो पाया था उस समय में भी स्वास्थ्य विज्ञान ने बीमारी, महामारी एवं युद्ध के समय में लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता तथा महर्षि चरक द्वारा रचित चरक संहिता भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली के प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अत्यंत समृद्ध है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त कुछ उन्नत डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से शरीर में पनपने वाली बीमारियों का पता पहले ही लगाया जा सकता है, जिसका समय पर इलाज करवाकर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। जीन एडिटिंग जैसी तकनीकों ने चिकित्सा जगत को और अधिक सशक्त किया है। इन सब के बावजूद हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे कार्यों को अत्यंत आसान बना दिया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने के समय तक हम अनेक उपकरणों, साधनों, मशीनों के उपयोग पर निर्भर रहते हैं, यानी मशीनों पर हमारी निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। हमें विज्ञान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का सम्यक एवं संतुलित प्रयोग करना चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का अधिकाधिक प्रयोग हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य अनेक बीमारियों का शिकार बनता जा रहा है। दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े संसाधन जैसे मोबाइल और इंटरनेट ने तो मानव जीवन में अपनी जगह कुछ ज्यादा ही बना ली है। टेक्नोलॉजी समर्थित ई कॉमर्स के कारण आप घर बैठे अपनी जरूरत के सामानों का ऑर्डर कर सकते हैं और उन सामानों की डिलीवरी चंद घंटों में आपके पास हो जाती है। यदि हम गौर करें तो यह देखते हैं कि विज्ञान ने हमारे लिए सुविधाओं का अंबार तो लगा दिया है और हमारे कार्यों को भी आसान बनाया है, लेकिन उनके अधिकाधिक प्रयोग से हमने स्वयं को कमजोर बना लिया है। स्वास्थ्य के इसी संकट से उबरने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री

0: मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया। फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए, इसमें जन जन की भागीदारी आवश्यक है। प्रौद्योगिकी ने हमारी शारीरिक क्षमता को कमजोर बना दिया है तथा हमारे दैनिक फिटनेस रूटीन को भी प्रभावित किया है। हम अपने पारंपरिक अभ्यासों एवं जीवन शैली से अनजान बने हुए हैं, जो हमें स्वस्थ रख सकता है। बदलते समय के साथ हमारे समाज में स्वास्थ्य को कम प्राथमिकता दी जा रही है। पहले व्यक्ति साइकिल से मीलों तक चलता था, लेकिन अब चलते समय कदम की गणना मोबाइल ऐप से करने लगा है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां भारत में तीव्र गति से बढ़ रही हैं और इससे युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की संख्या निरंतर बढ़ रही है तथा भारत में छोटे बच्चों में यह समस्या आम बात हो चुकी है। लेकिन हमारी जीवन शैली में छोटे बदलाव जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोक सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट इसी छोटे बदलाव के लिए एक प्रयास है। किसी भी व्यवसाय से जुड़ा व्यक्ति यदि स्वयं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से फिट रखता है तो वह अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकता है। फिटनेस केवल एक शब्द मात्र नहीं है, यह समृद्ध जीवन का एक मुख्य स्तंभ होता है। जब हम अपने शरीर को युद्ध के लिए तैयार करते हैं तो लोहे की भांत हम राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। फिटनेस हमारी ऐतिहासिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ परिवार तथा एक स्वस्थ समाज न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने के लिए आवश्यक है।
1: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यही संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती आकाश, और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

माता तेरी जोत में जगामा दिन रात। दिलराज कौर दी आवाज विच माता दिए पेंट हुने तुसी सुन रहे सी। ते आओ हुन सुनदे हां जसपिंदर नरूला दी आवाज विच माता दिए पेंट। पेंट है वर लै लो मैया तो वर लैण वाले हो।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, और अब श्रोताओं 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है, और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में साझा समृद्धि, संपर्क और सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना के साथ बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली

0: fundamental reality that Jammu and Kashmir was, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. P. Harish was responding to Pakistan's permanent representative Asim Iftikhar Ahmed's references to the Union Territory during a discussion of the Council's annual report to the General Assembly. Union Home Minister Amit Shah today extended greetings on the occasion of the coronation day of Chhatrapati Shivaji Maharaj. In a social media post, Mr. Shah said that Chhatrapati Shivaji Maharaj built a system of governance rooted in the ideals of self-respect, good administration and national defence, which instilled a new sense of confidence in the Indian populace. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं और ये समय है ईमेल पर आधारित आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। सबसे पहले आपको बताते हैं अपना ईमेल आईडी जिस पर आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना संदेश, अपनी पसंद के गीत के साथ भेजना है। तो नोट कीजिए, हमारा ईमेल आईडी है ip.radiodelhi@gmail.com। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट।
2: मैं हूँ सुषमा और सिद्धार्थ, मैं देख रही हूँ कि भाई मौसम का जो बदलाव है उसके साइड इफेक्ट आपको नजर आ रहे हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, और इस समय दिल्ली का जो तापमान है वो थोड़ा कम है, थोड़ा मौसम बेहतर हो गया है और इस समय आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़े हैं मैं और मेरे साथ सुषमा। तो सुषमा, बहुत सारे लिसनर्स के जो हमारे मैसेजेस हैं, उनके जो संदेशी हैं, वो हमारे पास लगातार ब्लिंक्स हो रहे हैं, उन्हें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है आज के कार्यक्रम का। तो जो पहला हमारे पास संदेश आया है, डीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज का, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से
2: जी।
1: ये लिखते हैं कि डियर प्रोग्राम एंकर्स, ग्रीटिंग फ्रॉम आवर साइड, प्लीज इंक्लूड अवर रिक्वेस्ट ईमेल। तो बिल्कुल, हमने आपका ईमेल अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है
2: और कह सकते हैं कि लकी लिसनर्स हैं क्योंकि सबसे पहले इनकी मेल हमने शामिल की है।
1: जी हाँ। और सुषमा, हमारे दूसरे लिसनर कौन से हैं?
2: हमारे अगले लिसनर हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश जी के साथ इन्होंने अपना संदेश हम तक पहुंचाया है और इन्होंने कहा है कि भाई अब किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए।
1: जी बिल्कुल, आपका नाम हमने शामिल कर लिया है और आपके बल्कि एक नहीं दो दो संदेश हमें मिले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जिला राजगढ़, तहसील नरसिंहगढ़ से हमारे पास संदेश आया है गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद डांगी का। और इसके साथ हम अपने अगले लिसनर का नाम पढ़ते हैं
2: और ये लिसनर है हमारे नेहरू चौक पैठन से, डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल और सिया जालना से भी इन्होंने अपने कुछ साथियों के नाम दिए हैं और कितना अच्छा याराना निभाते हैं ये सिद्धार्थ, देखा जाए तो मतलब कहाँ एक
1: बहुत लंबी लिस्ट है।
2: जी जी जी, इन्होंने अपने साथियों का जालना शहर के जो इनके साथी हैं उनका नाम लिखकर भी भेजे हैं, जैसे सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन और एक नाथ जी, संगीता।
1: जी हाँ, तो बहुत सारे ये और इनके पूरे दोस्त मिलकर इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। और हमारे साथ अगला जो संदेश है वो लिखते हैं कि नमस्कार जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो हम आपका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये लिखते हैं कि प्रसन्नता तो चंदन है, दूसरे के माथे पर लगाइए तो आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेगी। कितनी अच्छी बात लिखी है सुषमा इन्होंने और ये हमें लिखा है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने, और इन्होंने कहा है कोई भी गीत सुनवा दें तो और नाम शामिल करें, तो नाम आपका शामिल हो गया है।
2: जी
1: जी।
2: और अगले हमारे जो श्रोता है उनका जो हमारे पास मेल आया है
1: जी,
2: ये हीरामन जी का है, हीरामन शेंडे जी, और साथ ही इन्होंने अपने अन्य साथियों के नाम भी हमें भेजे हैं और श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद, जो कि फिल्मी गीतों पर आधारित है।

0: आज है सुषमा और साथ हैं सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ आप गाना सुनवाना चाहेंगे या
1: पहले बिल्कुल गाने सुनवाने के पहले हमारे एक जो श्रोता है ये राजस्थान में जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी, बेबी बॉय हिमांश, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: जी हाँ, ये कौन सा मोड़ है?
1: बहुत
0: ही खूबसूरत मोड़ है मुझे लगता है। और आपके संदेश लगातार हमें मिल रहे हैं, और इस समय हमारा जो संदेश मेरे सामने है वो दादी गेट भिवानी से हमारे पास आया है। कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा कहते हैं नमस्ते जी आपको, सिद्धार्थ जी और सुषमा जी, जी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। आपका हमने नाम प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। और अगला संदेश सुषमा किसका है?
1: अगला संदेश हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं ये, ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद आवासी जी के साथ साथ इन्होंने पूरे परिवार के सदस्यों के नाम शामिल किए हैं अपने संदेश में, जैसे निखत परवीन, शहनावाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान, और साथ ही सभी परिवार के जो सदस्य हैं उन सबकी तरफ से इन्होंने ये संदेश भेजा और अपनी फरमाइश भेजी है कि मुझे इस फिल्म का गीत सुनवा दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आवासी जी को हमारा ये गीत जरूर पसंद आ रहा है।
0: बिल्कुल। और अगला संदेश है, लिखते हैं प्यार भरा आदाब। जी हाँ, आपको भी बहुत आदाब और आपकी पसंद का सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए। और ये हमसे फरमाइश की है शेख मुसा मोहसिन अशोक वर्मा राजकुमार पुराना ने
1: जी।
0: और अगले संदेश को देखते हैं किसका आया है जी।
1: और अगला संदेश हमारे पास, देखिए बहुत सारे श्रोता बार बार अपना संदेश भेजते हैं, बहुत सारे क्योंकि इस चक्कर में क्या

0: जी
1: और देख
0: बिल्कुल
1: रहे हैं कि हम और भी कितनी बार इन्होंने संदेश भेजे
0: बिल्कुल। तो आप एक बार
1: हैं।
0: भेजेंगे तो भी हम प्रोग्राम को शामिल करेंगे। हमारे जो अगले अगले वो हैं संदेश, वो लिखते हैं ओके, ये संदेश हम ऑलरेडी ले
1: ले
0: चुके हैं।
1: चुके हैं। हाँ
0: हमारी
1: जी
0: सुषमा जी इशारा कर रही हैं कि ये संदेश हम लेके, तो हम अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं। ये हमें आया है सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, बिल्कुल आपके
1: देखिए ये
0: रिपीट
1: साथी
0: संदेश आ रहे हैं। तो
1: जी
0: इससे क्या
1: जी
0: होता है कि हमारे उन श्रोताओं के संदेश रह जाते हैं जिनका हमने नाम शामिल नहीं किया है, और लिखते हैं कि आपको प्रेम पूर्वक आदाब, हम भी सुन रहे हैं, जरूर शामिल करें जी, धन्यवाद। गांव कुमार हिरा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, ये
1: जी
0: हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और बिल्कुल आप इसी तरह से कार्यक्रम को सुनते रहिए और हमारे इस गीत का आनंद उठाइए।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी हाँ श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आपकी पसंद, और इस समय आपके साथ हैं सिद्धार्थ और सुषमा, जो आपकी पसंदीदा नक में आपके संदेशों के साथ आपको सुनवा रहे हैं। और देखते हैं अगला संदेश आया है, ये

0: करते हैं कि सिद्धार्थ जी और सुषमा जी, आपको हार्दिक नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
1: नमस्कार
0: लिख
1: जी।
0: रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति के साथ साथ बेहतरीन नगमे जो आप इस कार्यक्रम में सुनवाते हैं, हम भी प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन काफी देर से प्रतीक्षारत हैं, क्या हमारा नंबर भी आएगा? तो नंबर तो आपका आ गया। ये लिखते हैं हमें राजस्थान भोपालगढ़ से धर्मेंद्र शिपा, कपिल शिपा, ईशान और पूजा परिहार। और सुषमा, अगला संदेश देखते हैं हम, किसका है जी? हाँ
1: देखिए, अजीत भावसर जी ने संदेश भेजा, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पूरा ब्लैंक है, पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो अजीत भावसर जी, आजकल जितने भी आपके संदेश आते हैं, पता नहीं आप किस तरह से सेटिंग करके भेजते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका संदेश शामिल हो, तो प्लीज आप सिंपल आसान शब्दों में उसे लिख के भेजेंगे तो हम शामिल
0: जी,
1: कर पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और अगला संदेश जो है, ये हम देख रहे हैं जमशेदपुर से है हमारे पास हरजिंदर सिंह भाटिया जी का। साथ ही इन्होंने एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया की तरफ से भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया है।
0: और ये लिख रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ सुपर हिट प्रोग्राम सुन रहे हैं, बड़ा लुत्फ आ रहा है, हमें भी शामिल कर लीजिए। तो आपको हमने शामिल कर लिया, और आपके आने से
1: शुक्रिया।
0: हमारा भी जो लुत्फ था वो और ज्यादा बढ़ गया है
1: जी, तुलसी मस्किन जी का भी एक संदेश
0: जी।
1: है। हमारे ये भी रेगुलर लिसनर्स हैं तुलसी मस्किन जी, तो उनका भी संदेश हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप शामिल कर रहे हैं।
0: जी हाँ, इस समय झज्जर हरियाणा से हमारे साथ बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत और मयंक भाटिया हमारे साथ कार्यक्रम में
1: जी,
0: जुड़ गए हैं। इसके अलावा अगला संदेश हमारा है।
1: ये मारहरा दरवाजा एटा से है नवी हसन आवासी, शहनवाज नवेद हसन, रशीद वारसी हैं, सुहेल हसन है, अनम और यशव की तरफ से भी ये संदेश हमारे पास आया हुआ है।
0: जी हाँ, और अगला संदेश हमें लिखते हैं, हो सिद्धार्थ जी, सुषमा जी नमस्कार, हम भी हैं बिल्कुल।
1: और गीत इन्हें पसंद आ
0: ये लिख रहे हैं कि लवली लोग जिंदगी
1: रहे
0: मिलके बिताएंगे। जी हाँ, अभी
1: हैं।
0: हमने ये गाना
1: जी
0: प्ले
1: जी
0: किया था,
1: जी
0: बिहारी कॉलोनी शारदा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रंजीत खुराना और रिधान खुराना ने। और इसी के साथ आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: जी हाँ, आपके इतने अच्छे अच्छे संदेश आए कि हमें भी आपके ऊपर बेहद प्यार आ रहा है, लेकिन वक्त अब जो है हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। हम ये गीत आपको भी आगे सुनवाएंगे, लेकिन आपसे हम लेते हैं अनुमति, तो अपने होस्ट सिद्धार्थ सिंह और
1: सुषमा को दीजिए इजाजत। वैसे आज सिद्धार्थ में एक चीज और कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं से, उन्हें थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि एक घंटे का प्रोग्राम है, आज जल्दी विदा क्यों। तो भैया, अब एक खास प्रोग्राम कुछ ही पलों में आप सुनेंगे, जिसके बारे में बताएंगे सिद्धार्थ थोड़ी ही देर में।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने पर विशेष वृत्त।

0: प्रतिरूपक प्रसारण की प्रतिध्वनिया का भाग छः।
1: प्रसारण की प्रतिध्वनिया। भारत में व्यवस्थित रेडियो प्रसारण 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से शुरू हुआ था। इस प्रसारण को शुरू हुए 90 वर्ष हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनिया। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला का छठा और अंतिम भाग। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार।
2: भारत प्रगति के पंख लेकर तेज गति से बढ़ता चला। आकाशवाणी जनवाणी बनी, सरकार तक पहुंचा दिया। खेत से खलिहान से, ज्ञान से विज्ञान से, खेल के मैदान से हो या रणभूमि पर आन से, वैभव बढ़ा, गौरव बढ़ा, शिखर देखा शान से, कि संस्कृति की सुरक्षा, परंपराओं को बचाया ध्यान से।
3: भारत की प्रगति में आकाशवाणी का अतुलनीय योगदान रहा है। विगत 90 वर्षों में देश की प्रगति की साक्षी रही आकाशवाणी।

0: जिन दिनों संविधान सभा भारत की विभिन्न परंपराओं की आधारशिला रख रही थी, उन्हीं दिनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर बहुत गहन चिंतन किया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मानकीकरण में आकाशवाणी का योगदान कहीं दब सा गया। आइए प्रसारण की इस विशेष श्रृंखला में इस तथ्य को भी जानें। बता रही हैं आकांक्षा सिंह।
1: भारतीय संविधान सभा में गहन चर्चा के रूप में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मानक स्वरूप निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव सामने आया। अंततः ऑल इंडिया रेडियो को यह कार्य सौंपा गया। ऑल इंडिया रेडियो के सभी स्टेशनों को इसकी सूचना दे दी गई। जवाब में कलकत्ता, विशेषकर शांति निकेतन, विश्व भारती से ओमकारनाथ ठाकुर, दिलीप कुमार रॉय, एमएस सुबलक्ष्मी, तीमार बारा और आरसी बोराल की रचनाएं आई। सितार वादक पंडित रविशंकर ने भी सहयोग किया। तमिल भाषा के विद्वान सुब्रमण्यम भारती की 3 रचनाएं मिली। इनके अलावा बंबई की रॉयल इंडियन नेवी, दिल्ली के गोरखा राइफल बैंड और अन्य कई संगीत संस्थाओं ने भी सहयोग किया। सभी के समन्वित प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि 26 मई 1951 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में तथा 7 सितंबर 1951 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के मानक रूप में स्वीकार कर लिया गया। भाषा के संदर्भ में आकाशवाणी के योगदान को बता रहे हैं सेवानिवृत्त उपनिदेशक राजभाषा डीपी मिश्रा।
2: मैं समझता हूं कि हिंदी के उत्थान में रेडियो की उपयोगिता उतनी ही है जितनी कि लोग बॉलीवुड को कहते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा। क्योंकि पहले जनता जनार्दन में जाने का और जन जन तक पहुंचने का जो अंतिम साधन था वो रेडियो था। किसान भी, मजदूर भी अपने खेतों में लेकर रेडियो को जाता था और सुनता था कि आज कृषक का कार्यक्रम आ रहा है, आज ये फिल्म पर आ रहा, और उसमें जो उसके ध्वनि आती थी और जो उच्चारण में, जहाँ तक आप वर्तनी की बात की हैं, वर्तनी के साथ साथ उच्चारण जो हमारे रेडियो के जो प्रस्तुतकर्ता होते थे उनका नाम आते ही लोगों को लगता था कि इनका तो आज हमें समाचार सुनना है। तो उसमें रेडियो की भूमिका, उस समय जब हमारा इंडिया रेडियो और सारी कथा जो है इस भारत को जानना है, मुझे लगता है कि रेडियो के जाकर के जन सामान्य में रेडियो घर घर में था। रेडियो जो है ये जीवित है और जीवित रहना चाहिए, तो उसकी उपयोगिता बहुत है।
0: वरिष्ठ रेडियो प्रसारक लक्ष्मेंद्र चोपड़ा बताते हैं,
3: आकाशवाणी ने समाज में एक नए आजाद

0: हुए देश में धारणा के निर्माण का सबसे बड़ा कार्य किया और यहाँ की जनता को ये समझाया, जनता के बीच में एक धारणा विकसित की कि हमें अपने देश के विकास के लिए, जो देश लगभग 400-450 साल एक औपनिवेशिक दासता का केंद्र बना रहा, हमारी जनता में एक ये धारणा का निर्माण किया कि हमें अपने देश के विकास के लिए स्वयं मेहनत करना है, स्वावलंबी बनना है और राष्ट्रीय भावना का विकास करना है। सबसे बड़ा योगदान आकाशवाणी का मैं अपने इतने लंबे सालों के अनुभव से समझ पाया हूँ कि ये आकाशवाणी का, ये बाकी रेडियो स्टेशन नहीं कर पाई है। मैं ये नहीं कहता उन्होंने बहुत अच्छा मनोरंजन दिया होगा समाज को, लेकिन देश में स्वावलंबन की एक भावना और देश को विकसित करने की जो एक धारणा विकसित की वो आकाशवाणी ने विकसित की। और इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस देश के विकास में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान।
1: जितेंद्र पुरुथी आकाशवाणी दिल्ली में उप महानिदेशक अभियांत्रिकी हैं। वे अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त करते हैं।
2: हम न्यूज ऑन एयर ऐप के थ्रू भारत में कहीं भी बैठे किसी भी स्टेशन का कार्यक्रम सुन सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, स्ट्रीमिंग के माध्यम से लाइव प्रोग्राम भी सुन सकते हैं, पुराने जो कुछ कार्यक्रम जो हुए हैं और हम किसी कारण से उसे नहीं सुन पाए हैं तो उनको भी सिलेक्ट करके सुन सकते हैं। एक डीटीएच के थ्रू भी हमारे 48 स्टेशनों का ट्रांसमिशन पूरे भारत में सुना जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक डीटीएच रिसीवर लगाना पड़ेगा, घर के ऊपर एक डिश लगानी पड़ेगी। सबसे जो लेटेस्ट हमारे नेटवर्क में है वो है वेव्स ओटीटी। वेव्स ओटीटी ऐप के थ्रू हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के बहुत सारे कार्यक्रम मोबाइल फोन पर सुन सकते हैं। शीघ्र ही उसमें और भी सुधार किए जाएंगे।
3: आकाशवाणी के प्रसारण में तकनीक का अपना महत्व है। आकाशवाणी के इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व उप महानिदेशक श्री अजय कुमार श्रीवास्तव केवल तकनीक के प्रति ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील हैं। उनका मानना है कि आकाशवाणी की सभी सांस्कृतिक धरोहरों को उन्नत तकनीक के साथ संरक्षित और संवर्धित किया जाना चाहिए।
4: मुझे लगता है कम से कम 10-12 कंट्रीज को मैंने कॉन्टेक्ट किया होगा और वहाँ से बड़े अच्छे रिजल्ट मिले, और शायद आज भी होगा कि लोग अपने आप से जोड़ना चाहेंगे। जो कुछ आज है ये कल के लिए इतिहास हो जाता है, तो हम आज जो भी काम करते हैं उसका प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। आज उनको रखना बहुत आसान है। कभी कभी यह होता है कि जैसे कोई प्रोग्राम एक डायलेक्ट में बना है तो उसको दूसरे डायलेक्ट में बदलना लगता है कि हम इसको दूसरे डायलेक्ट के लोगों को भी सुनाएं, तो वो जब आप अपने आर्काइव से निकाल के उसका कन्वर्शन करते हैं, उसको दोबारा बनाते हैं, तो वो बहुत अधिक अच्छा लगता है।
1: रेडियो पर सुनाई देने वाले अधिकतर कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी स्टूडियो से किया जाता है, लेकिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए रेडियो की ओबी टीम आयोजन स्थल तक जाती है। गणतंत्र दिवस परेड, स्वाधीनता दिवस समारोह और कई खेलों के मैच ऐसे ही आयोजन हैं जिनका प्रसारण ओबी टीम के सहयोग से होता है। ओबी टीम तकनीकी विशेषज्ञों की वो टीम होती है जो आयोजन स्थल पर जाकर वहां से आंखों देखा हाल सुनाने की व्यवस्था करती है। आकाशवाणी दिल्ली के ओबी टीम इंचार्ज शक्तिधर ध्यानी बताते हैं कि आकाशवाणी से कार्यक्रमों के प्रसारण में ओबी टीम किस प्रकार कार्य करती है।
5: आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि स्टूडियो कैंपस से बाहर जो भी रिकॉर्डिंग्स होते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, उसी का काम है। ओबी यूनिट उसी काम को करती है। पहले ये था कि ओबी के लिए जो था कि बहुत सारे इक्विपमेंट बहुत सारा ले जाना पड़ता था, काफी भारी इक्विपमेंट भी होते थे। जैसे पहले FM लिंक यूज करते थे हम। आउटसाइड फील्ड में जाके स्पोर्ट्स के इवेंट भी हमें करने पड़ते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस तो हमारा नेशनल फंक्शन है, ये तो हर साल करना पड़ता है हमको। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग, कभी कभी तो स्टूडियो की रिकॉर्डिंग से भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होके आती है। टेक्निकली पहले जैसे हम लीज लाइन्स यूज करते थे, FM लिंक यूज करते थे और ओबी बैन यूज करते, ओबी बैन तो आज भी यूज हो रही है, और एनी नॉन एक्सचेंज लाइन्स यूज करते थे, जो एक्सचेंज उनमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, नॉइज की प्रॉब्लम आ जाती थी। उसके PSTN लाइन्स होती हैं उनको, उसके बाद आ गया डिजिटल लाइन, आ गया ISDN लाइन्स, उसके लिए कोडेक्स आएगा और उससे क्वालिटी

0: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: रेडियो प्रसारण का वो दौर एक नई करवट बदलता है जब दूरदर्शन का विस्तार हो रहा था। हम लोग खानदान, बुनियाद, ये जो है जिंदगी, सुरभि, चित्रहार जैसे कार्यक्रमों का असर रेडियो के श्रोताओं पर भी पड़ा। इस दौर में जीवन सौरभ, ये कहां आ गए हम, दहलीज, मानव का विकास जैसे अनेक रेडियो धारावाहिक आकाशवाणी से प्रसारित हुए। प्रबुद्ध रेडियो ब्रॉडकास्टर्स ने इन कार्यक्रमों का निर्माण किया। ऐसे ब्रॉडकास्टर्स में एक नाम उषा भसीन भी है। वे बताती हैं,
2: लोक सेवा प्रसारण और विकास संचार के क्षेत्र में आकाशवाणी एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल प्रयोगों में जाना जाता है। और आकाशवाणी की सफलता का मेरे अनुभव से एक बहुत बड़ा कारण है कि आकाशवाणी ने अपने आप को श्रोताओं के दिल से भी जोड़ा, और सूचना देने और व्यावहारिक परिवर्तन का जो एक लंबा रास्ता है उसके बीच का, वो आकाशवाणी ने बखूबी तय किया अपने कुछ धारावाहिकों के माध्यम से, जिसकी आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर शुरुआत हुई 1988 में, और पहला धारावाहिक बना जीवन सौरभ, जो किशोरों की समस्याओं को लेकर था और पारिवारिक कलह और समाज में अनुशासनहीनता का जो उन पर एक आरोप लगता था, उस सब के कारण बना। उसके बाद उनकी मांग पर जीवन सौरभ दो बना, जो वैवाहिक संबंधों के बारे में था। बाद में बाहर की जो संस्थाएं थी कुछ, जैसे पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है और पॉपुलेशन कम्युनिकेशन इंटरनेशनल न्यूयॉर्क में है, इन लोगों के साथ मिलकर हमने दहलीज बनाया। वो तो ड्रामा था, फिर किशोरों पर, और तिनका तिनका सुख बनाया, फिर ये कहाँ आ गए हम बनाया। तिनका तिनका सुख एक ऐसा धारावाहिक है जो आकाशवाणी को विश्व के जो मीडिया अध्ययन में एक सर्वोच्च स्थान दिलवाता है, क्योंकि उस पर इतना अध्ययन हुआ, इतना प्रकाशन हुआ है, उसमें अमेरिका में PhDs हुई हैं और बहुत सारे किताबों में उस पर चैप्टर लिखे गए हैं, तो वो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। इन सब धारावाहिकों में एक विशेष मेथोडोलॉजी होती थी और ताकि श्रोताओं से जुड़े रहें।
3: 1977 में लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। उस काल में 1979 में प्रसार भारती विधेयक लोकसभा में लाया गया था। सरकार की अस्थिरता से वो विधेयक कारगर न हो पाया, लेकिन लगभग एक दशक बाद 1990 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता देने के उद्देश्य से प्रसार भारती अधिनियम संसद ने पास किया। इसकी अधिसूचना 15 सितंबर 1997 को जारी की गई। 23 नवंबर 1997 से प्रसार भारती अधिनियम लागू किया गया।
1: स्वायत्तता का प्रभाव प्रसार भारती पर पड़ने लगा, आय के संसाधन बढ़ाए जाने लगे। वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर सुखजिंदर कौर को मार्केटिंग हेड बनाया गया। वे अपने अनुभव को साझा कर रही हैं।
4: जहाँ तक कमाने की बात है, वैसे कमा तो रेडियो रहा ही था। वैसे बहुत से कमर्शियल सेंटर्स थे जो अपने अपने इलाके में वो कुछ ना कुछ रेट फिक्स थे, जो उस हिसाब से वो एडवर्टाइजमेंट लेते थे। लेकिन मार्केटिंग की जरूरत तब महसूस हुई जब बिल्कुल सरकार ने कुछ भी पैसा देना बंद कर दिया। इसलिए हमें अपने आप ही कोशिश करके, कि जब मुझे DDG ने बुलाया तो गायकवाड़ साहब थे उन दिनों, उन्होंने कहा कि एक मार्केटिंग डिवीजन शुरू करनी है। मैंने कहा ठीक है सर, कुछ नहीं मुझे पता उसके बारे में, लेकिन आप मुझे 4 टेक्स्ट दीजिए अपनी मर्जी से, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो दैट इज हाउ हमारा

0: आंखों देखा हाल के माध्यम से क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस इत्यादि जैसे खेलों को आकाशवाणी घर घर पहुंचाती रही है। जब रेडियो देश में जनसंचार का सबसे प्रमुख माध्यम था, तब इन खेलों में आम लोगों की दिलचस्पी जगाने का काम आकाशवाणी ने ही किया। जब भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लिया, तब आकाशवाणी के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों ने इन खेलों से उत्पन्न उत्तेजनाओं को साझा किया। भावनात्मक एकता को सशक्त बनाने के इनसे बड़े उदाहरण और क्या हो सकते हैं। आकाशवाणी का खेल कूद के प्रति दायित्व केवल आंखों देखा हाल सुनाकर ही समाप्त नहीं हो जाता। समाचार बुलेटिनों में तो खेल कूद संबंधी समाचारों को स्थान दिया ही जाता है, साथ ही खेल कूद को ही समर्पित बुलेटिन भी प्रसारित किए जाते हैं। देश ने जब भी कभी एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, क्रिकेट विश्व कप या अन्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, तब आकाशवाणी ने ऐसे आयोजनों के लिए देश में माहौल बनाने और लोगों में दिलचस्पी पैदा करने में सार्थक भूमिका निभाई है।
1: अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग जसदेव सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं।
2: जहां तक कमेंट्री की बात है, सन 1964 टोक्यो ओलंपिक में पहली बार जसदेव सिंह जी ओलंपिक में गए थे हिंदी कमेंट्री करने के लिए, इसलिए उन्हें हिंदी कमेंट्री का आदि गुरु कहा जाता है। 1970 से 1980 के दशक के बीच में हॉकी और क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी टूर्नामेंट्स हुए जिसमें भारत ने नाम कमाया। 1975 का जो हॉकी का विश्व कप भारत ने जीता है, 15 मार्च सन 1975 को वो मुकाबला कुआलालंपुर में था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और मुझे याद है मैंने आकाशवाणी पर, तब मैं रेडियो में आया नहीं था, रेडियो पर मैंने इसकी कमेंट्री सुनी थी और भारत को विश्व विजय बनते हुए सुना था। क्रिकेट हो, हॉकी हो, दूसरे खेल हो, इन सभी को आकाशवाणी ने जन जन तक पहुंचाया है और आज भी पहुंचा रही है।
3: कुआलालंपुर में आयोजित जिस कमेंट्री का जिक्र कुलविंदर सिंह कंग कर रहे हैं, उसकी एक झलक आप भी सुनिए।
4: ये मेरी बाएं फ्लैंक के अंदर लेफ्ट हाफ के स्थान पर इफ्तिखार को, इफ्तिखार ने पास दिया अख्तर रसूल को, अख्तर रसूल ने फिर इफ्तिखार को, इफ्तिखार ने जाहिद को, जाहिद बहुत खतरनाक खिलाड़ी, उन्होंने लेफ्ट आउट के स्थान पर मंसूर जूनियर को दे दिया जो सेंटर फॉरवर्ड, असलम ने इंटरसेप्ट किया, असलम ने गेंद छीन ली मंसूर जूनियर से लेकिन असलम का फाउल लिया अंपायर ने और यह फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को जिन्होंने हिट लगाया, पास दिया अख्तर रसूल को, अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे चौकर ने वहां पे पहुंच गया अब्बास, अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और यह खेल खत्म, भारत को 1-0 जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। और यह समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं 2-1 से।
3: रेडियो प्रसारण की एक विधा विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक समारोहों का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करना भी है। वरिष्ठ रेडियो ब्रॉडकास्टर ऋतु राजपूत बता रही हैं,
5: रेडियो कमेंट्री रेडियो की एक सबसे खूबसूरत आकर्षक विधा है और ऐसी विधा है जो किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई टॉक कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं या कोई लेख पढ़ रहे हैं तो आपके सामने आपकी स्क्रिप्ट होती है, लेकिन कमेंट्री के तहत जब हम रेडियो कमेंट्री की बात करते हैं या आंखों देखा हाल है या सजीव प्रसारण है, जब हम उसकी बात करते हैं तो आप सामग्री तो तैयार रखते हैं जहां इवेंट हो रहा है उस इवेंट की, लेकिन आपको कई बार एक्सटेम्पोर बोलना पड़ता है क्योंकि स्थितियां कब कैसे करवट बदल लें ये एक कमेंटेटर को उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। रेडियो कमेंट्री कठिन है, जी हां, डगर पनघट की बहुत कठिन है और कठिन मैंने इसलिए कहा कि इसमें आपकी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, आपके नाक है, कान है, आंख है, त्वचा है, जीभ है, इन सब के माध्यम से कमेंट्री को प्रस्तुत किया जाता है। आपकी आंखें देखती हैं, आपकी नाक सूंघती है, फूलों की खुशबू है, कौन सा फूल है, कहाँ से खुशबू आ रही है, आपकी त्वचा महसूस करती है आर्द्रता कितनी है, गर्मी कितनी है, तापमान कैसा है, आपकी जीभ बोलती है और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कान सुनते हैं, जो बैंड की ध्वनि है, शोर है, चिड़ियों की आवाज़ है, बादल का गर्जन है, जितनी भी आवाज़ें जहाँ पर आप मौजूद हैं हो सकती हैं, वो सब आपको कहीं ना कहीं पिरोनी होती हैं, समेटनी होती हैं अपनी कमेंट्री के माध्यम से। इसीलिए मैंने कहा कि रेडियो की जो कमेंट्री होती है जितनी असरदार होती है, जितनी प्रभावी होती है, उतनी ही कठिन।

0: भी होती है।
1: आइए उनकी प्रस्तुति की एक झलक सुनिए।
2: बहुत ही खूबसूरत खाकी वर्दी में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता आ रहा है और अपनी उपस्थिति का आभास करा रहा है। वाह, क्या सल्यूट है। 14 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी से सम्मानित हो चुकी है दिल्ली पुलिस की ये टुकड़ी। सारे जवान श्रोताओं इसमें 6 फुट लंबे हैं और इनका आदर्श वाक्य है शांति, सेवा और न्याय। हमने डरना कभी ना जाना आंधी से, तूफान से। देखो हम बढ़ते जाते कैसे अपनी शान से।
3: माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीके कुठियाला अपना अनुभव साझा कर रहे हैं।
4: 1983 में जब मैं भारतीय जन संचार संस्थान दिल्ली में शोध और अध्यापन में कार्यरत था, अनौपचारिक रूप से अनुभव लेने के लिए आकाशवाणी के न्यूज रूम में जाया करता था, क्योंकि वहाँ अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के न्यूज रूम में काम करते थे। मुझे याद है कि एक दिन सुबह का बुलेटिन था और समाचार रॉयटर का और बीबीसी का आया कि ग्रेनेडा, एक छोटा सा देश अमेरिका के पड़ोस में, उसको अमेरिका ने स्वतंत्र करवा दिया। बिना सोचे समझे ये समाचार हमने बुलेटिन में डाल दिया, मगर 7 बजते-बजते हलचल मच गई और फिर समझ में आया कि भारत की दृष्टि से यूएस ने, अमेरिका ने ग्रेनेडा को स्वतंत्र नहीं कराया था, अमेरिका ने तो उस पर कब्जा किया था, आक्रमण किया था। और उसके बाद जो लोग उस बुलेटिन में कार्यरत थे उनका ट्रांसफर हुआ और मुझे भी न्यूज़ रूम में जाने के लिए कुछ दिन के लिए मना कर दिया गया। इतने मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि आकाशवाणी से दी गई सूचनाएं कितनी संवेदनशील, सेंसिटिव होती हैं और कितना उनमें तथ्यात्मक इनपुट होना चाहिए, ये इस घटना से समझ में आया, जो मैंने आगे कक्षाओं में विद्यार्थियों को और प्रशिक्षकों को बताने का प्रयास किया।
1: विजय दीक्षित उन महान रेडियो ब्रॉडकास्टर्स में से एक है जिन्हें प्रसारण कला के साथ जीवन दर्शन का भी ज्ञान है। वे वयोवृद्ध होने के साथ साथ अस्वस्थ भी हैं, फिर भी बड़ी काम की बात बता रहे हैं।
5: आकाशवाणी बहुत गरिमामय सेवा रही है। रेडियो सुनकर लोग घड़ी मिला लेते थे, समाचार हो कि अन्य कार्यक्रम, आवाजें ऐसी कि सुनते चले जाए। भाषा आम बोलचाल की मगर शब्द और उच्चारण एकदम शुद्ध, किसी श्रोता तक गलत भाषा ना पहुंचे, इसका पूरा पूरा ध्यान आकाशवाणी ने हमेशा रखा। अलग अलग भाषा भाषी केंद्रों पर श्रोताओं के पत्र और पोस्ट कार्ड हजारों की संख्या में आते थे। आकाशवाणी का मतलब यह था कि देश और समाज में संवादहीनता की स्थिति कभी ना आए।

0: आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र पर काम करते हुए अपनी परंपराओं को बनाए रखा। एक परंपरा श्री रामचरितमानस की भी है जो 1980 से निरंतर चली आ रही है।
1: 1980 में भोपाल केंद्र पर एक ऐसी महत्वपूर्ण शुरुआत हुई जिसे आज तक लोग याद करते हैं और वो शुरुआत थी भारत में मानस गान का प्रसारण।
2: मानस गान की रिकॉर्डिंग से जुड़े पक्ष को बता रहे हैं वरिष्ठ रेडियो ब्रॉडकास्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव।
1: मानस गान यानी रामचरित मानस गान का प्रसारण उस समय भोपाल केंद्र के निदेशक श्री समर बहादुर सिंह हुआ करते थे और ये समर बहादुर सिंह जी का ही ख्याल था कि यहाँ पर जो कलाकार हैं

उनके साथ मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जा सकता है जो लोगों के घर घर तक सुबह सुबह पहुंचे, और इसी विचार ने मानस गान को जन्म दिया था। मानस गान के लिए उस समय कुछ सितारे या कुछ कलाकार जो है वो केंद्र पर ही कार्यरत थे, लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे प्रसारण क्षेत्र में कुछ अन्य कलाकार थे वो भी इसमें शामिल हुए, जिनमें प्रमुख नाम रामकृष्ण चंदेश्री, जयश्री थत्ते, इंद्र कुमार, और साथ ही साथ जो हमारे संगीतकार थे, संगीतज्ञ जो कलाकार थे, जो वाद्य कलाकार थे, उन्होंने भी इसमें भरपूर सहयोग दिया। और इसकी जो पहली रिकॉर्डिंग है वो तत्कालीन राज्यपाल महोदय के यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने इसका, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रारंभ किया प्रसारण हेतु, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जिसे आज तक याद किया जाता है।

0: भारत में रेडियो प्रसारण की गौरव यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के प्रसारण पर अपने एक संबोधन में कहा,
1: मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे बातें करने के लिए, और रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं बहनों नौजवानों में है, मेरी देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूं। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। फिर एक बार मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
2: प्रधानमंत्री जी के मन की बात के प्रसारण का सार्थक प्रभाव पड़ा। दूर दराज के श्रोता रेडियो से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उसे आगे बढ़ाने में आकाशवाणी सदैव अग्रसर रही है। शीघ्र ही हम शताब्दी समारोह की ओर बढ़ेंगे।

0: प्रसारण की प्रतिध्वनियां इस श्रृंखला की छठी और अंतिम कड़ी से जुड़े सभी श्रोताओं का आभार। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। इस विशेष श्रृंखला के समापन के साथ स्वीकार करें देवेंद्र त्रिपाठी
1: और निशा भारद्वाज का नमस्कार।
2: प्रसारण की प्रतिध्वनियां। अभी आप सुन रहे थे इस विशेष वृत्त रूपक श्रृंखला का छठा और अंतिम भाग। वाचन स्वर थे निशा भारद्वाज और देवेंद्र त्रिपाठी के। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
0: श्रोताओं, अभी सुन रहे थे आकाशवाणी के प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने पर विशेष वृत्ति रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनियां। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
3: न्यूज़ का फिट है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोलना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान के साथ खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्वी भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बुलेटिन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 11:10 और पूरे हो चुके हैं 20 सेकंड। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों पर आधारित कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले अब आप सुनेंगे भारती सिंह को।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस, और अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह जी के स्वर में गीत और अगली प्रस्तुति रूमा लाला की।

अभी आप सुन रहे थे रूमा लैला के स्वर में ये गीत, और अब आप सुनेंगे पंजाबी गीत गुरदास मान जी की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सब रस, और अब समय हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम सुरमंजरी में आज आप सुनेंगे सारंगी पर बजाया राग वृंदावनी सारंग। कलाकार है मुराद अली। आपके साथ तबले पर साथ दे रहे हैं अरमान अली, और आपका तानपुरे पर साथ दे रहे हैं धीरज।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमंजरी। आज आपने सुना सारंगी पर बजाया राग वृंदावनी सारंग। कलाकार थे मुराद अली। तबले पर संगत कर रहे थे अरमान अली और तानपुरे पर साथ दे रहे थे धीरज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed.

0: आंगन। घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का
1: और मेरा यानी दीपा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना, स्वयं पर विश्वास करना। स्वामी विवेकानंद द्वारा कहे गए इस विचार का तात्पर्य है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास और उसकी सच्ची पहचान होती है।
0: और जब हम अपने मूल्यों और स्वभाव के प्रति ईमानदार रहते हैं, तब सफलता और संतोष दोनों हमारे जीवन में आते हैं।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन और आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर।
1: और प्रतिभा, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, पर सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने गीत सुना मन गाए वो तराना। फिल्म थी चालाक और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा देखो, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई जी की जन्मतिथि है। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत में असम प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्होंने प्रगतिशील औद्योगिक और शैक्षिक नीतियां लागू की और गुवाहाटी विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
0: और असम के राज्यपाल श्री जय राम दास दौलत राम ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया था। गोपीनाथ बरदलोई जी को मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई जी को उनकी जन्म तिथि पर सादर नमन। और प्रतिभा, हमने अभी असम की बात करी और आज मैं अपने दोस्तों को कुछ खास बताना चाह रही हूँ मेखला चादर साड़ी के बारे में।
1: अच्छा
0: दोस्तों, आज मैं आपको असम की खूबसूरत पारंपरिक वेशभूषा मेखला चादर के बारे में बताना चाहूंगी। ये केवल एक परिधान नहीं बल्कि असम की संस्कृति, कला और विरासत की पहचान है। सदियों से ये असम की महिलाओं द्वारा त्योहारों, विवाह समारोहों और अन्य विशेष अवसरों पर पहनी जाती रही है।
1: बिल्कुल दीपा, देखो असम का नाम आते ही चाय के बागान, बीहू और मेखला चादर की छवि मन में उभर आती है और इसकी सुंदरता और गरिमा वास्तव में मन मोह लेती है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। और इसकी खास बात ये भी है कि ये सामान्य रूप से साड़ी जो है कुछ अलग होती है। ये दो भागों से मिलकर बनी होती है। नीचे का भाग मेखला और ऊपर ओढ़ा जाने वाला भाग चादर कहलाता है।
1: यानी साड़ी जैसी दिखने के बावजूद इसकी जो अपनी एक अलग पहचान और शैली है और यही इसकी विशेषता है। और इसको जो महिलाएं पहनती हैं, ये वेशभूषा उनको एक साथ पारंपरिक सौम्य और आकर्षक रूप प्रदान करती है।
0: हाँ, और मेखला चादर मुख्य रूप से सिल्क जैसे मूंगा, पाट, एरी के साथ साथ कॉटन कपड़ों से भी बनाई जाती है। असम का सुवाल कुची क्षेत्र अपनी उत्कृष्ट रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है।
1: बिल्कुल, और देखो एक परिधान के पीछे इतनी समृद्ध कला और परंपरा जुड़े होना अपने आप में अद्भुत है और इसकी पहचान भी जो है, वो जो शैली है वो इतनी रोचक है। श्रोताओं, मेखला को कमर पर लपेटकर सुंदर प्लीट्स बनाई जाती हैं, फिर चादर को ब्लाउज के ऊपर कंधे पर बड़े ही सलीके से ओढ़ा जाता है।
0: और तभी तो ये परिधान अपनी सादगी और शालीनता के लिए विशेष रूप से पसंद किया जाता है। इसलिए मेखला चादर असम की सांस्कृतिक विरासत, महिलाओं की गरिमा और पारंपरिक शिल्प कला का जीवंत प्रतीक है। और प्रतिभा, तुमने थोड़ी देर पहले असम चाय के बागानों की बात की थी, तो क्यों ना अपने दोस्तों को ये प्यारा सा गीत सुनवाए।
1: बिल्कुल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी बरसात की एक रात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी हमेशा से ही हमारा साथी रहा है और पिछले कई वर्षों से, 90 वर्षों से सतत हमारा साथ निभा रहा है। इसके विकास की यात्रा 90 वर्ष लंबी है।
2: और श्रोताओं, आज़ादी के समय से ऑल इंडिया रेडियो का नेटवर्क मात्र 6 केंद्रों और 18 ट्रांसमीटरों तक ही सीमित था। वर्तमान में

0: आकाशवाणी 231 केंद्रों, 303 चैनलों और 755 ट्रांसमीटरों के विशाल नेटवर्क के साथ देश का सबसे बड़ा प्रसारक है।
1: ये नेटवर्क आज देश के लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र और 98% से अधिक आबादी तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करता है। विविधता को समेटते हुए आकाशवाणी द्वारा देश की 23 भाषाओं और 189 बोलियों में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
0: आधुनिक दौर में डीटीएच, न्यूज ऑन एयर ऐप और वेव्स ओटीटी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इसकी पहुंच युवाओं तक भी मजबूत हुई है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी का साथ ऐसे ही हमारे साथ बना रहेगा और आकाशवाणी यूं ही गीत, संगीत, मनोरंजन, स्वास्थ्य जानकारियों को हम तक निरंतर पहुंचाता रहेगा।

0: तू जो मेरे सुर में, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी चित्तौर, गायक कलाकार थे हेमलता यशोदास।
1: दीपा, देखो गर्मी की छुट्टियों में घूमने फिरने और अपने प्रियजनों से मिलने का उत्साह हर किसी में दिखाई देता
0: हाँ
1: है
0: बिल्कुल,
1: ना?
0: ये तो सही कहा।
1: और ऐसे में भारतीय रेल लाखों यात्रियों की पहली पसंद बन जाती है।
0: बिल्कुल प्रतिभा, और अब यात्रा को और आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे का रेल वन सुपर ऐप यात्रियों के लिए एक ही स्थान पर टिकट, PNR स्टेटस, ट्रेन की लाइव जानकारी, कोच पोजीशन, भोजन ऑर्डर और कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
1: बिल्कुल, यानी कि यात्रा से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं एक ही ऐप में मिल जाती हैं, और ये देखो कितना सुविधाजनक भी है ना?
0: बिल्कुल प्रतिभा, और इसके साथ ही इसमें रेल मदद सुविधा भी शामिल है। यदि यात्रा के दौरान सफाई, पानी, सीट, सुरक्षा, चिकित्सा सहायता या किसी अन्य समस्या का सामना हो तो यात्री तुरंत शिकायत दर्ज करके उसकी प्रगति भी देख सकते हैं। रेल मदद की ऑनलाइन सेवा www.railmadad.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: और दोस्तों, यदि किसी का सामान ट्रेन में छूट जाए तो ऐसी स्थिति में रेल मदद या रेलवे हेल्पलाइन 139 के माध्यम से सूचना दी जा सकती है। और साथ ही रेलवे का ऑपरेशन अमानत अभियान भी यात्रियों के छूटे सामान को उनके वास्तविक स्वामी तक पहुंचाने का प्रयास करता है।
0: और ये जानकारी निश्चित रूप से यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी है प्रतिभा। और लेकिन लंबी यात्रा में मनोरंजन भी तो जरूरी
1: बिल्कुल,
0: है ना? तो
1: हाँ
0: रेल वन ऐप में प्रसार भारती का ओवर द टॉप OTT डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से यात्री यात्रा के दौरान रेडियो, टीवी चैनल, समाचार और मनोरंजन कार्यक्रमों का भी आनंद ले सकते हैं।
1: यानी रेल वन केवल यात्रा की जानकारी ही नहीं बल्कि सफर को और भी आनंददायक बनाने में मदद करता है ना? और
0: बिल्कुल
1: देखो,
0: बिल्कुल।
1: जो रेल वन ऐप है उसको हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। और सही जानकारी और सेवाओं के लिए हमेशा हम श्रोताओं से यही कहेंगे कि भारतीय रेलवे की आधिकारिक जो साइट है, जो प्लेटफॉर्म है, उसी का ही उपयोग करें।
0: ये तुमने बहुत अच्छी बात बताई प्रतिभा। तो साथियों, अगली रेल यात्रा से पहले अपने मोबाइल में रेल वन सुपर ऐप अवश्य डाउनलोड करें और रेल वन तथा रेल मदद की सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक और आनंददायक बनाएं।

0: और श्रोताओं, अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना। फिल्म थी दोस्त और आवाज़ थी किशोर कुमार की।
1: दोस्तों, हमारा घर आंगन कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में अपने विचार, प्रतिक्रियाएं, सुझाव हमें अवश्य लिखें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं और इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है, आप नोट कर लें, fmgoldga@gmail.com।
0: जी हाँ, fmgoldga@gmail.com। दीपा, देखो, योग जीवन जीने की कला है और योग
1: बिल्कुल
0: का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, जो हमें सिखाता है तन मन और आत्मा से जुड़ना, यानी ऐसी चीज के साथ जुड़ना जिसे आप जानना चाहते हैं। उसके लिए उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ योग सिखाता है।
1: और योग दोस्तों हमें ये भी सिखाता है कि हर काम को एकाग्रता, निष्ठा और पूर्ण समर्पण से किया जाए, ताकि हर प्रयास सार्थक बने और जीवन में संतुलन और सफलता आए।
0: योग शारीरिक व्यायाम या ध्यान का माध्यम ही नहीं, बल्कि कर्मों में कुशलता लाने का साधन भी है, यानी योगः कर्मसु कौशलम्।
1: जब व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों तथा अपनी ज्ञानेंद्रियों को साथ लेता है, वही असली योग कहलाता है। यानी सफलता, असफलता, लाभ, हानि, सुख दुख में जब व्यक्ति मन को स्थिर रखना और सम रखना सीख जाता है, तो वो सच्ची योग साधना होती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा दीपा आपने। देखो, योग केवल आसन या प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं और आप काम को कैसे कर रहे हैं, उस काम की कुशलता भी योगिक क्रिया है।
1: तो योग धारणा धारण के द्वारा हम अपनी जीवन को सफल बना सकते हैं, जो योग द्वारा ही हम सभी जानते हैं संभव है, क्योंकि आजकल योग हम सभी करते हैं और क्योंकि योग विचार कर्म ध्यान की सिद्धि का मार्ग है। क्यों
0: बिल्कुल
1: प्रतिभा, मैंने
0: बिल्कुल,
1: सही कहा
0: हाँ
1: ना? तो
0: बिल्कुल,
1: क्यों ना योग को अपनाकर जीवन को एक नई दिशा दी जाए।

0: हमको मन की शक्ति देना, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी कुट्टी और गायिका थी वाणी जयराम।
1: और देखो दीपा, प्राकृतिक संसाधन हमेशा से मानव सभ्यता का कल्याण करते आए हैं, लेकिन विकास के क्रम में हम इन संसाधनों को कहीं भूल रहे थे, क्यों, है ना? और आज तकनीक और विज्ञान ने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को पहचान कर उन्हें एक नया और कारगर नज़रिया दिया है, और इन संसाधनों का उपयोग कर रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश भी की है।
0: बिल्कुल प्रतिभा, और जिसमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल विशेष है। आज सौर ऊर्जा बिजली आपूर्ति का बेहतर विकल्प है, साथ ही साथ सौर ऊर्जा पूर्ण रूप से प्राकृतिक भी है। तो क्यों ना हम आज बात करें सोलर इन्वर्टर की।
1: बिल्कुल, तो सबसे पहले जानते हैं कि सोलर इन्वर्टर क्या होता है। श्रोताओं, सोलर इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो सोलर पैनल से प्राप्त डीसी यानी डायरेक्ट करंट को एसी यानी अल्टरनेटिव करंट में परिवर्तित करता है।
0: और अल्टरनेटिव करंट का उपयोग घरों, कार्यालयों और उद्योगों में किया जाता है। और अगर आप अपने घरों में सोलर पैनल लगवाते हैं तो इन्वर्टर के बिना सोलर पैनल से प्राप्त ऊर्जा आपके उपकरणों को चलाने में सक्षम नहीं होगी। यानी सोलर पैनल के साथ सोलर इन्वर्टर का होना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, और सोलर इन्वर्टर सौर ऊर्जा को रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए उपयोगी भी बनाता है। आज मार्केट में सोलर इन्वर्टर के कई प्रकार उपलब्ध हैं। आप अपनी ज़रूरत और इनकी कार्य क्षमता के अनुसार सोलर इन्वर्टर का चुनाव कर सकते हैं।
0: और अब बात सोलर इन्वर्टर के फायदों की भी करें। इससे बिजली बिल में कमी होती है, क्योंकि दिन के समय सीधे सोलर पैनल से आपके घर के उपकरण चलते हैं। सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बैटरी को धीरे धीरे और बेहतर तरीके से चार्ज करता है, जिससे बैटरी की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा। और देखो दीपा, अगर सोलर इन्वर्टर ग्रिड टाई या हाइब्रिड मोड के हैं तो पैनल द्वारा बनाई

0: अभी तो जीले, अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना। आवाज़ थी किशोर कुमार और आशा भोसले की।
1: प्रतिभा, देखा जाए तो आजकल मौसम भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। कभी धूप, कभी उमस, कभी आंधी तूफान और कभी बारिश, जो मौसम को और सुहावना बना देते हैं।
0: बिल्कुल दीपा, इसलिए आज हम लेकर आए हैं एकदम कूल, हेल्दी और रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक, जिसका नाम है कैरी कोकोनट पन्ना। कच्चे आम की खटास और नारियल की मिठास, है ना? क्या बात है ना?
1: क्या बात है। और इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए जो सामग्री, मैं आपको बताना चाहूंगी। कच्ची कैरी लगभग 200 ग्राम कटी हुई, आधा मध्यम आकार का नारियल कटा हुआ, आधा इंच अदरक, एक छोटी हरी मिर्च, 7 से 8 करी पत्ते, 1/4 कप धनिया कटा हुआ, 5 से 6 कप पानी, स्वादानुसार नमक या काला नमक और स्वादानुसार गुड़ या चीनी।
0: तो अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले कैरी को पानी के साथ कुकर में 3-4 सीटी लगाकर उबाल लें और ठंडा होने पर इसका पल्प निकाल लें, और जो उबला हुआ पानी है उसे भी संभाल कर रखें।
1: बिल्कुल ये सही बताया प्रतिभा। और अब कैरी के पल्प को 1 कप पानी, नारियल, अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ते, हरा धनिया और थोड़ा पानी डालकर मिक्सर में ब्लेंड कर लें। ब्लेंड होने के बाद इसे छलनी से छान लें।
0: और अब जो मिश्रण है इसे छान कर जो निकाल लिया, उसमें नमक या काला नमक अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। जो उबला हुआ पानी संभाल कर रखा था उसे भी आवश्यकता अनुसार इसमें मिला लें। अब इसमें गुड़ या चीनी मिला दें। अगर आपको तुरंत ठंडा ठंडा सर्व करना है तो इसमें आप क्रश आइस भी डाल सकते हैं।

0: और अगर छानने के बाद दोस्तों नारियल के छोटे छोटे टुकड़े रह जाएं तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। वही बीच बीच में इस कूल ड्रिंक को हल्का सा क्रंची टेस्ट देंगे जो इसका मजा और भी बढ़ा देता है।
1: और अपनी पसंद के हिसाब से इसे थोड़ा गाढ़ा या पतला भी किया जा सकता है।
0: अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फिर ठंडे ठंडे गिलास में सर्व करें।
1: तो दोस्तों इस गर्मी आप भी घर पर बनाइए कैरी कोकोनट पन्ना और अपने परिवार के साथ लीजिए इसका भरपूर आनंद।
2: ले लो ना नारियल।

0: ये बाबू ले लो नारियल पानी, ये फिल्म अपना देश से आपने भी सुना, गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा जी देखिए, हम सभी जानते हैं और मान भी रहे हैं कि प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो क्या प्लास्टिक मुक्त जीवन जीना संभव है? शायद इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। सोचिए हम रोजाना कितनी प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, पॉलीथिन बैग, पानी की बोतलें, स्ट्रॉ, डिस्पोजेबल कूप और प्लेटें। उपयोग के बाद इनमें से अधिकांश कूड़े के ढेर नालियों, नदियों और समुद्र तक पहुंच जाती हैं, जहां ये नष्ट नहीं होती।
1: बिल्कुल, एक सकारात्मक और दृढ़ कोशिश से मतलब बदलाव लाए जा सकते हैं। तो जब आप घर से बाहर निकलें तो सूती या जूट के जो है थैले लेकर निकलें। पानी के लिए आप प्लास्टिक की बोतल के बदले में स्टील की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर भी होंगे। और साथ ही साथ दीपा देखो, रसोई में प्लास्टिक के डिब्बे हटाकर कांच या स्टील के डिब्बों का उपयोग भी किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी कि जब हम बाहर से खाना मंगाते हैं तो नो कटलरी नो प्लास्टिक प्लेट्स का विकल्प चुन सकते हैं।
0: और आज जगह जगह ऐसे स्टोर्स स्थापित किए जा सकते हैं जहां आप शैम्पूज, बॉडी वॉश, किचन क्लीनर, दालें आदि को रिफिल करवा सकें, जिससे बहुत हद तक प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम किया जा सके।
1: और दीपा देखो, अपने श्रोताओं को बता दें कि इस दिशा में मदर डेयरी द्वारा एक सकारात्मक पहल की गई है। कंपनी ने कहा है कि अब वह दूध की पैकिंग पॉली पाउच के बजाय नेचुरली डिग्रेडेबल पाउच में करेंगे।
0: कंपनी ने यह भी कहा है कि इस पाउच से दूध निकलने के बाद यदि इसे फेंक दिया जाए तो 2 से 3 साल में ये खुद गलकर मिट्टी में मिल जाएगा। श्रोताओं आपको ये बता दें कि 5 जून 2026 से दिल्ली NCR में पर्यावरण के प्रति सुरक्षित पॉली पाउच में दूध की पैकिंग की शुरुआत हो चुकी है।
1: बिल्कुल, देखो श्रोताओं, प्लास्टिक मुक्त जीवन का अर्थ केवल प्लास्टिक का विरोध करना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के साथ इनका उपयोग करना और जहां तक संभव हो इसको बेहतर बनाने की कोशिश भी
0: बिल्कुल
1: करनी चाहिए। छोटे छोटे बदलाव और हम अपने खुद में कुछ परिवर्तन ला के अपने पर्यावरण को और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं।

0: बूंद जो बन गए मोती। इस फिल्म से आप गीत सुन रहे हैं, आवाज है मुकेश की। और दीपा देखो घड़ी ने इशारा कर दिया है
1: बिल्कुल,
0: चलने का, तो हम अपने श्रोताओं से लेते हैं अनुमति। तो मुझे यानी प्रतिभा को
1: और मुझे यानी दीपा भूषण को दे अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।

मंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा, दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आप सबके मेल्स हम तक पहुंच चुके हैं। आप सबने बिल्कुल सही गेस किया है। तो इस फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम। जी हाँ, साहिब बीबी और गुलाम 1962 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक बेहद प्रतिष्ठित और सदाबहार क्लासिकल हिंदी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अबरार अलवी ने किया है और निर्माण एवं सह निर्देशन गुरुदत्त ने किया था। इसके साथ साथ गुरुदत्त ने इस फिल्म में अभिनय भी किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार मीना कुमारी छोटी बहू के रूप में हैं, गुरुदत्त भूतनाथ के रूप में हैं, रहमान छोटे बाबू के रूप में हैं और वहीदा रहमान जवा के किरदार में शामिल हैं।

श्रोताओं, ये फिल्म साहेब बीबी और गुलाम बॉलीवुड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई और इसे गुरुदत्त के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये फिल्म 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल के सामंतवाद और जमींदारों के पतन को दर्शाती है। ये फिल्म बिमल मिश्रा के मशहूर बंगाली उपन्यास साहेब बीबी गुलाम पर आधारित है। श्रोताओं, आपको बता दें, ये फिल्म 29 जुलाई 1962 में रिलीज हुई। हालांकि ये व्यावसायिक रूप से उतनी ज़्यादा सफल नहीं रही। इस फिल्म ने कुल 84 लाख की कमाई की, फिर भी समीक्षकों ने इसकी सराहना की। कलाकारों के अभिनय, विशेष रूप से मीना कुमारी के अभिनय और वी के मूर्ति के छायांकन की सबसे अधिक प्रशंसा हुई।

श्रोताओं, साही बीबी और गुलाम फिल्म का संगीत हेमंत कुमार ने दिया था और गीत शकील बदायूनी ने लिखे थे। फिल्म के कुछ बेहद लोकप्रिय गाने आज भी चाव से सुने जाते हैं। श्रोताओं, इस फिल्म ने कुल 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, अबरार अलवी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और

श्रोताओं, बात करें इस फिल्म की कहानी की तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक सीधा साधा युवक भूतनाथ काम की तलाश में कलकत्ता आता है और एक बड़ी हवेली में रहने लगता है। वह छोटी बाबू की खूबसूरत लेकिन बेहद अकेली पत्नी छोटी बहू के संपर्क में आता है। छोटे बाबू को शराब पीने और वेश्याओं के कोठे पर जाने की लत होती है, जिससे परेशान होकर छोटी बहू उन्हें घर पर रोकने की हर संभव कोशिश करती है। अपने पति का प्यार पाने और उन्हें रोकने के लिए छोटी बहू भी शराब पीना शुरू कर देती है और धीरे धीरे इसकी आदी हो जाती है। भूतनाथ और छोटी बहू के बीच एक पवित्र और निस्वार्थ रिश्ता पनपता है, जहां भूतनाथ उसका शुभचिंतक या फिर यूं कहें गुलाब बन जाता है। अंततः यह कहानी इस पूरे परिवार और साम्राज्य के दुखद अंत की ओर लिए चलती है।

श्रोताओं, फिल्म कागज के फूल के बाद गुरुदत्त ने यह फैसला किया था कि वो कभी किसी फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे और यही वजह थी कि साहेब बेबी और गुलाम फिल्म के निर्देशक उनके लेखक दोस्त अबरार अलवी ने किया था। साथ ही वहीदा रहमान इस फिल्म में मीना कुमारी का किरदार यानी छोटी बहू की भूमिका निभाना चाहती थीं, पर उनकी कम

उम्र को देखते हुए गुरुदत्त ने मना कर दिया था। श्रोताओं, फिर वहीदा रहमान ने अबरार अलवी से कहकर अपने लिए इस फिल्म में रोल लिखवाया और फिल्म का हिस्सा बनी।

इस अंतिम गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम। श्रोताओं, आशा करती हूँ आपको फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ पसंद आई होगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश को दीजिए अनुमति।

0: सामाजिक सीता ने 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण नु प्राप्त करने लिए नौजवानों के शक्तिकरण अते हुनर विकास नु महत्वपूर्ण थम दस्या ते इस दिशा विच निरंतर कोशिशां दी जरूरत ते जोर दिता। केंद्रीय सभ्याचार ते सैर सपाटा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अज किया कि भारत की सूरज समर्था पिछले 12 साल 2.8 गीगावाट तो वध के 155 गीगावाट हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि 40 लाख तो वध घर सूरज ऊर्जा नाल प्रकाश मानने ते खेतीबाड़ी खेतर विच सूरज समर्था का दुगना होना चुगिरदे की संभाल के नाल नाल प्रगति का सबूत है। भारतीय हवाई अड्डा अथॉरिटी AAI ने देश भर में हवाई यात्रा करने वाले मुसाफरों के ढुकवे संपर्क को मजबूत करने लिए दो प्राइवेट कैब कंपनियों नाल समझौता पत्र MOU से दस्तखत किए ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच AAI ने कहा कि इस समझौते मुसाफरों को विश्व पद्धर के मुसाफर केंद्रित यात्रा अनुभव को प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करते ने। इस विच अगे कहा गया कि कैब्स भारत के प्रमुख हवाई अड्डा ते मुसाफरों लिए सहज किफायती ते भरोसेमंद कैब सेवावां प्रदान करनगियां। मॉरीशस ने उन्होंने विदेशी नागरिकां दे दाखले ते अस्थाई तौर ते पाबंदी ला दी है जिन्होंने पिछले 21 दिनों विच कोंगो युगांडा ज दक्षणी सुडान की यात्रा की है ज इस राही गुजरे ने। यह कदम ईबोला वायरस के फैलन के प्रतिक्रम विच चुकया गया है। स्थानक नागरिकां ते कारोबारी ज विद्यार्थी परमिट रखने वाले विदेशी नागरिकां नूं देश विच दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि जेकर उन्होंने पिछले 3 हफ्तों विच इन्हां विचों किसी भी देश की यात्रा की है तो उन्होंने 21 दिनों लिए क्वारंटीन करने की लोड़ होगी। प्रभावित देशों तो आने वाले यात्रियों लिए प्रवेश स्थान ते स्क्रीनिंग ते जोखम मुलंकण भी लाजमी होगा। भारतीय विकेट कीपर अते बल्लेबाज KS भरत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तो संन्यास लैण दा ऐलान कीता। उन्होंने 7 वार टेस्ट क्रिकेट विच भारत की नुमाइंदगी की थी। उन्होंने अपना आखिरी मैच फरवरी 2024 विच विशाखापट्टनम विच इंग्लैंड खिलाफ खेडिया सी। मर्दा के अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल विच अज भारत का मुकाबला मेजबान जापान नाल होगा। यह मैच शामी माफ करना दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। औरतों की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल विच अज भारत का मुकाबला बांग्लादेश नाल होगा। यह मैच गोवा के मडगांव विच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। आखिर खास खबर एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत आलमी आर्थिक अनिश्चितता के समय विच दुनिया की सब तो तेजी नाल बढ़ रही प्रमुख आर्थिकता वजों उभर रहा है। भारत नेपाल के विदेश मंत्री अज शाम नवी दिल्ली विच व्यापार निवेश संपर्क ते ऊर्जा समेत मुख्य खेत्रां विच सहयोग बढ़ाने लिए आपसी हितां दे मामले ते चर्चा करनगे। पंजाब विच सड़क हादसे विच घट्टो घट 9 लोगों की मौत ते कई हो सकमी। मॉरीशस ने इबोला वायरस के फैलन के प्रतिक्रम वजों पिछले 21 दिनों विच कोंगो युगांडा ज दक्षणी सुडान की यात्रा करने वाले विदेशी नागरिकां दे दाखले ते अस्थाई पाबंदी लाई। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 बजे ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सहल बनाया है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने नंबरों की तस्दीक और पेपर की दोबारा जाँच के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में कल तक तौसी की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी और ट्रक के दरमियान टक्कर के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक हुए हैं। IMD ने कल तक केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। वैभव सूर्यवंशी पहली मरतबा टीम में शामिल हुए हैं। अब खबरें तफसील से। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के जाब्तों को सहल बनाया है। नए सिरे से तैयार किए गए तरीके कार के तहत आम तौर पर FPI सरमायाकारी करने वालों को ज्यादा सहूलत होगी क्योंकि सरमायाकारी से मुतालिक बाज पाबंदियों को हटा लिया गया है। RBI ने मौजूदा जनरल और तवील मुद्दती सरमाया कारी से मुतालिक जुमरों को सरकारी तमस्सुकात और रियासती सरकारी तमस्सुकात के

एक वाहिद हद के तौर पर भी जम कर दिया है। इस नजरसानी शुदा तरीक़ेकार का मकसद सरमायाकारी को आसान बनाने के साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए लाजमी शराइत में कमी करना है। नजरसानी शुदा हिदायात का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने कहा है कि मीटिंग के दौरान फरीकैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राबतों, तवानाई, सरमायाकारी और तिजारत समेत दीगर अहम शोबों में तआवुन को बढ़ाया जा सके। जनाब शिशिर खनाल इन दिनों भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। अपनी हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि उनके इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खसूसी शराकतदारी मजीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ बातचीत के लिए भारत के पास तिजारत, सरमायाकारी, दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राबतों, तआवुन और तरक्या समेत एक तवील एजेंडा है। इसी दौरान नेपाल के वजीर खारजा खनाल कल नई दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत में नेपाल के सिफारतखाने के मुताबिक दोनों ने भारत और नेपाल के बाहमी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम करने की गर्ज से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर में आग लगने के हादसे के सिलसिले में केशव नेगी नाम के होटल के एक बावर्ची को गिरफ्तार किया है। इस माह की 3 तारीख को मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने का बड़ा वाकया पेश आया था और इसमें 21 लोगों की जान चली गई थी जबकि दीगर 40 जख्मी हो गए थे। इससे कबल पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल और दीगर मुतालिका दफात के तहत होटल के मालिक को भी हिरासत में लिया था। पुलिस ने कहा कि इस सिलसिले में मजीद पूछताछ और तहकीकात जारी है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नंबरों की तस्दीक और इम्तिहानात के पेपर फिर से जांचे जाने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में कल तक तौसी की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर बोर्ड ने कहा कि तलबा अब इतवार की आधी रात तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। CBSE ने कहा है कि यह फैसला दरख्वास्त दाखिल करने के अमल को मुकम्मल करने की खातिर तलबा को इजाफी वक्त फराहम करने के लिए किया गया है। इससे कबल दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 जून थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी के एक ट्रक से टकराने के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक और 22 दीगर जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतासिरीन, जिनका ताल्लुक एक ही कुनबे से था, वो अपने एक रिश्तेदार की अस्थियां ब्यास नदी में बहाने के लिए वहां जा रहे थे। कई लोग मौके पर ही हलाक हो गए जबकि जख्मियों को इलाज के लिए फिरोजपुर सिविल अस्पताल और फरीदकोट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। पुलिस जराये ने आकाशवाणी को बताया कि 22 जख्मियों में से कई की हालत नाजुक है। सीनियर पुलिस ओहदेदारान हादसे के बाद जल्द ही हादसे के मकाम पर पहुंचे और मकामी लोगों की मदद से बचाव कार्रवाई शुरू की गई। जख्मियों को बाहर निकालकर नजदीक के अस्पतालों में पहुंचाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया के बहुत से मुल्कों को इक्तिसादी गैर यकीनी का सामना है, भारत एक सबसे ज्यादा तेज रफ्तार बड़ी मईशत की हैसियत से आगे बढ़ रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने 2025-26 के माली साल के दौरान अंदरून मुल्क 7.7% शरह तरक्की का जिक्र करते हुए ये बात कही। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल तक केरलम और माहे में कहीं कहीं बहुत शदीद से बहुत ज्यादा शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 दिन के दौरान मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के हिस्सों में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। भारतीय आम का लुत्फ लेने और उसे फरोग देने के सिलसिले में दूसरे मैंगो मैजिक फेस्टिवल का आज अमेरिका के सेटल में एहतमाम किया गया। फलों के राजा आम के 100 से ज्यादा सरकर्दा दरामदकार इसमें शामिल हुए और यहां आमों की कई अकसाम को नुमाइश के लिए रखा गया था।

0: जिनमें महाराष्ट्र से अल्फांसु और केसर, आंध्र प्रदेश से बागनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश से लंगड़ा और दशहरी और गुजरात से राजापुरी शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सिएटल में भारतीय कौंसलर जनरल ने गुज़श्ता वर्ष जुलाई में यहां आम की भारतीय अकसाम को मुतारफ कराने की पहल की थी और भारत और ग्रेटर सिएटल इलाके दोनों में मुख्तलिफ मुतालिका फरीकों के साथ शराकतदारी कायम की ताकि अमरीकी सारिफीन के लिए कॉस्टको जैसे बड़े रिटेल आउटलेट्स में भारतीय आम की प्रीमियम अकसाम दस्तियाब कराई जा सकें। इस साल अप्रैल में कॉस्टको के सीईओ के साथ एक मीटिंग के बाद इन कोशिशों में नुमाया पेशरफ्त हुई, जिसके बाद कॉस्टको के स्टोर्स में महाराष्ट्र से अनार की भगवा किस्म और इसके बाद केसर आम सारिफीन के लिए मंगवाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया मन की बात प्रोग्राम में भारतीय आमों की कई तरह की अकसाम के बारे में बात की थी और आम की पैदावार करने वाले किसानों की इस फल को आलमी बाजार तक ले जाने के लिए सताइश की थी।
2: आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: भारत सरदस्त आम की पैदावार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां 2,60,00,000 मेट्रिक टन सालाना आम की पैदावार होती है और 1,000 से ज्यादा आम की अकसाम पाई जाती हैं। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: सकाफत और सैर सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत की शमसी बिजली तैयार करने की सलाहियत 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ क्रिकेट मैचों के लिए 16 रुकनी टी20 टीम का ऐलान किया है। श्रियास अय्यर को टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है। इससे पहले सूर्य कुमार यादव कप्तान थे। तिलक वर्मा टीम के नायब कप्तान होंगे। नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को पहली मर्तबा टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में मर्दों के 18 साल से कम उम्र के एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 पर खेला जाएगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सहल बनाया है। वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने नंबरों की तस्दीक और पेपर की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में कल तक तौसी की है। पंजाब में आसुफ फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी और ट्रक के दरमियान टक्कर के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक हुए हैं। आईएमडी ने कल तक केरलम और माही में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में श्रियास अय्यर को भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Reserve Bank of India simplifies rules for foreign portfolio investors in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Surya Kumar Yadav as India's new T20 international captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And now the news in detail. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our correspondent.
4: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27,

0: अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार

0: की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नई युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश

0: के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हुए हैं और समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार में आप सभी श्रोताओं का मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं। श्रोताओं, हिंदी फिल्म का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, कुछ नाम ऐसे होंगे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकेगा। ऐसे ही एक नाम है गीतकार राजेंद्र कृष्णा, एक ऐसे शब्द शिल्पी जिन्होंने प्रेम को शब्द दिए, विरह को स्वर दिया और भावनाओं को ऐसी अभिव्यक्ति दी जो आज भी श्रोताओं के दिलों में गूंजती है। 5 दशकों से अधिक लंबे रचनात्मक सफर में राजेंद्र कृष्ण ने हजारों गीत लिखे। उनके गीतों की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सहजता। वे कठिन भावों को भी इतनी सरल भाषा में व्यक्त करते थे कि हर श्रोता उन्हें अपना महसूस करता था। आइए आज उनके कुछ सदाबहार और लोकप्रिय गीतों के माध्यम से उनके रचनात्मक संसार की सैर करते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फिल्म अनारकली से, जो भारतीय फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर माना जाता है।

अभी आपने सुना गीत ये जिंदगी उसी की है। ये गीत राजेंद्र कृष्ण की संवेदनशील लेखनी का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रेम और समर्पण की भावना को जिस खूबसूरती से उन्होंने शब्दों में ढाला वह इस गीत को अमर बना देता है। राजेंद्र कृष्ण ने अनेक संगीतकारों के साथ काम किया लेकिन कुछ जोड़ियाँ ऐसी रहीं जिन्होंने संगीत प्रेमियों को अनमोल रचनाएं दी। अब सुनते हैं ऐसी ही एक कालजयी प्रस्तुति। फिल्म का नाम है नागिन। ये गीत आज भी उतना लोकप्रिय है जितना अपने रिलीज के समय था। संगीत है हेमंत कुमार का और स्वर है लता मंगेशकर का। गीत के बोल हैं, मेरा दिल ये पुकारे।

श्रोताओं, कहते हैं कि कुछ गीत समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं। ये गीत उन्हीं में से एक है और आज भी जब यह गीत बजता है तो श्रोताओं के मन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। राजेंद्र कृष्ण की लेखनी में प्रेम की कोमलता और भावनाओं की गहराई सहज रूप से दिखाई देती है। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो अपनी मधुरता और सरलता के कारण आज भी लोगों की जुबां पर है। फिल्म का नाम है भाई भाई। इस गीत को स्वरबद्ध किया था मदन मोहन ने और आवाज़ दी थी गीता दत्त ने।

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना गीता दत्त की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज हम याद कर रहे हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण को। श्रोताओं, उनके गीतों की खूबी यह थी कि वे सीधे दिलों से निकलते थे और सीधे दिल तक दस्तक देते थे। शायद यही कारण है कि बदलते समय के बावजूद उनकी लोकप्रियता बनी हुई थी। अब बारी है उस गीत की जिसे हिंदी फिल्म के संगीत में खूबसूरत प्रेमों में गिना जाता है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि राजेंद्र कृष्ण ने अनेक ऐसे गीत लिखे जो समय के साथ अधिक मूल्यवान होते गए। श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण ने प्रेम, विरह, रहस्य और दर्शन हर भाव को अपनी लेखनी में स्थान दिया। ये बहुमुखी प्रतिभा का ही परिचय था कि उन्होंने अपने समय के सबसे लोकप्रिय गीतकारों में शामिल उन्हें कर दिया है। अब सुनते हैं उनका एक गीत जिसने शास्त्रीयता और लोकप्रियता के बीच सुंदर संतुलन स्थापित किया। फिल्म का नाम है छाया। इस गीत को स्वरबद्ध किया है सलील चौधरी ने और इसे स्वर दिया है तलत महमूद और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल हैं, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा,

बहुत ही खूबसूरत सा गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण के गीतों में भावनाओं की गरिमा और भाषा की सादगी का अद्भुत संयोजन अर्थात मेल दिखाई देता है। यही कारण है कि उनके गीत पीढ़ी दर पीढ़ी लोकप्रिय बने रहे। आइए सुनते हैं अगला गीत, जो कि लिया है हमने फिल्म खानदान से। 1965 में प्रदर्शित इस फिल्म को भारतीय फिल्म संगीत के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में शामिल किया गया था। इस गीत के संगीतकार हैं रवि और इस गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में एक ही कलाकार में हमने हिंदी फिल्म संगीत के महान गीतकार राजेंद्र कृष्ण के कुछ सदाबहार गीतों का आनंद लिया। और चूंकि संदेश भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं एक ही कलाकार के संदर्भ में, जिसमें से हमें संदेश भेजा है दिग्दर्शन गौर, गगनदीप ठांडी, बबलेश पवार, स्वर्ण सिंह, मसरूर हसन, धर्मेंद्र छिप्पा, तुलसी मस्कीन, हरजिंदर शिंदे, धर्मेंद्र छिप्पा, अनिल मोहन, देवशंकर टमुरिया, हीरामणि वर्मा, संजय ढींगिया, इशाक मोहम्मद, संदीप मक्कड़, सुदर्शन मुखी, नवी हसन, अजीत भवसार, इनके संदेशों का बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि राजेंद्र कृष्ण ने अपने शब्दों से भारतीय फिल्म संगीत को समृद्ध बनाया। उनके गीतों में भावनाओं की सच्चाई, भाषा की सरलता और मानवीय संवेदनाओं की गहराई दिखाई देती है। यही कारण है उनके गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने दशकों पहले थे। इसी के साथ मैं एक ही कलाकार कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की इजाज़त चाहूँगा और चलते चलते आपको इस गीत के साथ छोड़े जा रहा हूँ, जो कि बहुत लोकप्रिय गीत है। और इस गीत को हमने लिया है फिल्म पड़ोसन से। गायक कलाकार है किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद। तो आइए सुनते हैं, आनंद लेते हैं इस आखिरी गीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3 बजने को है, अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो अधिक मास को परम पावन पुनीत महीना चल रहे है, और देखो तो सही हमारी ब्रज में ना जो ये अधिक मास को महीना है, यानी कि यह एक महीना में ही जो वर्ष भर के उत्सव हैं, उनको उल्लास ऐसो है के होरी दिवारी एक ही संग मन रही है।
1: जी हाँ चंपा जी, ये जो ब्रज में जाकू लोंद को महीना कहें या में उत्सवन को ऐसो समागम देखो जाए, तनिक देखो तो सही उत्सव में भक्ति लीलान की छटा नंदगाम बरसाने सहित पूरे ब्रज में ऐसो समुद्र उमड़ो भयो है, जाकू देख देख के सब आनंदित है रहे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, समूचो ब्रज भक्ति में यो हो रो है कि आप देखो ना कि नंद बाबा मंदिर जो नंदगाम में है नंदीश्वर पर्वत पे, तो वहाँ की तो छटा इतनी अद्भुत और अलौकिक है कि जन्माष्टमी गोपाष्टमी अन्नकूट छप्पन भोग दाल लीला पालनो उत्सव, ये जो पारंपरिक लीलान के दर्शन है ना वर्ष भर के, ये सब उत्सव ना या एक ही महीना में यानी कि अधिक मास में हो रहे हैं।
1: चंपा तनिक देखो तो सही नंदगाम के आशीश्वर को क्यों भूल रहे हो, जहाँ पे शिवलीला है रही है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु या समय ब्रिज में पधार रहे हैं, आ रहे हैं और ब्रिज की परिक्रमा कर रहे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, आप देखो ना श्रद्धा को और आस्था को सैलाब ऐसो है कि सुबह हो रही तो संजागु दिवारी मन रही है।
1: ये अद्भुत तरीका है ब्रिज को।

0: हाँ, और आप देखोगे एक तरफ तो होरी की उमंग है, दूसरी तरफ दिवाली की रोशनी है, और वही हम देख रहे हैं कि जन्माष्टमी और जो राधा अष्टमी पे जन्मोत्सव की भव्यता है वो तो देखते ही बन रही है।
1: अजी चंपा, तनिक देखो तो सही कि या समय ब्रज में जेठ मास में नौका विहार की झांकी है रही है, झूला महोत्सव मनाए जा रहे हैं, इतनो स्वरूप दिखाई पड़ रहे हो कि वहां में हर रोज नई नई घटान के दर्शन है रहे।
0: देखो नृत्य गोपाल जी, अब आप परिक्रमान की बात कह रहे तो देखो कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होए या गोवर्धन की परिक्रमा होए, उनमें आप देखो कि संकीर्तन हो रहे हैं। जो परिक्रमार्थी इनको लोक मानस है वे हारमोनियम और ढोलक की ताल पे खूब संकीर्तन कर रहे हैं, और जगह जगह देखो रासलीलान के मंचन हो रहे हैं।
1: जी हाँ चंपा जी, 12 बनन की परिक्रमा खूब चल रही है, गहवर वन की परिक्रमा आप देख लो, पिसाई वन की देख लो, वृंदावन की परिक्रमा देख लो, काम वन की पंचकोशी परिक्रमा है, तो ये विभिन्न परिक्रमा चल रही हैं। और यही के संग जो आप रासलीलान की कह रहे हो ना, एक विशेष स्वरूप या समय श्रीमद् भागवत को दिखाई पड़ रहे हो।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने,
1: जगह जगह श्रीमद् भागवत जी की कथा है रही है।
0: और नृत्य गोपाल जी, टेसु के रंगन के संग केसर के फूल हैं, केसर क्यारी हैं, उनमें होरी मन रही है, और हर कोई उन रंगन में और रंग की बौछारन में सराबोर हो ही रहे हो।
1: पौराणिक मान्यता या तरीका की है कि ब्रज में अधिक मास में सबरे देवी देवता निवास कर रहे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, और यही के काजे तो कहो गयो है, वृंदावन की रेणु में प्रगटे मदन स्वरूप, दीन दुखी को देते हैं भक्ति रूप अनूप।
1: देखो तो सही कि कविरत्न मुदित मुकुंद ने कितनी बढ़िया बात कही है, ब्रह्मा गयो भूल यहाँ बछरा चुराए आए, विष्णु गयो भूल मांग मांग छाछ खाई है, शिव गयो भूल नारी वेश धर आयो यहाँ, इंद्र गयो भूल मेघ सेना ले चढ़ाई है, मुदित मुकुंद सुर बाला भूली राधा देख, चंद्र भूलो रात्रि 6 महीना की बनाई है, ब्रज भूमि मोहिनी है, भूले सोई पावे पार, यहाँ भूल होती तो सदासों चली आई है।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते तो नृत्य गोपाल जी, अधिक मास को अपनो पौराणिक महत्व तो है ही, पर ब्रजभूमि में जो कृष्ण भक्ति को प्रेम है, माधुर्य है, और बामे भी कृष्ण और गोपीन की जो वार्तालाप है, जो उनकी लीला है, उनके वशीभूत होके भी ना इतने श्रद्धालुगण या वक्त ब्रज में चले आ रहे हैं।
1: अजी चंपा, जो आप रासलीला की बात कह रहे हैं ना, या समय तो ब्रज में जो रासलीला चल रही है उनमें कृष्ण गोपीन की जो आपसी मनोहार है, प्रेम है,
0: जो बतरस है उनको।
1: हाँ, जो ब्रज की लौकिक जो छोटी छोटी सी लीला है, जो बाल कृष्ण की लीला है, उनको ही ज्यादा प्रदर्शन है रे ओए।
0: तो नृत्य गोपाल जी, जब कृष्ण और गोपीन के इतने व्यापक स्वरूप की चर्चा अया बखत अधिक मास में वहाँ देख वेकू सुन वेकू मिल रही है, आप कहें तो अपने प्यारे भैया बहनान को यही चर्चा की ओर ले चलें।
1: जी हाँ चंपा जी, अवश्य ले चलो।
0: तो आओ प्यारी भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये वार्ता, जाको विषय है कृष्ण और गोपियों के उपालंब। आलेख है नितेश कुमार जी को और वाचन स्वर है नृत्य गोपाल जी को।
1: सब श्रोताओं को नीतीश कुमार की राधे राधे। ब्रज शब्द के आते ही दृष्टि में जो पहलो चित्र उभरे है वह श्री कृष्ण की छवि होए। जहाँ कृष्ण है वहीं ब्रज है, वहाँ गोपी हैं, ग्वाल हैं, यमुना पुलिन है, गिरि गोवर्धन है, बालकन को समाज है, सामाजिक सौहार्द है, प्रेम को प्रवाह है। कृष्ण और गोपीन की बात होए तो वामे हंसी है, ठिठोली है, मान और मनोहार है, एक दूसरे के ताई प्रेम भरे उपालंब हैं। उपालंब संस्कृत को शब्द है, जाकू ब्रज भाषा में उरहानो कहो जाए। प्रेम में ताने और उरहाने को अपनो ही महत्व है। उरहानो मिश्र भाव है, या में ईर्ष्या, विरह और विवस्ता समाहित हुए हैं। उरहाने में व्यंग के माध्यम से पीड़ा की अभिव्यक्ति हुए है। ब्रजभाषा काव्य में उड़ाने के अनेक रूप और स्थल प्राप्त हुए। श्री कृष्ण की बाल लीला में माँ यशोदा ते कहे गए उड़ाने हु मन मोहक हैं। बड़े भैया दाऊ जी सो खीज उड़ाने के रूप में उभरे है। मैया सो कहें, मैया मुझ दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मूल को लीनो तू जसमत कब जायो। कहा करो इही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात, पुन पुन कहत कौन है माता को है तेरो तात। गोरी नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नवावत हसत सवे मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कबहु न खीजे, मोहन मुख रिस की ये बातें जसमत सुन सुन रीज है। सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम मुहि गोधन की सो हो माता तू पूत। ब्रजभाषा में कृष्ण और गोपीन की बात जब हुए है तो गोपीन के उड़ाने या में बड़े श्रेष्ठ हुए। ब्रज गोपीन के उड़ाने को स्रोत है श्रीमद् भागवत। या में उड़ाने के दो रूप वर्णित हैं, एक है नटखट कृष्ण की ब्रज लीला। कृष्ण ब्रज गोपीन के माखन को चुरामे, वस्त्र चुरामे, मार्ग रोके, गगरी फोड़े, यही प्रकार की अन्य लीला करें, और गोपी उनके इन उत्पाती कार्यन्ते परेशान है के माँ यशोदा को उड़ानो दे। ब्रज भाषा के अधिकांश कवि इन लीलान को वर्णन अपने ढंग से करे हैं। अब देखो तो सही,

सूरदास ने याकी ताही बड़ो सुंदर पद लिखो है, अपनो गांव लियो नंदरानी, बड़े बाप की बेटी पूत ही भली पढ़ावत बानी, सखा भीर ले पैठत घर में आप खाए तो सहिए, मैं जब चली सामूहे पकरन तब के गुण का कहिए, भाज गए दुर देखत कतहू मैं घर पौढ़ी आए, हरे हरे बेनी गह पाछे बांधी पाटी लाए, सुन मैया याके गुण मोसो इन मुह लयो बुलाई, दधि में पड़ी सैंत की मोपे चींटी सबे कढ़ाई, टहल करत में याके घर की यह पति संग मिल सोई, सूर बचन सुन हसी जसोदा ग्वाल रही मुख गोई। जब गोपी यशोदा जी के पास जाए उड़ानो लेके जाए तो कृष्ण हु गोपीन की शिकायत करें और कहें, मैया जब मैं घर ते चलूं बुला में ग्वालिन घर में मोए, अचक हाथ को झालो देके मीठी बोले देवर कहके, निधरक है जाए साकर देके। यहाँ श्रोताओ कृष्ण यशोदा और गोपिन के बीच जो उड़ाने चले हैं, कृष्ण के वियोग में चंद्रमा की चांदनी गोपिन के हृदय को दग्ध करे और गोपी वास्तव में चंद्रमा को ही उड़ानो देवी लग जाए हैं। गोपिन को लगे है कि चंद्रमा में जो शीतलता रह गई है वह शीतलता आग ते भरी भई है, छूट गई शशि शीतलताई, मन मोह जार भस्म किए चाहत साजत सो कलंक तन काई, राहु केतु दो जोर एक कर नींद समय जुर आवहि माई, ग्रसे ते न पच जात ताप में कहत सूर विरहिन दुखदाई। कृष्ण के वियोग में डूबी गोपी यमुना को वाकी बहवे के ताई ही उड़ानो देवी लग जाए हैं। वे यमुना को उड़ानो देते हुए पूछे, अरे बाबरी कृष्ण के बिना यह कलकल निनाद तुकू कहा अच्छो लगे है, यमुना तुए बहो क्यों भावे, तू में कृष्ण हेलुआ खेले सो सुर क्यों नहीं आवे, भर भादो जो रात अष्टमी सो दिन क्यों न जनावे, सूरदास को ऐसो ठाकुर कमल फूल ले आवे। गोपिन के ताई प्रकृति को प्रत्येक वह जड़ चेतन तत्व जो कृष्ण के वियोग में जीवित है उड़ाने को पात्र है जाए, ऐसी स्थिति में प्रकृति के सौंदर्य उपादान तो उनको शत्रुवत प्रतीत हुए हैं। लीला स्मरण में परमानंद दास को उड़ानो बहुत महत्वपूर्ण है। वे लिखे हैं, मोहन वह क्यों प्रीत बिसारी, कहत सुनत समुझत उर अंतर दुख लागत है भारी, एक दिवस खेलत वन भीतर बेनी सुहन सवारी, बीनत फूल गयो चुभ कंटक ऐसी बिथा बिथारी, हम पर कठिन हृदय अब कीन्हो लीला गोबर धन धारी, परमानंद बलबीर बिना हम मरत बिरह की जारी। मथुरा में कृष्ण महाराज है गए, गोपीन को याहू में उड़ानो प्रतीत है गयो, नंददास की गोपी कहे को कहे अहो श्याम कहा इतराए गए हो, मथुरा को अधिकार पाए महाराज भये हो, और इतनो ही कहवे थे गोपीन को हृदय नाय भरो, उनने कहो हमको पिए तुम एक हो, तुमको हमसी कोटि बहुत पाए के राबरे, प्रीत न डारो तोरे एक ही बार जी। कृष्ण और कुब्जा के माध्यम ते तो जैसे उड़ाने को एक बड़ो स्वरूप प्रदान कर दियो गयो है, गोपी बहुत उड़ानो दे, वे माने कि कृष्ण कुब्जा के स्नेह में ऐसे फंस गए हैं कि वे अब हमको भूल गए हैं। गोपी कृष्ण और कुब्जा दोनों उनके ताई भले बुरी बात कहें और वे कहें, कुब्जा सी रानी मिली नृपत त्रिभंगी लाल, भली मिली जोरी जुगल लख लख होए निहाल। कवि पद्माकर ने कुब्जा के टेढ़े तन और कृष्ण की त्रिभंगी छवि को आधार बनाए के बहुत सुंदर सी रचना करी है। गोपीन को या बात को दुख ना है कि कृष्ण अब आए ना रहे, उनको या बात को दुख ज्यादा है कि वे अब कुब्जा के संग रहवे लग गए हैं। सोच ना हमारे कछु त्याग मनमोहन के, तन कौन सोच जो पे यो ही जर जाए है, कहे पद्माकर न सोच अब एहू यह, आई है तो आई है न आए है न आए है, जोग को न सोच अरु योग को न सोच कछु, यही बड़ो सोच तो सवन सुहाए है, कुबरी के कुबर में भेद्यो है त्रिभंगता, त्रिभंगी को त्रिभंगी लाल कैसे सुरझाई है। कृष्ण के दूत उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना लेके ब्रज आए, गोपी या ब्रह्म उपासना को सिरेसो नकार दे, कृष्ण की रूप माधुरी के सम्मुख इन गोपीन को निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना निरर्थक प्रतीत भई, या ही सो

0: सूरदास की गोपी ने तो प्रश्न कर दियो कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कह समझाए सोहदे बूझत सांच नहासी। और नंददास की गोपी तो तर्क दें कि अरे उद्धव, मथुरा की रीति ही ऐसी है कि गुण को त्याग के निर्गुण को ग्रहण करें हैं। को कहे अहो मधुप, साधु मधुवन के ऐसे और तहां के सिद्ध लोग हैं धो कैसे, अगुण गुण गह लेते हैं गुण को डारत मेट, मोहन निर्गुण क्यों न होए तुम साधुन को मेट गांठ की खोए के। संत अक्षर अनन्य ने उरहाने को बड़ो सुंदर सो स्वरूप प्रस्तुत करयो है। उनकी गोपी ज्ञान और प्रेम को समन्वित रूप है। वे उद्धव सो कहें, जो पे कहो ऊधो तुम निर्गुण को निंदत हो, निंदत ना यह तो उपासना की रीति है, चंद्र और सूर्य दो नैन विश्व रूप ही के, तदप चकोर चित्त चंद्र ही सो प्रीत है, सगुण निर्गुण वासुदेव जू के रूप दो हमरे सगुण रूप ही की प्रतीत है। श्रोताओ, भारतेंदु हरिश्चंद आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रणी रचनाकार हैं, खड़ी बोली के प्रसिद्ध रचनाकार होते भये हूँ। आपने ब्रज भाषा में बड़ी सरस रचना करी है, भ्रमर को लक्ष्य करके उनने बहुत बढ़िया सो उरहानो दियो है। भोरा रे रस के लोभी तेरो कहा परमान, तू रस मस्त फिरत फूलन पर कर अपने मुख गान, इत सो उत डोलत बोरानो किए मधुर मधुपान, हरिचंद तेरे फंद न भूलू बात परी पहचान। गोपीन के उरहाने इनके मध्य यशोदा के उरहाने हु ध्यान देवी योग्य हैं। सत्यनारायण कवि रत्न ने यशोदा के माध्यम ते कृष्ण को जन्म भूमि की शिक्षा दई। वे लिखे, जननी जन्म सुनियत स्वर्गहु सो प्यारी, सोतज सबरो मोह सामरी तुमन बिसारी, का तुमरी गतिमति भई जो ऐसो बरताव, किधो नीत बदली नई ताको पर्यो प्रभाव, कुटिल विष को भर्यो। ब्रज गोपीन के उरहानेन की बात होए और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात नाए चले, ऐसो नाए है सके। रत्नाकर की गोपी उद्धव के ब्रह्म ज्ञान को ठेठ अंदाज में नकारते भई कहे, जग सपनों सो सब परत दिखाई तुम्हें, ताते तुम ऊधो हमें सोबत लखात हो, कह रत्नाकर सुने को बात सोबत की, जोई मोह आवत सोई बिवस बयात हो, सोबत में जागत लखत अपने को निम, त्यों ही तुम आप ही सुज्ञानी समझात हो, जोग जोग कबहू न जाने कहा जो ही जको, ब्रह्म ब्रह्म कबहू बहक बर रात हो। या प्रकार हम देखें के ब्रज भाषा साहित्य में और ब्रज लोक में कृष्ण और गोपीन के जो उरहाने हैं, विन में बड़ो रस है, आनंद है और एक दूसरे के प्रति प्रेम को भाव दिखाई पड़े है। जय जय श्री राधे।
1: प्यारी भैया बहनाओं, अभी आप ये वार्ता सुन रहे हते, जाको विषय हो कृष्ण और गोपियों के उपालम्ब, आलेख हो नीतीश कुमार जी को और वाचन कर रहे हते नृत्य गोपाल जी। नृत्य गोपाल जी,
0: जी चंपा जी,
1: देखो बिल्कुल आपने तो जो मन मोहे वाली बात है ना कृष्ण और गोपीन के बीच की, उल्हाने इनकी और उनके बतरस की, कह हमारे जितने भी श्रोता भैया बहनान ने ये वार्ता सुनी है उनके मन को ना या वार्ता ने मोह लियो है। देखो जहाँ कृष्ण की चर्चा है, जहाँ गोपीयन की बात है, आनंद की जो धारा है वो तो स्वतः ही प्रवाहित होवे है। और हम देखे हैं नृत्य गोपाल जी के जो ये जेठ को महीना चल रहे हो या मैं ये अधिक मास पड़ोए, तो भले ही जेठ को महीना ना अपनी गर्मी के काजे जान हो जाए, पर हम देखे हैं कि भक्ति रस की जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, मैंने या गर्मी के बेग को भी कम कर दियो है।
0: देखो चंपा जी, ये जो गर्मी है या को अपनो आनंद है और जेठ मास तो या को सिरताज है।
1: हाँ।
0: पर यह जेठ मास की गर्मी में हूँ, हमारी यहाँ पे अपने इष्ट को गर्मी से बचाए के ताई सूती के कपड़ा, मल मल जालीदार वस्त्र और शीतल कुंज में जहाँ मिट्टी के पात्रन में उनके काजे गुलाब जल भरियो जाए, खसको शरबत भरियो जाए, खसके पर्दा लगाए जाए, पंखांते पवन ढुरायो जाए।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, ये हमारे ब्रज धरा की ना बड़ी विलक्षण परंपरा है कि जैसी ऋतु होए वही के अनुसार है ना इष्ट को लाड लड़ाए हो जाए। और आप ये देखो कि जो ये गर्मी की ऋतु है ना, या में सारंग मल्हार और बिलावल राग में जो पद हैं उनको गायन हो रहे हो, इष्ट को पद राग के द्वारा शीतलता प्रदान करी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है नृत्य गोपाल जी के

0: पदन के बोलन में ना यमुना जल को भी जिक्र है, फुआरेन को जिक्र है, मोगरा गुलाब के फूलन को जिक्र है, चंदन और शीतल पवन को वर्णन इनमें बड़ी अच्छी तरह से करो गए हो।
1: चंपा जी, ब्रज के देवालयन में भोग राग और श्रृंगार की जो त्रिवेणी बहे है, वहां में जो गायो जाए वही बनायो जाए, जो बनायो जाए वही वहां पे प्रसाद के रूप में हूँ आरोग्य करामे है।
0: और नृत्य गोपाल जी, पुष्टि मार्ग में तो इतनी बढ़िया मान्यता है, जो ये ग्रीष्म ऋतु के पद है ना, इनको खस खाने के पद कहो जाए।
1: और चंपा जी, आपको याद हो तो ब्रजभाषा के कवि है ना बिहारी लाल, उनने बड़ो सुंदर सो एक छंद लिखो है, एक उनको दोहा है कि बैठ रही अति सघन बन पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहो चाहत छाह,

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये लोकगीत सुन रहे हते तो नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो अधिक मास चल रहो है, जेठ को महीना चल रहो है, तो कितनी सुंदर चर्चा आज हमने अपने श्रोता भैया बहनान के संग करी है कि हमारे श्रोता भैया बहना भी ना इन ब्रज की प्रेम रस की बतियान ने सुन सुन के है ना अपनी गर्मी को भूल गए होंगे।
1: जी हाँ चंपा, देखो आप बड़े प्यार से हमारे ब्रज की संस्कृति को बता रहे हैं तो श्रोता क्यों ना भूलेंगे।
0: पर नृत्य गोपाल जी, हमें भी ये ना भूलना चाहिए कि अब हमारे चलवे को समय है गयो है।
1: जी हाँ श्रोता हो, अब यही के संग हमारो आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब यही संपन्न हुए है। कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग मो नृत्य गोपाल,
0: मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को अनुमति दो। नमस्कार, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स। दोपहर के 3:30 होने को हैं। प्रस्तुत है नाटक शीर्षक सलोमी कड़ी 2, जिसका प्रथम प्रसारण हो रहा है। निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी की। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक सलोमी।
1: आई सुनते हैं नाटक सलोमी। मूल कहानी ऑस्कर वाइल्ड, रेडियो नाट्य रूपांतरकार विक्रम शर्मा, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनेंगे।
2: ताजा फलों को लाया जाए। सलोमी, आओ, ये ताजा फल मेरे साथ खाओ।
3: मुझे भूख नहीं है टेट्रॉक।
2: देखा तुमने, तुम्हारी बेटी को तो बात करने का सलीका भी नहीं आता।
4: मैं और मेरी बेटी शाही खानदान में परवरिश पाई हुई है। और तुम सुनो, जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है, हमारा बाप ऊंटों का चरवाहा था, और ये भी सुनने को मिला है कि वो एक बहुत खतरनाक लुटेरा था।
2: अच्छा, तुम्हारे झूठ का मुझ पर कोई असर नहीं।
4: तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि जो कुछ मैंने कहा वो बिल्कुल सच है।
2: सलोमी, आओ मेरे करीब आओ, आओ और यहाँ मेरे साथ बैठो।
3: मैं अभी इतनी थकी नहीं हूँ टेट्रॉक।
4: सुना तुमने, सुना वो क्या सोचती है तुम्हारे बारे में?
2: पेश किया जाए वो जिसकी मुझे इच्छा है, मेरे सामने लाया जाए वो। ओह, किसकी इच्छा है मुझे, मैं भूल ही गया मैं क्या चाहता हूं। मुझे याद आ गया।
5: सावधान, वक्त आ चुका है। देवताओं का कहना है ये जो वक्त उन्होंने मुकर्रर किया था वो आ पहुंचा है, और जिस दिन की भविष्यवाणी मैंने की थी वो दिन भी आ पहुंचा है। मेरे प्यारे बाशिंदो, तैयार हो जाओ उस घड़ी के लिए।

0: एक साथ बहुत मनहूस भी है और बहुत सुखद भी है। देवताओं का फरमान है कि इस घड़ी का आनंद सबको बराबर और पूरा पूरा मिलना चाहिए।
1: उसे खामोश हो जाने का हुक्म दो, मैं उसकी आवाज नहीं सुनना चाहती। ये हमेशा मेरे खिलाफ जहर उगलता रहता है, मेरा तिरस्कार करता रहता है।
2: नहीं प्रिय, इसने तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, और तुम्हें मालूम नहीं ये एक बहुत पहुंचा हुआ इल्हामी है।
1: मैं इल्हामियों पर विश्वास नहीं करती। क्या कोई भी शख्स बता सकता है कि किस समय क्या होने वाला है? कोई नहीं बता सकता। ऐसा करना किसी के बस में है ही नहीं। ये हमेशा मेरा तिरस्कार करता रहता है, और तुम भी तो इससे बहुत डरते हो। इसकी आवाज सुनकर तुम्हें भी तो बहुत डर लगता है ना?
2: नहीं, मुझे इससे कोई डर नहीं लगता। मुझे इस संसार में किसी भी मनुष्य से डर नहीं लगता।
1: तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इससे बहुत डरते हो।
3: ये नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि इल्हामी एलियस के दिनों को गुजरे हुए 300 सालों से अधिक हो चुके हैं।
2: लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यही समझते हैं कि यही शख्स इल्हामी एलियस है।
4: मुझे पूरा यकीन है कि आप ठीक कह रहे हैं, ये शख्स इल्हामी एलियस ही है।
0: तो अब आप लोगों को यकीन हो गया कि देवताओं का दिन आ गया, वो कयामत का दिन ना पहुंचा, जब मजबूत और कमजोर एक साथ टूटेंगे, जब रूहानी ताकतें अपनी असीम प्रचंडता पर होंगी और इंसान चक्की में गेहूं की तरह पिसेंगे। मुझे सुनाई पड़ रही है ऊंचे पहाड़ों पर उसके भारी कदमों की आहट। वो जो इस संसार का रखवाला है, तुम सबका मसीहा है।
2: संसार का रखवाला, इसका क्या मतलब?
5: ये खिताब तो महान सीजर को दिया गया है।
2: लेकिन सीजर तो जूड़िए में नहीं आ रहे। अभी कल ही तो रोम में मुझे कुछ चिट्ठियां मिली, लेकिन उनमें तो इस बारे में कोई जिक्र नहीं। और तुम तिगलनिस, तुम तो सर्दियों में रोम में ही थे, क्या तुमने इस बारे में कुछ नहीं सुना? कुछ सुना क्या?
4: मैं यकीन से कहता हूं कि मैंने इस बारे में नहीं सुना। मैं तो आपसे सिर्फ खिताब के बारे में ही कह रहा था। महान सीजर के कई खिताबों में से ये खिताब संसार का रखवाला भी उसे ही दिया गया है।
2: महान सीजर हम सबके स्वामी हैं। अगर वो इच्छा करें तो कहीं भी जा सकते हैं। मुझे डर है कि वो यहां आने की इच्छा कभी नहीं करेंगे।
6: लेकिन हुजूर, इल्हामी के कहे हुए वाक्यात महान सीजर से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते।
2: महान सीजर से ताल्लुक नहीं रखते?
6: बिल्कुल नहीं शहंशाह।
2: तो फिर किसके बारे में बात कर रहा था ये?
3: उस मसीहा के बारे में जो आ चुका है।
4: कोई मसीहा नहीं आया है, ये सब बकवास है।
6: वो सचमुच आ चुका है और हर जगह अपने कारनामे कर रहा है।
1: कारनामे? अजूबे! मैं अजूबों में विश्वास नहीं करती, क्योंकि ऐसे जादुई कारनामे मैं कई बार देख चुकी हूँ।
0: ओ विपदाओं की देवी, भूख और प्यास की मल्लिका, भरी पलकों और सुनहरी आंखों वाली बेबीलोन की बेटी, पवित्र देवताओं का कहना है कि नफरत से भरे लोगों के झुंड को अपने खिलाफ आने दे, उनको हाथों में पत्थर उठाने दे, ताकि वो उसे पत्थर मार के मार सके।
1: खामोश! इसे खामोश रहने का हुक्म दो।
0: लड़ाकू कप्तानों को आदेश दो कि मुझे अपनी तलवारों से चीर दें, अपने भालों से मेरे चीछड़े कर दें।
1: नहीं, नहीं, ऐसा करना तो बदनामी को आमंत्रित करना होगा।
0: सावधान, सावधान, ओ बेबीलोन की बेटी, सावधान।

0: आकाश से टूटकर गिरने वाले हर सितारे को तुम्हारे आशियाने की तलाश है, और देखो देखो तुम्हारा चांद कितना असहाय होकर सब कुछ देख रहा है, खामोश और ठंडा।
1: तुम सुन रहे हो ना, तुम सुन रहे हो ना वो मेरे खिलाफ क्या क्या कह रहा है, और तुम उसे अपनी पत्नी के खिलाफ इतना कुछ कहने दे रहे हो। तुम उसे रोकते क्यों नहीं, उसे चुप हो जाने के लिए आदेश क्यों नहीं देते?
2: ओ प्रिय, लेकिन उसने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया।
1: उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो मैं हूं जिसे वो बदनाम करना चाहता है, और मैं तुम्हारी पत्नी हूं ना।
2: बेशक प्यारी और ईमानदार हेरोडियस, तुम मेरी ही पत्नी हो, और मुझसे पहले मेरे बड़े भाई की पत्नी थी ना। लेकिन भूल जाओ, हमें इस बारे में और बात नहीं करनी चाहिए। मुझे इस बारे में बात करने की कोई इच्छा नहीं है। ये बात मुझे उस तथ्य से जुड़ती नजर आती है जो इस इल्हामी के कहे लफ्जों में मैं सुन रहा था और तुम भी सुन रही थी, और हो सकता है यही वजह हो कि भयानक अपशगुन हमें घेर रहे हैं। लेकिन अब चुप हो जाओ, इस बारे में और बात मत करो। मेरी प्यारी हेरोडियस, हम अपने मेहमानों को भूल ही गए, ये बहुत बुरी बात है। हमें अपने मेहमानों का खास ख्याल रखना चाहिए। तुम अपनी बेटी को देख रही हो, कितनी मुरझाई हुई नजर आ रही है।
1: वो मुरझाई हुई है या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना।
2: ओ, मैंने उसे इतना मायूस पहले कभी नहीं देखा,
1: और तुम्हें उसकी ओर देखना भी नहीं चाहिए।
0: उस दिन सूरज का रंग कोयले की तरह काला होगा, चांद के चेहरे पर खून की लाली होगी, स्वर्ग के सितारे आग की बूंदे बनकर पृथ्वी पर बरसेंगे, और संसार के सारे शक्तिशाली राजा शोक पत्तों की तरह कांपेंगे। शायद वही कयामत का दिन होगा जिस दिन आग और पानी का मिलन होगा, और जन्म होगा एक नए संसार का, वो संसार जिसमें आदम तो होगा लेकिन बेबीलोन की बेटी ना होगी।
1: मैं वो दिन जरूर देखना चाहूंगी जिस दिन की ये बात कर रहा है, जब चांद के चेहरे पर खून की लाली होगी और स्वर्ग के सितारे आग की बूंदे बनकर पृथ्वी पर बरसेंगी। बकवास, ये इल्हामी हमेशा मदहोश शराबी की तरह बोलता रहता है, और मुझे इसकी आवाज से सख्त नफरत है। मैं ये आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेरोड, हेरोड, तुम उसे चुप रहने का आदेश दो ना।
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आया जो इसने अभी कहा, लेकिन इसका ये कहना कोई अपशगुन भी हो सकता है।
1: ओफो, अपशगुन, लेकिन मैं अपशगुनों में विश्वास नहीं रखती। टेट्रॉक, तुम्हें झूठ बोलने की बहुत आदत है। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, अब हमें अंदर चलना चाहिए।
2: रुक जाओ, मेरे लिए नाचो सलोमी।
1: मैं उसे नाचने नहीं दूंगी।
3: मेरी नाचने की कोई इच्छा नहीं है टेट्रॉक।
2: सलोमी, हेरोडियस की बेटी, मेरे लिए नाचो।
1: उससे दूर रहो तुम।
2: मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, सलोमी नाचो।
3: मैं नहीं नाचूंगी टेट्रॉक।
1: देखा तुमने वो किस तरह मेरी आज्ञा का पालन करती है।
2: वो नाचे या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मुझे तो नहीं। आज की रात मेरे लिए खुशी की रात है। मैं बेहद खुश हूं, जिंदगी में मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ जितना कि आज की रात।
0: वो इसी तख्त पर बैठेगा, वो काले और लाल लिबासों में लिप्त होगा, उसके हाथों में उसी की बर्बादियों का भरा सोने का पैमाना होगा, वो देवताओं के फरिश्तों की लाठी से मरेगा।
1: सुना?

0: सुना तुमने वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है?
1: नहीं प्रिय, मेरे खिलाफ इस इल्हामी ने कभी भी कुछ नहीं कहा सिवाय मेरे एक गुनाह के, वो गुनाह जो मैंने तुम्हें बीवी बनाने के लिए किया, अपने भाई की बीवी को छीन कर।
0: मेरे विचार से अब हमें भीतर चलना चाहिए। ये मत भूलो, सुबह हमें शिकार पर भी जाना है। महान सीजर के दूतों को हमें पूरा सम्मान देना चाहिए।
1: रुक जाओ सलोमी, मेरे लिए नाचो सलोमी।
2: नहीं,
1: मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं बहुत दुखी हूं। मैं जब यहां आया था तो मेरी नजर उस खून पर पड़ी, जो कि बहुत ही अपशगुन की बात है। और हां, मैंने सुनी थी वो आवाजें, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने वो आवाजें सुनी थी, उन बड़े बड़े भयानक पंखों के फड़फड़ाने की आवाजें। मैं नहीं जानता कि इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन आज रात मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मेरे लिए नाचो। मैं तुमसे विनती करता हूं सलोमी, मेरे लिए नाचो, और इसके लिए तुम मुझसे जो कुछ भी मांगना चाहती हो मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, अपना आधा राज्य भी।
2: क्या क्या तुम मुझे वो सब दोगे टेट्रॉक जो मैं तुमसे मांगूंगी?
0: मत नाचना मेरी बच्ची, मत नाचना।
1: सब कुछ, यहां तक कि अपनी आधी जायदाद भी।
2: तुम कसम खाओ टेट्रॉक।
1: ओ सलोमी, मैं कसम खाता हूं।
0: रुक जाओ सलोमी, मत नाचना।
2: और तुम किसकी कसम खाओगे टेट्रॉक?
1: मैं अपनी जिंदगी की, अपने ताज की, अपने सब देवताओं की। जिस चीज की इच्छा तुम करोगी वो सब कुछ तुम्हारा होगा, यहां तक कि मेरी आधी जायदाद और राज्य भी, अगर तुम मेरे लिए नाचोगी सलोमी। सलोमी नाचो, जी भर के नाचो।
2: याद रखना टेट्रॉक, तुमने कसम खाई है।
1: मुझे अपनी कसम याद है सलोमी।
2: और बेशक मैं तुमसे तुम्हारा आधा राज्य मांग लूं?
0: रुक जाओ सलोमी, मेरी बच्ची मत नाचना।
1: अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा सलोमी। हाँ, और उसके बाद तुम सब मल्लिकाओं से भी ज्यादा हंसी लगोगी। अगर तुम्हें मेरा आधा राज्य मिल गया तो आप सब मानते हैं ना कि सलोमी बहुत हंसी मल्लिका दिखेगी। यहां तो बहुत सर्दी है, बहुत बर्फीली हवा चल रही है। यहां मुझे कुछ सुनाई पड़ रहा है। सुनो, ये पंखों के फड़फड़ाने की आवाज कहीं से आ रही है। ओह, ये तो कोई बहुत बड़ा काला पक्षी लगता है जो आसमान में बदहवास सा उड़ रहा है। ये पक्षी मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहां है ये? इसके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज बहुत भयानक है। देखो देखो कितनी तेज आंधियां चलने लगी और हवा कितनी बर्फीली है। नहीं, हवाएं ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है। मुझे तो घुटन हो रही है। जल्दी मेरा चोगा लाओ। नहीं रुको, रहने दो, ये मेरे गले में फूलों का हार मुझे जला रहा है। ये फूल आग उगल रहे हैं और मेरा सिर आग से फटता जा रहा है। ओह, अब मैं सांस ले सकता हूं। फूलों की पत्तियां कितनी लाल हो गई, अब उन पर खून की बूंदें नजर आ रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हर चीज में बुराई ढूंढने की आदत नहीं होनी चाहिए, इससे जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, ये कहना बहुत ठीक होगा कि खून की बूंदें भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी ये फूलों की पत्तियां। हाँ, ये कहना ठीक होगा। नहीं, लेकिन अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। अब मैं बहुत खुश हूं, सब कुछ बहुत खुशनुमा है यहां। क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? और देखो हेरोडियस, अब तुम्हारी बेटी मेरे लिए नाचेगी। तुम मेरे लिए नाचोगी ना सलोमी? सलोमी, तुमने मेरे लिए

0: तुमने कसम खाई है डेट्रॉक?
1: और मैं अपनी कसम कभी नहीं तोड़ता। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि मेरे अपने कहे हुए शब्द एक शहंशाह की ज़बान है।
2: अब हमें जल्दी अंदर चले जाना चाहिए। मैं अपनी बेटी को कभी नहीं नाचने दूंगी, और अगर तुम उसे इस तरह घूरते रहोगे तो वो बिल्कुल नहीं नाचेगी। और हकीकत में मैं उसे नाचने भी नहीं
1: दूंगी। अभी मत उठो मल्लिका, मेरी प्यारी बीवी। तुम्हारे उठ जाने से कुछ नहीं होने वाला, और जब तक वो नाच नहीं लेती मैं भीतर हरगिज नहीं जाऊंगा। नाचो सलोमी, मेरे लिए नाचो।
0: मैं तैयार हूं टेट्रॉक।
1: खूब, बहुत खूब। देखा तुमने, वो मेरे लिए नाच रही है। तुम्हारी बेटी सलोमी मेरे लिए। पास आओ सलोमी, करीब आओ मेरे। मांगो, क्या मांगना चाहती हो?
0: मैं वो मांगना चाहती हूं जो मुझे चांदी की तश्तरी में भेंट किया जाए।
1: चांदी की तश्तरी में? हाँ, जरूर, बेशक, चांदी की ही तश्तरी में। कितनी हसीन लग रही हो तुम सलोमी। जल्दी से कह दो कि उस चांदी की तश्तरी में मैं क्या भेंट करूं।
0: जोगनान का सर।
1: क्या?
2: वाह, बहुत खूब मेरी बच्ची, बहुत खूब।
1: नहीं नहीं, हरगिज नहीं। नहीं सलोमी, तुम मुझसे ये नहीं मांग सकती। अपनी मां के कहने पर मत जाओ, ये हमेशा तुम्हें बुरी सलाह देगी। उसकी बातों पर ध्यान मत दो।
0: मैंने अपनी मां की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया टेट्रॉक। ये मैं अपनी खुशी के लिए चांदी की तश्तरी में तुमसे जोगनान का सर मांग रही हूँ। देखो, तुमने कसम खाई है, ये मत भूलो कि तुमने अपनी, अपने ताज की, अपने सारे देवताओं की कसम खाई है।
1: हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने अपने देवताओं की कसम खाई है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखो, मैं तुमसे विनती करता हूँ सलोमी, मुझसे कुछ और मांग लो। मेरा आधा राज्य, आधी जायदाद मांग लो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। लेकिन वो मांगने की जिद ना करो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता।
0: मैं तुमसे जोगनान का सर मांग रही हूँ टेट्रॉ।
1: नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता।
0: भूलो मत, तुमने कसम खाई है टेट्रॉक।
2: हाँ हैरेड, याद करो, तुमने कसम खाई है। तुम्हें कसम खाते सबने सुना था, तुमने सबके सामने कसम खाई थी।
1: खामोश, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं। बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो।
2: अब मुझे पूरा हक मिलता है बोलने के लिए हैरेड। मेरी बच्ची ने जोगनान का सर मांगकर तुम्हारी बोलती बंद कर दी है। मेरी बच्ची, तुमने बहुत अच्छा किया मेरी बच्ची। ये हमेशा मुझे इल्जाम देता था, मुझे बेइज्जत करता रहता था। उसने मेरे खिलाफ कितनी खौफनाक बातें की थी। पीछे मत हटना सलोमी, पीछे मत हटना। हेरोड से जोगनान का सर मांगो, उसने कसम खाई हुई है।
1: सलोमी, यहाँ आओ सलोमी, यहाँ आओ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कभी भी तुमसे सख्ती से पेश नहीं आया, इसलिए मुझसे ऐसी चीज मत मांगो जो बहुत खौफनाक हो और हम सबके लिए बहुत बेरहम साबित हो। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ रही हो। जोगनान का सर लेकर तुम कौन सा सुकून पाओगी? कोई नहीं, नहीं, तुम ऐसी इच्छा नहीं कर सकती सलोमी। सलोमी, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मेरे पास एक अनमोल हीरा है, एक बहुत बड़ा और गोल हीरा, जो महान सीजर ने खुद मुझे भेंट किया था। अगर तुम मुझसे वो हीरा मांगो, मैं वो हीरा देने के लिए भी तैयार हूं।
0: मैं तुमसे जोगनान का सर मांग रही हूँ टेट्रॉक।
1: तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, तुम मुझे सुन नहीं रही हो। तुम इससे ज्यादा मुझे बोलने पर मजबूर मत करो सलोमी।
0: जोगनान का सर टेट्रॉक।
1: नहीं, तुम्हें वो हरगिज नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसी हरकत कर रही हो, क्योंकि आज शाम से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा घूर रहा था।

0: पर मैं क्या करूं, मैं क्या करता? तुम्हारी खूबसूरती मुझे बहुत परेशान करती है। तुम मुझे उस कसम से मुक्त कर दो और मुझसे ऐसी चीज मत मांगो जो इस राज्य पर कहर की तरह बरसने के लिए आतुर है।
1: मुझे जोकनान का सर चाहिए टेट्रॉक।
0: सलोमी, क्या तुम चाहोगी कि मेरे साथ कुछ अप्रिय घटना घटे? नहीं, तुम चाहोगी ऐसा हो? मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं चाहोगी, है ना सलोमी? बोलो।
1: चांदी की तश्तरी में सिर्फ जोकनान का सर टेट्रॉक।
0: तुम मेरी बात नहीं समझ पा रही हो। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। देखो मैं कितना शांत हूं, देखो। सुनो सलोमी, इस जगह पर मैंने बहुत से जेवरात छुपा रखे हैं, ऐसे जेवरात जिनके बारे में तुम्हारी मां भी नहीं जानती, और वो सब बहुत बेशकीमती हैं। तुम वो सब ले लो, सब।
1: मुझे जोकनान का सर चाहिए टेट्रॉक।
0: या खुदा, मैं क्या करूं? इस औरत को जो चाहिए इसे दे दिया जाए।
2: आखिरकार मेरी बेटी ने वो कर ही दिया जो उसे करना चाहिए था।
0: तैयार हो जाओ, मुझे यकीन है कि कोई बहुत अपशगुन घटने वाला है।
1: कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? वो शख्स चीख क्यों नहीं रहा? मैं उसकी चीख सुनना चाहती हूं। अगर कोई मुझे मारना चाहे तो मैं चीखूंगी ना, चिल्लाऊंगी, तड़पूंगी, और मेरी चीखों से सारा महल गूंजेगा। लेकिन ये तो चीख नहीं रहा और ना ही इसके तड़पने की कोई आवाज आ रही है। सिपाहियों, तुम जाओ और मेरे लिए जोकनान का सर लेकर आओ।
3: जो हुक्म शहजादी।
1: ओ टान, तुम मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी खौफनाक आंखें जो हमेशा गुस्से से भरी रहती थी, आज बंद क्यों है? किस लिए बंद है तुम्हारी आंखें? अपनी आंखें खोलो, अपने पलकों को ऊपर उठाओ जोकनान, और मेरी तरफ देखो। ओह, तुम मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है जोकनान, जो तुम मेरी ओर देख नहीं पा रहे हो? तुम मेरे खिलाफ, हेरोडियस की बेटी और जूलिया की शहजादी के खिलाफ कितनी भयानक बातें करते रहे। लेकिन तुम हार गए। लेकिन जोकनान, मैं अभी भी जिंदा हूं और तुम खत्म हो चुके हो। तुम्हारा ये सर अब मेरा है। हाँ, ये मेरा है। तुम्हारा सर अब मेरा है जोकनान, मेरा है।

0: पागल है ये, देखो इसने कितना बड़ा गुनाह कर डाला है।
1: मैं अपनी बच्ची के किए हुए पर बहुत खुश हूँ और अब हमें भीतर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अब यहीं रुकना पसंद करूंगी।
0: नहीं, मैं यहां नहीं रुकना चाहता। जाओ, सब चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मुझे शक है कि इस जगह पर कुछ बहुत भयानक होने वाला है। इन रोशनियों को बुझा दो। मुझे उजालों से नफरत होने लगी। मैं अंधेरों में रहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे देख सके, और ना ही मैं किसी को देखना चाहता हूं। बुझा दो रोशनियां, इस खूनी चांद को छुपा दो, इस सितारे बुझा दो। आओ अपने आप को इस महल में कहीं छुपा लें। मुझे बहुत डर लगने लगा है, मुझे डर रहा। हेरोडियस की बेटी जुड़िया की शहजादी सलोमी को कत्ल कर दो।
2: जो हुक्म टेट्रा।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक सलोमी, मूल लेखक ऑस्कर वाइल्ड, रेडियो नाट्य रूपांतरकार विक्रम शर्मा। आज आप इसकी दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे अनुराग अरोरा, लालिमा अनेजा डैंग, गीता वर्मा, राहुल दक्ष, राजीव शर्मा, जयदीप सिंह, जयंत घोष, कपिल, हिम्मत सिंह नेगी, अमर साहा और तरुण भल्ला। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नाटक सलोमी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़।

0: से कुछ ही देर यानी 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 4:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार, 4:10 पर आप सुन सकते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना, 4:20 पर आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, 4:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम परिक्रमा, 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 5:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार, 5:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम लोकरंजनी जिसके सूत्रधार होंगे शशि कपूर और नीलम वर्मा, 5:30 पर आप सुन सकते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार, 4 बजने को आपसे कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंध सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है।

0: यूजीसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 69 ओवर में 3 विकेट पर 308 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाले टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the Economic Advisory Council discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. Various reforms to improve ease of living and ease of doing business were also discussed. The members also gave their assessment of the impact of West Asia conflict on India and the world. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
2: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashwani News, Mumbai.
1: Defence Minister Rajnath Singh today said that India continues to stand out as the world's fastest growing major economy at a time when many countries are facing economic uncertainty. Referring to the registered GDP growth rate of 7.7% in the financial year 2025-26, Mr. Singh said in a social media post that the achievement underscores resilience and underlying strength of the Indian economy built over the last 12 years. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended their last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was the 6th or today of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. The Foreign Affairs Ministry of Nepal said

0: During the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Meanwhile, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the visit will further strengthen the special partnership between India and Nepal. The India Meteorological Department or IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Kerala and Mahe till tomorrow. Heavy to very heavy rainfall conditions are also expected over parts of northeast India, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. In men's hockey, Under-18 Asia Cup, the final match between India and Japan is underway in Kakamigahara, Japan. Earlier, India advanced into the final after defeating its arch rival, Pakistan, 5-3, in the second semi-final yesterday. The Board of Control for Cricket in India, BCCI, today announced Team India's 16-member T20 international squad for the tours of England and Ireland. Shreyas Iyer has been appointed as India's new T20 international captain, replacing Surya Kumar Yadav. Moreover, Tilak Verma has been named as the vice captain. The BCCI has also included young sensation Vaibhav Suryavanshi in the squad for the first time. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Margao, Goa today. The match will be played from 6:30 PM IST. Earlier, India secured its place in the final by defeating Bhutan 1-0 in the semi-finals. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़. डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़. श्रोताओं, शाम के 4:10 हुए हैं और अब समय है एसओएस संदेश अर्थात गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना का. खोई हुई महिला का पूरा नाम राधा, आयु 20 वर्ष, शरीर की बनावट मजबूत व सामान्य, कद 5 फुट, रंग सांवला. ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं. इन्हें अंतिम बार दिनांक 17 अप्रैल 2026 को ग्राम हरोला सेक्टर 5 नोएडा में देखा गया था. यदि इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना फेज 1 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं. कोमल, जिनकी आयु 18 वर्ष है, लिंग महिला, शरीर की बनावट सामान्य, कद 5 फुट 2 इंच. इन्हें अंतिम बार 10 अप्रैल 2026 को C16 सेक्टर 65 में देखा गया था. यदि इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो आप थाना फेस 3 नोएडा कमिश्नरेट जनपद गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं. सुहाना, 22 वर्षीय महिला, शरीर की बनावट इकहरा बदन, कद 4 फुट 9 इंच, शरीर पर अन्य कोई विशेष पहचान नहीं. इन्हें अंतिम बार 5 अप्रैल 2026 को ग्राम झंडूपुरा सेक्टर 11 नोएडा में देखा गया था. यदि इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो आप थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं. कृष्ण प्रताप सिंह, उम्र 18 वर्ष, लिंग पुरुष, कद 5 फुट 6 इंच. गुमशुदा व्यक्ति अपने घर से नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए कह के निकले थे जो अभी तक घर वापस नहीं लौटे हैं. इन्हें अंतिम बार 27 अप्रैल 2026 को नई बस्ती कस्बा पुलिस थाना जेवर गौतम बुद्ध नगर में देखा गया था. यदि इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो आप कोतवाली जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं. खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम विपिन कुमार, आयु 27 वर्ष, लिंग पुरुष,

शरीर की बनावट, पतला और लंबा शरीर, कद 5 फुट 4 इंच, ये दिमागी रूप से थोड़े कमजोर हैं। ये दिनांक 6 अप्रैल 2026 को शाम रात्रि 9 बजे अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं। इन्हें अंतिम बार A108 के पास JJ कॉलोनी सेक्टर 10 नोएडा देखा गया था। यदि इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो आप थाना सेक्टर 10 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। गौरव, जिनकी आयु 28 वर्ष है, लिंग पुरुष, शरीर सामान्य, कद 165.1 सेंटीमीटर। इन्हें अंतिम बार 13 अप्रैल 2026 को ग्राम कोट पुलिस थाना दादरी गौतम बुद्ध नगर में देखा गया था। ये घर से बिना बताए जो है कहीं चले गए हैं। यदि इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो आप कोतवाली दादरी गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम जबर सिंह, आयु 70 वर्ष, लिंग पुरुष, शरीर की बनावट इकहरा शरीर, कद 5 फुट 5 इंच, ये सामान्य परिस्थितियों में कहीं खो गए हैं। इन्हें अंतिम बार 11 मार्च 2024 को गली नंबर 12 बेरोला सेक्टर 49 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में देखा गया था। यदि इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो आप सेक्टर 49 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। तरन्नुम, 26 वर्षीय महिला, शरीर की बनावट, आंख, कान, नाक और कद औसतन, रंग सांवला, कद 5 फुट, शरीर पर कोई अन्य विशेष पहचान नहीं। इन्हें अंतिम बार 20 अप्रैल 2026 को ककराला शाहरुख का मकान फेस 2 नोएडा में देखा गया था। ये घर से कंपनी के लिए बोलकर निकली थी लेकिन वापस घर नहीं लौटी हैं। यदि इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो आप थाना फेस 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, ये थी खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीएमआर 810 किलोहर्ट्स। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें इंद्रप्रस्थ पर आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आपसे कुछ ही देर यानी 4:20 पर आप सुन सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। 4:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम परिक्रमा। 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 5:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम लोकरंजनी, जिसके सूत्रधार होंगे शशि कपूर और नीलम वर्मा। 5:30 पर आप सुन सकते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुन सकते हैं चहल पहल। 6:20 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। 6:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार। शाम 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत। 7:30 पर आप सुन सकते हैं गजल और कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम। 7:45 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार। रात्रि 8 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मुशायरा। 8:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार समाचार संध्या। 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। 9:30 पर आप सुन सकते हैं अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 11:10 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़।

0: Ministry of Ports, Shipping and Waterways has invited applications for one post of Assistant Manager Library to direct recruitment on a regular basis. The post carries a pay scale of 40,000 to 1,40,000 IDA pattern and is intended for candidates with qualification and experience in library and information management. The last date for submission of online applications is 28th June 2026. While the hard copy of the application must reach the authority by 8th July 2026. Detailed eligibility conditions and application forms available on the Port Authority's website. To refer to www.deendayalport.gov.in. I repeat, it is www.deendayalport.gov.in. The Division of Environmental Sciences, ICAR, Indian Agricultural Research Institute, IARI, New Delhi, has invited applications for an online interview to fill one research associate, one young professional one, and one young professional two positions. The appointments are purely temporary and are linked to research projects on methane and nitrous oxide emissions from rice cultivation and the preparation of India's greenhouse gas emission inventory. These positions offer an opportunity to work on nationally significant climate change and agricultural sustainability projects. Detailed qualifications, enumeration and interview schedules are available on the Institute's website. Kindly look up www.iari.res.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। स्टाफ नर्स एक पद, प्रयोगशाला तकनीशियन दो पद, तैराकी प्रशिक्षक एक पद, नेटवर्क प्रशासक दो पद, कैमरामैन दो पद और एक्सरे तकनीशियन एक पद। प्रत्येक पद के लिए वेतन, आवश्यक योग्यताएं, अन्य पात्रता मानदंड संबंधी विवरण और आवेदन प्रपत्र अकादमी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसका पता है www.svpnpa.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट के विभिन्न विभागों में भारत सरकार की रेजिडेंसी योजना के तहत 88 सीनियर रेजिडेंट गैर शैक्षणिक पदों के लिए पात्र और इच्छुक भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 8 जून 2026। पूरी जानकारी के लिए विस्तृत विज्ञापन अवश्य देखें, जो संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है www.aimsrajkot.edu.in/recruitment। इस भर्ती से संबंधित आगे की सारी सूचनाएं, यहां तक कि अंतिम तिथि के विस्तार यदि हो तो सिर्फ संस्थान की वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उपप्रबंधक तकनीक 60 पद उपलब्ध हैं। आवेदन करने के लिए विस्तृत जानकारी हेतु देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.gov.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख रहेगी 15 जून 2026। वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान देहरादून में कनिष्ठ शोध अध्येता के एक पद के लिए रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत विज्ञापन जिसमें परियोजना का ब्यौरा, फेलोशिप, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, वॉक इन इंटरव्यू की तिथि आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.wihg.res.in। निदेशक वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वे बगैर कारण बताए पदों की भर्ती को निरस्त कर सकते हैं।

0: कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सैनिकपुरी डाक सिकंदराबाद में इन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं। सिविलियन मोटर चालक सामान्य ग्रेड एक पद, बावर्ची एक पद, मल्टीटास्किंग स्टाफ 5 पद, आशुलिपिक ग्रेड 2 1 पद। विस्तृत पात्रता मानदंड और आवेदन पत्र के प्रारूप की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.indianarmy.nic.in। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड नई दिल्ली में सदस्य के पद को भरने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस पद के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप, पात्रता और सेवा की शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है mopng.gov.in तथा pngrb.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। 4:30 होने को है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे परिक्रमा।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून करिश्मा। करिश्मा, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग हेवी रेन इन दिल्ली एनसीआर अ कपल ऑफ डेज बैक, द सिटी इज एक्सपीरियंसिंग अ वेरी हॉट एंड मोस्टली ड्राई डे अगेन विद टेम्परेचर्स रीचिंग अ हाई ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर्स दीज डेज आर जनरली नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। While crops need warmth to grow, extreme and prolonged heat acts as a major risk multiplier, significantly degrading crop yields, straining the livestock and accelerating water scarcity, of course. High temperatures these days are generally not good for agriculture, as I just said, and certainly global warming is causing severe harm to human health and global economies, and the natural environment also is severely affected by this. The impacts are no longer future projections. They are actively reshaping life across the planet today, and we desperately need to be very cautious and do something very positive urgently. Isn't it, Karishma?
5: बिल्कुल, आपने सही कहा।
4: Well, now let's surprise you all with the latest on the headlines. Reserve Bank of India simplifies rules for foreign portfolio investors in government securities to make investment in India easier.
5: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे।
4: CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow.
5: पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत।
4: IMD shows red alert for very heavy rainfall over Kerala and Mahi till tomorrow.
5: और श्रेयस अय्यर सूर्य कुमार यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल।
4: And Karishma, it's now time for our segment Dateline.

0: India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about India's biodiversity, their commitments and achievements.
1: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि असल में किसी देश को क्या चीज़ जिंदा रखती है? इसका जवाब प्रकृति में छिपा हुआ है। हमारी थाली का हर दाना, साफ पानी की हर बूंद, ताजी हवा की हर सांस और यहां तक कि बदलते मौसम भी एक अद्भुत शक्ति से जुड़े हुए हैं, और वो है जैव विविधता।
0: Absolutely. And when it comes to protecting this priceless natural wealth, India has a story worth celebrating. Today, let's explore how India is conserving its biodiversity, empowering communities, protecting wildlife, and building a greener future for generations to come. But first, a fascinating question for all our listeners. What exactly is biodiversity?
1: बिल्कुल, और बहुत से लोग सोचते हैं कि बायोडायवर्सिटी का मतलब सिर्फ वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव है, जैसे कि बाघ, हाथी, पक्षी और जंगल। लेकिन बायोडायवर्सिटी इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। इसमें हमारे आसपास मौजूद हर जीवित जीव शामिल है, जैसे कि पौधे, जानवर, कीड़े मकौड़े, सूक्ष्म जीव और वे इकोसिस्टम जो ये सब मिलकर बनाते हैं। आम के बाग के बारे में सोचिए, हर आम के पेड़ को मधुमक्खियों जो फूलों में परागण करती हैं, केचुए जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और सूक्ष्म जीव जो पोषक तत्वों को तोड़ते हैं और आसपास के इकोसिस्टम से बनने वाले बारिश के पैटर्न से मदद मिलती है।
0: And try removing one piece from this puzzle. The entire system begins to weaken. That's biodiversity in action. And protecting it is not only an environmental responsibility, it is essential for food security, livelihoods, climate resilience, and sustainable development.
1: बिल्कुल, लेकिन श्रोताओं, सबसे जरूरी ये भी समझना है कि भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में इतनी विशाल चीज की सुरक्षा कैसे की जाती है। इसका जवाब है एक बेहतरीन सिस्टम जो राष्ट्रीय नीतियों को स्थानीय समुदाय से जोड़ता है। भारत में जैव विविधता का प्रबंधन तीन स्तरीय ढांचे के जरिए होता है। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी संरक्षण के प्रयासों को दिशा देती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पे स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड और बायोडायवर्सिटी काउंसिल इन लक्ष्यों को क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से ढालते हैं, और जमीनी स्तर पे बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियां सीधे स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर काम करती हैं।
0: This is where the real magic happens. Across villages, towns, and cities, local people are documenting plants, animals, ecosystems, and traditional knowledge through something called the People's Biodiversity Register. And today, India has established more than 2.76 lakh biodiversity management committees and prepared over 2.72 lakh People's Biodiversity Registers. That's one of the world's largest community-driven biodiversity documentation efforts.
1: बिल्कुल, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 देश का मुख्य कानूनी ढांचा बना, जिसका मकसद जैव विविधता का संरक्षण करना, उसके टिकाऊ इस्तेमाल को बढ़ावा देना और जैविक संसाधनों से मिलने वाले फायदे का उचित बंटवारा सुनिश्चित करना था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 के जरिए इसमें एक अहम बदलाव किया गया। इसमें रिसर्च, इनोवेशन, पारंपरिक ज्ञान और समुदाय की भागीदारी को और मजबूती मिली, और साथ ही इसे लागू करने की प्रक्रिया ज्यादा असरदार और आसान हो गई।
0: But here's something particularly meaningful. India doesn't see traditional knowledge as outdated wisdom. Instead, it recognizes it as a valuable resource. This blend of traditional wisdom and modern science is becoming one of India's greatest strengths.
1: और आइए जंगलों के बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत में जंगल और पेड़ों का दायरा अब लगभग 8,27,000 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से ज्यादा हिस्सा है। अब जरा सोचिए, इसका क्या मतलब है? ज्यादा जंगल का मतलब है बेहतर कार्बन सोखना, ज्यादा स्वस्थ इकोसिस्टम, बेहतर जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए मजबूत क्षमता।
0: बट फॉरेस्ट्स अलोन aren't enough. Protected areas also matter, and India now has more than 1,134 protected areas covering over 1.87 lakh square kilometers. These spaces safeguard critical habitats for countless species and preserve ecological balance for future generations.

0: aspirations.
1: और भारत की जैव विविधता यात्रा वैश्विक प्रतिबद्धताओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है. देश कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, नागोया प्रोटोकॉल और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है. ये वैश्विक साझेदारियां जैव विविधता के संरक्षण, लाभों के उचित बंटवारे और 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने पर भी केंद्रित है.
0: These efforts ensure that decisions are guided by strong evidence and long-term planning. Now, pause for a moment and consider this. When you hear the word development, what comes to mind? Roads, industries, urban growth, what? India is demonstrating that development and conservation do not have to compete. They can move forward together.
1: और एक स्वस्थ जंगल पानी की सुरक्षा में मदद करता है. एक समृद्ध वेटलैंड बाढ़ के जोखिम को कम करता है. परागण करने वाले जीव खेती की पैदावार को बढ़ाते हैं. सुरक्षित इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन का सामना करने की क्षमता को मजबूत करते हैं. प्रकृति विकास से अलग नहीं है, प्रकृति के विकास को संभव बनाती है. और शायद भारत की जैव विविधता यात्रा से यही सबसे प्रेरणादायक सीख भी मिलती है.
0: Millions of people are contributing to a shared mission, a mission to protect India's extraordinary natural heritage. And as we look towards 2030 and beyond, the goal is clear. Stronger forests, healthier ecosystems, protected wildlife, and a future where economic growth and environmental stewardship reinforce one another.
1: और भारत की जैव विविधता की कहानी सिर्फ संरक्षण के बारे में नहीं है, यह जिम्मेदारी के बारे में भी है, यह मुश्किलों से उबरने की क्षमता के बारे में भी है और यह लोगों और प्रकृति के बीच साझेदारी के बारे में भी है. सबसे जरूरी बात यह है कि यह एक ऐसे देश की कहानी है जो यह साबित करता है कि तरक्की तभी सच में सार्थक होती है जब वह उस पर्यावरण के साथ साथ आगे बढ़े जो उसे बनाए रखता है.
0: Hear birds singing after the rains or walk beneath the shade of an old tree, you'll remember something important. These are not small details of life, they are signs of a living, thriving India. And protecting them is one of the greatest investments we can make in our future. And as part of our series Prakriti Ki Baat, Akashwani ke saath, we bring you an interview with Ramji Bhagat, the sarpanch of Saradi Gram Panchayat in Chhattisgarh. Saradi Gram Panchayat has received National Panchayat Award under the category Clean and Green Panchayat.
2: हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे, चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है. समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में चार बार हम लोग जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के साफ सफाई करते हैं. जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है आने वाला पीढ़ी के लिए. हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहां से लेंगे, ऑक्सीजन कहां से लेंगे. हम लोग के पास अभी लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है.
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ.
0: And to listen to the whole conversation, tune into 100.1 Akashwani Gold today in the evening at 5:10 PM. You can also listen to it on the News on EIR app and News on EIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 AM.
1: और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
0: And we begin with, we are having the mango season these days, Karishma. The second edition of Mango Magic Festival promotion and tasting event of Indian mangoes was hosted in Seattle, United States today. Over 100 leading importers of Indian fruits, including senior leadership of U.S. retailers like Costco, participated and tasted 7 premium varieties of Indian mangoes on display, including Alfonso and Kesar from Maharashtra, Beganpalli and Himayat from Andhra Pradesh, Langra and Dasheri from Uttar Pradesh, and ripe Rajapuri from Gujarat. We have more on this from our correspondent.
4: The Consulate General of India in Seattle initiated the introduction of Indian mangoes in July last year and partnered with various stakeholders both in India and the greater Seattle

0: area with an attempt to bring new premium varieties of Indian mangoes to big retail stores like Costco for American consumers. These efforts received a significant boost following a meeting with Costco CEO in April this year, after which Bhagwa variety of pomegranates from Maharashtra were introduced at Costco stores in the region, subsequently followed by Kesar mangoes. Attending the Mango Festival, Vice President of Costco Wholesale, Bob Husky, said that they recently started selling Indian Kesar mangoes and they have been selling faster than they can bring them back in.
1: We have just started selling the Indian Kesar mangoes and they have been selling faster than we can bring them back in. So we are very happy to sell the mangoes and happy that we could be part of this mango celebration at the consulate today.
0: Washington Senator Manka Dhingra said that these relationships based on food make trade, economics and business relationships really thrive.
2: It is such a pleasure for me to be here at Mango Magic with the Consul General to Seattle. These relationships that make trade, economics, business relationships really thrive.
0: Moreover, in his recent edition of Man Ki Baat program, Prime Minister Narendra Modi also spoke about the rich diversity of Indian mangoes and praised India's mango farmers for taking this journey from the village to the global market.
3: आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: India is currently the world's largest producer of mangoes with an annual output of over 26 million metric tons and more than 1,000 named varieties. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
4: बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब गोवा की। गोवा के मडगांव में आज फुटबॉल का रोमांच अपने चरम पर होगा जब सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। एक ओर भारत की नजर रिकॉर्ड छठे खिताब पर होगी तो वहीं बांग्लादेश लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने के इरादे से मैदान में उतरेगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
5: मडगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज शाम सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से होगा। भारतीय टीम इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार लय में दिखाई दी है। टीम ने मालदीव को 11-0 से हराया, ग्रुप चरण में बांग्लादेश को 3-0 से मात दी और सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। खास बात यह है कि भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं खाई है। दूसरी ओर बांग्लादेश ने नेपाल को रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में 2-1 से हराकर लगातार तीसरी बार फाइनल में प्रवेश किया है। प्री मैच ब्रीफिंग के दौरान भारतीय टीम की कप्तान संगीता बसोर ने कहा कि
6: हम लोग रेडी है फाइनल के लिए और एक फाइनल हमारे लिए एक बहुत मोटिवेशन है, बस फाइनल खेलना है और जीतना है।
5: भारत और बांग्लादेश के बीच का खिताबी मुकाबला आज शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। दर्शकों के लिए स्टेडियम में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
7: And Karishma, while the rest of the nation battles the summer heat, a quiet, powerful revolution has just swept through the snow-capped peaks of the Trans-Himalayan region. From the remote heights of the Union Territory of Ladakh comes an inspiring blueprint for rural India. Marrying the ideals of public health with environmental sanctity, the Rural Development Department in Leh has just concluded a massive high-impact campaign, Swachh Gaon Surakshit Parivar.
8: Spanning 5 action-packed days from June 1st to June 5th, this initiative transformed Ladakh's breathtaking landscape into a vibrant canvas of community action. The campaign moved far beyond the traditional scope of merely cleaning streets. Instead, it was launched as a vital shield to safeguard the health, hygiene and future of every single rural household. Throughout the week, local communities, dynamic youth groups and senior administration officials joined hands in a rare show of unity. The Panchayat Inspector of Rural Development डिपार्टमेंट सेवंदरजे शेयर द आउटकम्स ऑफ द सक्सेसफुल 5-डे कैंपेन।
9: इस कैंपेन में हमने ज्यादातर जोर किस तरह से गांव के वातावरण को साफ रखे, पानी हो, हवा हो, धरती हो, सफाई रखना है, उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिकली गांव में क्लीननेस ड्राइव भी किया है। और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के दिन हमने हर गांव में एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के साथ हर गांव में प्लांटेशन ड्राइव भी किया गया था। इसी के साथ हमने 5 जून को ही ग्राम सभा का भी आयोजन किया। गया था, जिसमें हमने हर पंचायत में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 के ऊपर, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जिस तरह से एक फोर्स टीम में सेग्रीगेट करना था, उसके ऊपर हमने बहुत सारे काम किया और लोगों को समझाया कि जो कूड़े घर से निकलते हैं उसको किस तरह से चार हिस्से में बांटना है। और इस

0: इसके साथ ही आज हम डी रामा नायडू, भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और उद्यमी को याद कर रहे हैं। वे भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे सफल निर्माताओं में गिने जाते थे और उन्होंने तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, ओडिशा और अन्य भाषाओं में भी फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने वर्ष 1964 में अपनी पहली फिल्म रामडू भीमडू का निर्माण किया, जो बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ी। इसके बाद उन्होंने अपने बैनर सुरेश प्रोडक्शन के माध्यम से सैकड़ों फिल्मों का निर्माण किया। उनका नाम सर्वाधिक फिल्मों के निर्माण का रिकॉर्ड भी दर्ज करता है, जिसके लिए उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। डी रामा नायडू ने भारतीय सिनेमा को नई प्रतिभाएं देने और क्षेत्रीय फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डी रामा नायडू को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा अनेक अन्य प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया गया।
1: He also was honored with a Dada Saheb Phalke

0: सो मच।
1: श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
3: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
2: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सेवाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे। वे ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम है ना, आज के लोकरंजनी कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ब्रिजपाल चरोरा से ये श्री अन्न गीत।
2: अरे मोटे अन के अरे भोज बनाओ,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लेखराज से ये लोकगीत, और आइए अगला लोकगीत आपको सुनवाते हैं बबीता उर्फ पूनम त्यागी से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बबीता उर्फ पूनम त्यागी से ये लोकगीत। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं आपको एक और लोकगीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

0: पुष्पा गोसाई द्वारा गाए गए इसी लोकगीत के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार। खेल की दुनिया की हर हलचल, हर जीत, हर संघर्ष और हर बड़े मुकाबले के साथ आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी। मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वसीम अहमद। आज की शुरुआत करेंगे क्रिकेट से, जहां एशियाई खेल 2026 सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। साथ ही भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच का हाल भी जानेंगे। इसके अलावा नजर रहेगी नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन, विश्व योगासन चैंपियनशिप, अंडर 18 एशिया कप हॉकी, उलन पटार ओपन कुश्ती प्रतियोगिता और फुटबॉल से जुड़ी अहम खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरुआत करते हैं खेल जगत की आज की प्रमुख खबरों के साथ।

0: भारतीय क्रिकेट में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों और प्रमुख प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने कई महत्वपूर्ण टीम घोषणाएं की हैं। इस क्रम में श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 टीम की कमान सौंप दी गई है, जबकि तिलक वर्मा को उप कप्तान बनाया गया है। बीसीसीआई ने एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। जापान में होने वाले इस बहु खेल आयोजन में श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम स्वर्ण पदक की चुनौती पेश करेगी। टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। इन दोनों दौरों पर भी टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर संभालेंगे। टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है। वहीं श्रीलंका दौरे के लिए भारत ए टीम की घोषणा भी कर दी गई है। इस टीम की कप्तानी ध्रुव जुरेल करेंगे, जबकि देवदत्त पडिक्कल उप कप्तान होंगे। टीम में ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, हर्ष दुबे, अंशुल काम्बोज, गुरनूर बरार, शाइक रशीद, औकिब नबी, यश ठाकुर और एन जगदीशन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। टीम चयन की सबसे बड़ी चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर हो रही है। महज 15 वर्ष और 70 दिन की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाकर वैभव ने इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही वे भारतीय टीम का कॉलअप पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्हें 16 वर्ष और 205 दिन की उम्र में पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया था। अब सभी की निगाहें श्रेयस अय्यर की कप्तानी और युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के लिए आने वाला महीना काफी व्यस्त और महत्वपूर्ण रहने वाला है।
1: आने वाली टी20 श्रृंखलाओं के लिए

भारतीय टीम के अनाउंसमेंट के बाद आज भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपने 2026-27 के घरेलू सीजन का शंखनाद कर दिया है। आज उसका सामना तेजी से उभरती और बेहद खतरनाक अफगानिस्तान की टीम से हो रहा है, मुल्लानपुर नए चंडीगढ़ स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। इस स्टेडियम में अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला गया है, यह अपना ऐतिहासिक पहला टेस्ट मैच आयोजित कर रहा है। भारत ने दो तेज गेंदबाजों प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया है। दोनों टीमों के दो खिलाड़ियों का टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण हुआ है। भारत की ओर से युवा स्पिनर मानव सुथार ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला है, जबकि अफगानिस्तान के लिए स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर नांग्यालिया खरोटे ने अपनी पहली टेस्ट कैप प्राप्त की। मानव सुथार एक 23 वर्षीय उभरते हुए भारतीय क्रिकेटर हैं, जो एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। वे पारंपरिक धीमे बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं। सुथार घरेलू क्रिकेट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं। आज पहले दिन के खेल में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना। दिन के पहले सेशन में भारत ने 1 विकेट के नुकसान पे 96 रन बनाए, जिस सेशन में यशस्वी जायसवाल ने 24 रन बनाकर अपना विकेट खोया। वहीं दूसरे सेशन में भारत ने एक और विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए, साई सुदर्शन और केएल राहुल ने अपने अर्धशतक पूरे किए। इसी सेशन में साई सुदर्शन 81 रन बनाकर आउट हुए। दिन के तीसरे सेशन में भारत ने 216 रन और जोड़े 1 विकेट के नुकसान पर। पहला दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक मजबूत स्थिति पकड़ ली है, जहां उसका स्कोर 85 ओवर में 368 रन है। शुभमन गिल 103 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं ऋषभ पंत 50 रन बनाकर नॉट आउट हैं। केएल राहुल ने भी अपनी सेंचुरी पूरी करी।

0: क्रिकेट में भारतीय जलवे के बाद अब चलते हैं बुद्धि और रणनीति के सबसे बड़े अखाड़े में, बात अब शतरंज की, जहां बिसात पर हर चाल इतिहास बदल सकती है। नॉर्वे के ओस्लो में संपन्न हुए नॉर्वे चेस 2026 टूर्नामेंट में इस बार भारतीय शतरंज खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। यह टूर्नामेंट ओपन और महिला दोनों वर्गों में बेहद रोमांचक रहा, जहां हर राउंड के बाद अंक तालिका में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। ओपन सेक्शन में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने असाधारण फॉर्म दिखाया। छठे राउंड के बाद आर प्रज्ञानंदा छठे यानी अंतिम पायदान पर थे। सातवें राउंड में उन्होंने फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा को, आठवें राउंड में विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन को और नवें राउंड में विश्व चैंपियन हमवतन डी गुकेश को और दसवें राउंड में जर्मनी के विंसेंट कीमर को क्लासिकल गेम्स में मात देकर अंतिम चार राउंड में 12 अंक अर्जित करके नॉर्वे चेस का खिताब अपने नाम किया। वहीं विश्व चैंपियन डी गुकेश के लिए टूर्नामेंट उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जीत दर्ज की, लेकिन लगातार स्थिरता बनाए रखने में संघर्ष किया और अंतिम चरण तक उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा। अन्य शीर्ष खिलाड़ियों कार्लसन, फिरोजा और वेस्ली सो के बीच भी कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिससे अंतिम राउंड तक खिताबी मुकाबला खुला रहा, खिताब अपने नाम कर लिया। भारत की कुनेरू हम्पी और युवा खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने भी मजबूत मुकाबले खेले, हालांकि वे शीर्ष स्थानों तक नहीं पहुंच सकी। दिव्या ने कई राउंड में अच्छे खेल से अपनी क्षमता का परिचय दिया, जबकि हम्पी को कड़े मुकाबलों में अनुभव का लाभ उठाने का प्रयास करते देखा गया। कुल मिलाकर नॉर्वे चेस 2026 भारतीय शतरंज के लिए एक यादगार टूर्नामेंट साबित हुआ, जहां प्रज्ञानंदा का प्रदर्शन सबसे बड़ा आकर्षण रहा और भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। फाइनल रैंकिंग में नॉर्वे चेस 2026 ओपन में भारत के आर प्रज्ञानंदा चैंपियन रहे। रनर अप थे यूएसए के वेस्ली सो और तीसरे स्थान पर रहे फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा। वहीं नॉर्वे चेस महिला 2026 की फाइनल रैंकिंग में कजाकिस्तान की बिबिसारा असाउबाएवा चैंपियन रहीं, वहीं चाइना की जू जाइनर रनर रहीं और यूक्रेन की एना मुजीचुक तीसरे स्थान पर रहीं। अपनी चैंपियनशिप जीत के बाद आर प्रज्ञानंदा ने अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया, आइए सुनते हैं।
1: Yeah, I still don't feel like I just won. Yeah, I mean once I started start feeling like I'm winning, I started to feel a lot of tension. I do feel like some sort of I'm still in that same zone, I think. Yeah, it's much more important that I win the tournament, winning for classical games.
0: Norway

0: ओपन महिला 2026 की चैंपियन बिबिसारा असाउबाएवा ने अपनी जीत के बाद अपने विचार साझा किए।
1: I'm feeling very good and very happy. I think this tournament going very well for me. And yeah, I'm happy to finish the tournament before the round.
2: खेल के मैदान से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम तक एक ऐसी दीवानगी जो दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की। 90 मिनट का रोमांच, 22 जाबाज खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य, विपक्षी खेमे के गोल में बॉल डालना और अपने खेमे में गोल ना होने देना। अब समय है उस महाकुंभ की बात करने का जहां सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। मैदान तैयार है, सितारे सज चुके हैं और करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज होने वाली हैं। चलिए रुख करते हैं फीफा विश्व कप 2026 की ओर।

0: विश्व कप की शुरुआत से पहले आकाशवाणी हर दिन एक समूह की टीम से जुड़ी जानकारी लेकर आता है। इस श्रृंखला की छठी कड़ी में आज हम ग्रुप एफ के बारे में बात करेंगे। ग्रुप एफ बेहद संतुलित और प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है, जिसमें शामिल हैं नीदरलैंड्स, जापान, स्वीडन और ट्यूनिशिया। चारों टीमें अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं और अपने साथ समृद्ध फुटबॉल इतिहास लेकर आई हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीदरलैंड्स की। विश्व फुटबॉल की सबसे जानी मानी टीमों में गिने जाने वाली नीदरलैंड्स ने भले ही अभी तक कोई विश्व कप ना जीता हो, लेकिन उसका रिकॉर्ड शानदार रहा है। डच टीम 1974, 1978 और 2010 में फाइनल तक पहुंची और उपविजेता रही। टोटल फुटबॉल की अपनी अनोखी शैली के कारण यह टीम दुनिया भर में मशहूर है। विश्व कप 2026 के क्वालिफिकेशन अभियान में भी नीदरलैंड्स ने दमदार प्रदर्शन किया। टीम अपने ग्रुप में अपराजित रही और प्रभावशाली गोल अंतर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। अनुभवी खिलाड़ियों और मजबूत सामूहिक खेल के दम पर वह इस बार खिताब की प्रबल दावेदारों में से एक है। बात जापान की करें तो एशियाई फुटबॉल की सबसे सफल टीमों में से एक जापान लगातार 8वें विश्व कप में हिस्सा लेने जा रहा है। 1998 के बाद से जापान ने कभी विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफलता नहीं देखी है। टीम 4 बार अंतिम 16 में पहुंच चुकी है और हाल के वर्षों में उसने कई बड़ी टीमों को हराकर अपनी क्षमता साबित की है। जापान विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली शुरुआती टीमों में शामिल रहा। तेज पासिंग, तकनीकी कौशल और अनुशासित खेल इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। इस बार जापान का लक्ष्य पहली बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना होगा।
1: अब चर्चा स्वीडन की। स्वीडन का विश्व कप इतिहास भी काफी गौरवशाली रहा है। 1958 में उसने अपने घरेलू मैदान पर विश्व कप फाइनल खेला था। इसके अलावा 1950 और 1994 में टीमें तीसरे स्थान पर रहीं। हाल के वर्षों में भी स्वीडन ने लगातार बड़े टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन किया है। कठिन क्वालिफिकेशन अभियान के बाद स्वीडन ने प्लेऑफ के जरिए विश्व कप का टिकट हासिल किया। टीम की पहचान उसके अनुशासित खेल, मजबूत रक्षा पंक्ति और सामूहिक प्रयास से होती है। स्वीडन को इस समूह का संभावित डार्क हॉर्स माना जा रहा है। अब बात करते हैं ट्यूनिशिया की। अफ्रीका की अनुभवी टीमों में शामिल ट्यूनिशिया 7वीं बार विश्व कप में भाग लेगी। हालांकि वह अब तक कभी नॉकआउट चरण में नहीं पहुंच सकी है, लेकिन उसके नाम एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज है। 1978 में ट्यूनिशिया विश्व कप मैच जीतने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था। विश्व कप 2026 के क्वालिफिकेशन में ट्यूनिशिया ने शानदार रक्षात्मक प्रदर्शन किया और अपने समूह में शीर्ष स्थान हासिल किया। टीम की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठित खेल और मजबूत डिफेंस है। इस बार उसका लक्ष्य इतिहास रचते हुए पहली बार नॉकआउट दौर में पहुंचना होगा। अगर पूरे ग्रुप एफ की तस्वीरें देखें तो कागजों पर नीदरलैंड सबसे मजबूत टीम दिखाई देती है, लेकिन जापान की निरंतरता, स्वीडन का अनुभव और ट्यूनिशिया की जुझारू शैली इस समूह को बेहद रोचक बनाती है।
0: आइए ग्रुप एफ में शामिल टीमों की मौजूदा विश्व रैंकिंग पर एक नजर डालते हैं। इस ग्रुप में नीदरलैंड्स विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान के साथ सबसे मजबूत स्थिति में है। जापान 18वें, तो स्वीडन 38वें और ट्यूनिशिया 46वें स्थान पर है। यही वजह है कि फुटबॉल विशेषज्ञ ग्रुप एफ को

0: विश्व कप 2026 के सबसे रोमांचक समूहों में से एक मान रहे हैं। यहां हर मैच महत्वपूर्ण होगा और छोटी सी गलती भी टीमों को आगे की राह मुश्किल बना सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या नेदरलैंड्स अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएगा, जापान इतिहास रचेगा, स्वीडन फिर कोई बड़ा उलटफेर करेगा या ट्यूनिशिया पहली बार नॉकआउट चरण में जगह बनाएगा। इन सवालों के जवाब मिलेंगे फीफा विश्व कप 2026 में। ग्रुप एफ के मुकाबले 14 जून से शुरू होंगे। पहले दिन आर्लिंगटन के AT&T स्टेडियम टेक्सास में नीदरलैंड्स का सामना जापान से होगा, जबकि मेक्सिको के मोंटेरेरे में स्वीडन और ट्यूनिशिया आमने सामने होंगे। 20 जून को नीदरलैंड्स और स्वीडन ह्यूस्टन में भिड़ेंगे, जबकि जापान और ट्यूनिशिया मोंटेरेरे में खेलेंगे। ग्रुप चरण के अंतिम मुकाबले 25 जून को होंगे, जहां जापान का सामना स्वीडन से टेक्सास में और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से कैंसस सिटी में होगा।
1: फुटबॉल प्रशंसक खूब मजे कर रहे हैं और भारत में फुटबॉल का रोमांच जारी है। गोवा के मंडगांव में आज शाम ढलते ही पारा सातवें आसमान पर है। मौका है सेफ विमेंस चैंपियनशिप 2026 के महामुकाबले का। दो चिर प्रतिद्वंदी, दो दिग्गज टीमें और चमचमाती ट्रॉफी पर टिकी निगाहें। एक तरफ है मैदान पर आग उगलने वाली हमारी ब्लू टाइग्रेसेस यानी भारतीय महिला टीम, जो अपने छठे खिताब के इरादे से उतरी हैं, तो दूसरी तरफ है दो बार की डिफेंडिंग चैंपियन बांग्लादेश, जो खिताबी हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है। जंग सिर्फ गोल की नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के फुटबॉल साम्राज्य पर राज करने की है। पहले सेमीफाइनल बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हराया और दूसरे सेमीफाइनल भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर बढ़त हासिल की। फाइनल आज शाम 6:30 बजे खेला जाएगा।
0: फुटबॉल का खेल जारी है। फीफा फ्रेंडलीज में भारतीय फुटबॉल टीम को शुक्रवार को तुर्सुनजोदा में ताजिकिस्तान से 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। यह मैच जून फीफा अंतर्राष्ट्रीय विंडो के दौरान निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैत्री मैचों में से पहला था। नवीनतम फीफा फुटबॉल रैंकिंग में 137वें स्थान पर मौजूद भारत ने विश्व नंबर 103 ताजिकिस्तान पर शुरुआती बढ़त बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मेजबान टीम के आक्रामक खेल का सामना करने में उसे कठिनाई हुई। ताजिकिस्तान पुरुष फुटबॉल टीम की भारत के खिलाफ 6 मुकाबलों में यह चौथी जीत थी। भारत अगले मंगलवार को हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में दूसरे मैत्री मैच में ताजिकिस्तान का सामना करेगा। फुटबॉल के रोमांच के बाद अब बात लाल मिट्टी, लंबी रैलियां और धैर्य की कड़ी परीक्षा वाले खेल की। यह पहचान है टेनिस की, यह पहचान है फ्रेंच ओपन की। पेरिस के रोलां गैरो में फ्रेंच ओपन अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका है, जहां अब खिताबी मैचेस का दौर चल रहा है। आज खेला जाएगा फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का फाइनल, जहां खिताब के लिए आमने सामने होंगी रूस की युवा सनसनी मिर्रा एंड्रीवा और पोलैंड की क्वालिफायर माया च्वालिंस्का। यह मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार और चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए फाइनल का सफर तय किया है। 19 वर्षीय एंड्रीवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मजबूत खिलाड़ी मार्ता कोस्त्युक को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में जगह बनाई और अपनी आक्रामक बेसलाइन खेल से सभी को प्रभावित किया। वहीं दूसरी ओर पोलैंड की माया च्वालिंस्का ने इतिहास रचते हुए क्वालिफाइंग राउंड से शुरुआत कर सीधे फाइनल तक का सफर तय किया है। उन्होंने लगातार 8 मुकाबलों में जीत दर्ज कर कई दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया और वह फ्रेंच ओपन इतिहास की पहली महिला क्वालिफायर बन गईं जो फाइनल तक पहुंची हैं। अब सवाल यह है कि युवा प्रतिभा एंड्रीवा अपनी रफ्तार और ताकत से पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीतेंगी या फिर च्वालिंस्का अपनी संघर्ष भरी और प्रेरणादायक सिंड्रेला रन को खिताब के साथ पूरा करेंगी। रोला गैरो के क्ले कोर्ट का यह मुकाबला अनुभव बनाम आत्मविश्वास की एक शानदार टक्कर बनने जा रहा है, जिसका इंतजार पूरी टेनिस की दुनिया कर रही है। आज रात इतिहास लिखा जाएगा, पेरिस में नया ग्रैंड स्लैम चैंपियन मिलेगा। आज पुरुष डबल फाइनल भी खेला गया। स्पेन के मार्सेल ग्रानोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबेलोस की जोड़ी ने फिनलैंड के हरी हेलियोवारा और यूके के हेनरी पैटन को 6-4, 6-2 से सीधे सेटों में हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स में कल दोनों सेमीफाइनल खेले गए, जिसमें जबरदस्त रोमांच और नई पीढ़ी का दबदबा देखने को मिला। पहले सेमीफाइनल में जर्मनी के दिग्गज और दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चेक गणराज्य के युवा खिलाड़ी याकूब मिंसिक को 4 सेटों में हराकर फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने यह मैच

0: कल 7 जून को महिला युगल फाइनल भी खेला जाएगा, जहां शीर्ष वरीयता प्राप्त चेकिया की कैटरीना सिनियाकोवा और यूएस की टेलर टाउनजेंड की जोड़ी के सामने होंगी। दूसरी वरीयता प्राप्त कजाकिस्तान की एना डालिलिना और सर्बिया की अलेक्जेंड्रा क्रोनिक।
1: एक ओर मैदान में खिलाड़ी अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं भारत की प्राचीन योग परंपरा भी अब वैश्विक खेल मंच पर नई पहचान बना रही है। इसी कड़ी में रुख करते हैं विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की तरफ, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने पदकों की झड़ी लगा दी है। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत का दबदबा शुरुआती 6 स्पर्धाओं में जीते 5 स्वर्ण पदक से साफ दिखता है। गांधीनगर के एका एरिना में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में मेजबान भारत ने दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। योगासन के इस ऐतिहासिक वैश्विक आयोजन में भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआती 6 स्पर्धाओं में से 5 में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता की शुरुआत पारंपरिक योगासन के सीनियर पुरुष वर्ग से हुई, जहां पश्चिम बंगाल के अभय बर्मन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 63.42 अंक अर्जित किए और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इंडोनेशिया के अरकान रियांतो ने 57.23 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और उन्होंने रजत पदक हासिल किया। वहीं उज़्बेकिस्तान के एलन ने 53.21 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया। ये विश्व योगासन चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक था जिसे भारत ने अपने नाम किया। इसके बाद सीनियर महिला वर्ग में भारत की ऋतु मंडल ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 64.33 अंक प्राप्त किए और स्वर्ण पदक जीता। कजाकिस्तान के आईजान ने 58.97 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं और उन्हें रजत पदक मिला। हांगकांग के लाम नगामान ने 56.98 अंक अर्जित कर कांस्य पदक अपने नाम किया। सीनियर ए पुरुष वर्ग एकमात्र ऐसा मुकाबला रहा जिसमें भारत स्वर्ण पदक नहीं जीत सका। इस वर्ग में सिंगापुर के नथानियल टेन लियोंगान ने 55.37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। तंजानिया के करीमू स्वाफी 54.99 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। भारत के सुमिर ने 54.0 अंक अर्जित कर कांस्य पदक जीता और देश को इस वर्ग में पदक दिलाया। हालांकि भारत ने जल्दी वापसी करते हुए सीनियर ए महिला वर्ग में फिर से स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। ऋतु ठाकुर ने 63.5 अंक हासिल कर अपना पहला स्थान प्राप्त किया। अर्जेंटीना की नबीला सोल बराजा 62.04 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं और उन्हें रजत पदक मिला। कीनिया की अवोर साउलिन्हा ने 53.86 अंक अर्जित कर कांस्य पदक जीता। सीनियर बी पुरुष वर्ग में भारत के रोशन थापा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 65.67 अंक हासिल किए और स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। बांग्लादेश के मोहम्मद मामून खान बाबू 58.57 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं किर्गिस्तान के डिनेल राइकोव ने 53.55 अंक अर्जित कर कांस्य पदक जीता। दिन के अंतिम मुकाबलों में ट्विस्टिंग बॉडी इंडिविजुअल सीनियर बी महिला वर्ग में भारत की ज्योति ने 86.14 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओमान की ओली मुथु 38.66 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं और उन्हें रजत पदक मिला। जापान की सायोरी कवी ने 63.41 अंक अर्जित कर कांस्य पदक हासिल किया। इस तरह दिन के अंत तक भारत ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में अपना दबदबा कायम रखा। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन योगासन को वैश्विक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। दूसरे दिन विभिन्न वर्गों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ प्रतियोगिता ने और रोमांचक रूप ले लिया। इसके बाद आज यानी तीसरे दिन प्रतियोगिता का केंद्र आर्टिस्टिक सिंगल और रिदमिक पेयर स्पर्धाएं रहीं, जिनमें दुनिया भर के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, संतुलन और लचीलेपन का प्रदर्शन किया। अब बात कर लेते हैं हॉकी की, जहां भारतीय अंडर 18 महिला टीम ने महिला अंडर 18 एशिया कप 2026 में कांस्य पदक जीतकर अपना अभियान शानदार अंदाज में समाप्त किया। जापान के काकामिहागरा में खेले गए कांस्य पदक मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर पोडियम पर अपनी जगह सुनिश्चित

0: घोषित की। सेमीफाइनल में चीन के खिलाफ शूटआउट में मिली करीबी हार के बाद भारतीय टीम ने जोरदार वापसी करते हुए इस मुकाबले में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। मैच के दूसरे ही मिनट में संदीपा कुमारी ने शानदार फील्ड गोल दागकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। शुरुआती बढ़त मिलने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और बढ़ गया और टीम लगातार कोरियाई रक्षा पंक्ति पर दबाव बनाती रही। भारत के लगातार आक्रमणों का फायदा 16वें मिनट में मिला, जब कप्तान स्वीटी कुजूर ने एक बेहतरीन फील्ड गोल कर बढ़त को दोगुना कर दिया। पहले हाफ की समाप्ति तक भारत 2-0 से आगे था और मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए हुए था। दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम का आक्रामक खेल जारी रहा। 33वें मिनट में टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर नौशीन नाज ने शानदार फिनिश के साथ भारत के लिए तीसरा गोल दाग दिया। इस गोल के साथ नौशीन ने प्रतियोगिता में अपने गोलों की संख्या 12 तक पहुंचा दी और शीर्ष स्कोरर के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। 3 गोल की बढ़त हासिल करने के बाद भारतीय टीम ने रक्षात्मक मोर्चे पर भी अनुशासित प्रदर्शन किया। भारतीय डिफेंस ने कोरिया को पूरे मैच में कोई बड़ा मौका नहीं दिया और क्लीन शीट बरकरार रखते हुए मुकाबले को 3-0 से अपने नाम कर लिया। मैच में शानदार प्रदर्शन और शुरुआती गोल करने वाली संदीपा कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। इस जीत के साथ भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम ने महिला अंडर 18 एशिया कप 2026 में कांस्य पदक हासिल करते हुए अपना अभियान यादगार अंदाज में समाप्त किया।
1: महिला अंडर 18 टीम जहां कांस्य पदक से सजी है, वहीं भारतीय पुरुष अंडर 18 टीम ने अंडर 18 एशिया कप 2026 में जापान को एक कड़े मुकाबले में 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ग्रुप स्टेज में जापान से 2-4 से हार गया था।
0: रुख करते हैं कुश्ती की तरफ, जहां मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में जारी उलान बटार ओपन में भारतीय पहलवानों ने तीसरे दिन भी अपना अभियान जारी रखा। तीसरे दिन महिला वर्ग के 55, 62, 65, 68 और 76 किलोग्राम भार वर्गों के मुकाबले खेले गए, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल में 74, 86 और 92 किलोग्राम के पहलवानों ने चुनौती पेश की। महिला के 76 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की काजल ने शानदार प्रदर्शन किया। अपने पहले मुकाबले में काजल ने कजाकिस्तान की गुलमराल को 7-1 से हराया। इसके बाद उन्होंने चीन की सहान के खिलाफ भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 12-1 से जीत दर्ज की और अगले दौर में जगह बनाई। वहीं 55 किलो वर्ग में भारत की प्रिया ने मेजबान मंगोलिया की उर्तनासन गन ओचिर को महज 54 सेकंड में 10-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रिया ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और अपने प्रतिद्वंदियों को कोई मौका नहीं दिया। हालांकि 62 किलो वर्ग में भारत की नितिका को बुल्गारिया की बिलियाना डूडोवा के खिलाफ 4-2 से हार का सामना करना पड़ा। नितिका ने दूसरे पीरियड में वापसी की कोशिश की, लेकिन डूडोवा शुरुआती बढ़त को बनाए रखने में सफल रही। पुरुष फ्रीस्टाइल की बात करें तो 74 किलो वर्ग में एशियाई रजत पदक विजेता मुकुल धैया को किर्गिस्तान के मलिक शायाएव के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। मुकाबले में शिवायेव ने तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 10-0 से जीत दर्ज की। इसके अलावा 74 किलोग्राम वर्ग में भी भारतीय पहलवान सागर जगलान ने जयदीप को 7-2 से हराया। सागर ने मुकाबले के दौरान शानदार आक्रामक खेल दिखाया और महत्वपूर्ण अंक जुटाते हुए जीत अपने नाम की। उलान बटार ओपन में भारतीय पहलवानों का अभियान जारी है और आगामी मुकाबलों में भी कई भारतीय खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। अब मुक्केबाजी की खबर, जहां भारतीय मुक्केबाज एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं। विश्व मुक्केबाजी कप 2026 के दूसरे चरण के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। ये प्रतियोगिता 15 जून से 21 जून तक चीन की गुयांग में आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत का 18 सदस्य दल हिस्सा लेगा। भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है और ऐसे में गुयांग में होने वाले विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भी उनसे मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।
1: इसी के साथ आज के खेल खिलाड़ी में बस इतना ही।

0: खेल जगत की ताज़ा खबरों और विशेष रिपोर्टों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे यानी वसीम अहमद, मेरी सहयोगी प्रेरणा शर्मा और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1-5 किलो, 15 और 20 किलो है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmoline, soya bean, sunflower, mustard, groundnut, sesame oil, rice bran, cottonseed and corn oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilogram, 15 kilogram and 20 kilogram. In Madhya Pradesh, both the BJP candidates, Party National General Secretary Tarun Chugh and Rajneesh Agarwal filed their nominations for the Rajya Sabha elections today. The nomination papers were submitted before the returning officer at the Bhopal Assembly. Senior party leaders, Chief Minister Dr. Mohan Yadav, BJP State President Hemant Khandelwal and Minister Kailash Vijayvargiya were among those present on the occasion. The Congress has fielded former Mandsaur MP Meenakshi Natarajan as its candidate. The last date for filing of nominations for three Rajya Sabha seats from Madhya Pradesh is the 8th of June. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. The Foreign Affairs Ministry of Nepal said during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the visit will further strengthen the special partnership between India and Nepal.
2: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people-to-people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
0: Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia today said India's youth are the biggest strength of the country and will play a leading role in realizing the vision of Viksit Bharat by 2047. Addressing the youth for Viksit Bharat, My Bharat Youth Convention in New Delhi, the minister said My Bharat was created by Prime Minister Narendra Modi as a platform for youth to share their aspirations, ideas and volunteer spirit for nation building. Bahrain has said Iran launched ballistic missiles and drones towards it and Kuwait, adding that the projectiles were intercepted. The country's foreign ministry condemned the attacks and called on Iran to immediately halt strikes against its Gulf neighbors. Kuwait's foreign ministry described the attacks as a serious escalation and a blatant violation of the country's sovereignty. The statements were issued hours after the U.S. military announced it had intercepted Iranian ballistic missiles and drones targeting the Strait of Hormuz and Gulf Arab allies. In response, U.S. forces reportedly struck several Iranian coastal surveillance radar sites. In hockey, the Indian men's team has lifted the Under-18 Asia Cup for the third time, thrashing hosts Japan 4-1 in the final in Kakamigahara today. For India, Ashish Purthy starred with a hat-trick as skipper Ketan Kushwaha scored the other goal for the winners. Earlier, the Indian women's team clinched the bronze, beating South Korea 3-0. In cricket, India were 368 for 3 in their first innings against Afghanistan.

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, जैसा आप जानते हैं आज शनिवार है, तो आपको सुनने को मिलेगा आप ही की पसंद पर लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले नीलम बहन अपने बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि देखिए, हम सब काम करते हैं और हम में से बहुत से बहन भाई ऐसे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी और किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में हमें अपने भविष्य के लिए थोड़ा धन भी संचित यानी कि जोड़ते रहना चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में वो काम आ सके। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी ऐसी हैं, उनका लाभ भी लेकर के आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। कभी कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी भरपाई भी योजना के माध्यम से हो जाती है। तो इसी तरह से भारत सरकार समाज के गरीब और कम आय वर्ग के विकास के लिए एक योजना चला रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित और एक अत्यंत किफायती जीवन बीमा योजना है, जिसके तहत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी यानी परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।
1: बिल्कुल शशि भाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक नवीकरण अवधि की बीमा पॉलिसी है जो कि वार्षिक रूप से जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है उस व्यक्ति की आकस्मिक निधन हो जाने पर बीमा कंपनी उसके द्वारा नामित किए हुए नॉमिनी को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देती है। इस बीमा योजना की प्रीमियम दर अन्य बीमा पॉलिसी की तुलना में सबसे कम है। इसके लिए आपको सिर्फ 436 रुपए प्रीमियम देने होते हैं। ये प्रीमियम प्रतिवर्ष के लिए मान्य है, जिसकी समय सीमा 1 जून से 31 मई होती है। आपको नवीन वर्ष में बीमा योजना का प्रीमियम 436 रुपए दोबारा देना होता है।
0: बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि एक साल में आपको 436 रुपए इसमें प्रीमियम के रूप में यानी कि किश्त के रूप में आपको देने होते हैं। इस बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर्म भरकर आवेदन करना होता है और इस योजना में आवेदन करने के 45 दिन के बाद बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम चालू कर दिया जाता है। और कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने पर बीमित व्यक्ति के नामित को उस बैंक या डाकघर में संपर्क करना होता है जहां से पॉलिसी ली गई थी। नॉमिनी के पास प्रमाण पत्र के रूप में मृत्यु प्रमाण पत्र, क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद होना आवश्यक है।
1: बिल्कुल, और इस योजना की पात्रता की बात करें तो 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपका किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना चाहिए और आप अपने बैंक की शाखा में जाकर नेट बैंकिंग के माध्यम से या जन सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर के आवेदन कर सकते हैं।
0: अगर आप आवेदन स्वयं करना नहीं जानते तो आप अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं और इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं चंद्रपाल सिंह जाखड़ बोल रहा जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: रविंदर सिंह को सुनवा दो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: दो चार नाम है जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
2: महेंद्र जाखड़, तेजपाल जाखड़, ओमवीर जाखड़ और विनय चौधरी जी। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: राम राम साहब।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: हवलदार जयप्रकाश, ग्राम पाचाता बुलुंगसर से बोल रहे हैं साहब।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: रविंदर सिंह को सुनवा दीजिए साहब, नाम नोट कर लो
0: जी। कराएं।
3: करण खुशी नंदनी राधिका प्रतिज्ञा। राम राम साहब।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
4: राम राम साहब।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: खुर्जिया उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा।
0: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आज रविंद्र सिंह को सुनना चाहेंगे।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा भी सुनेंगे मेरे साथ।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम सुधार, नमस्ते शशि बाबू।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: डॉक्टर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: रविंदर सिंह को।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार,
6: शशि भाई राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: जितेंद्र सोलंकी, गांव करकोरा, महाराजपुर, जिला बुलंदशहर से बोल रहे हैं जी।
0: जितेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज सुनना चाहेंगे जी रविंदर को। नाम बोलूंगा जी, लकी, संजना, अंशिका, प्रतीक्षा, टिंकल, कन्नू, प्राची। पिताजी हैं श्री मेघराज सिंह सोलंकी, माताजी हैं श्रीमती निर्मला देवी। गांव करकोरा से गजेंद्र प्रधान जी, श्याम चौहान, सतवीर बैद जी, संतोष।
0: हेलो ग्राम संसार।
7: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: जी मैं भूकंप शरण बोल रहा हूँ, अमरोहा जिला, तहसील हसनपुर, गांव तरारा से।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: रविंद्र जी को सुनवा देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
8: हेलो राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
8: मैं गाँव लोहारा, डाक खन्ना, मिलकर सराय जिला, बागपत से मिस्त्री राकेश कुमार बोल रहा जी।
0: राकेश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: रविंदर सिंह को जी। दो नाम और है जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
8: छोटी लड़की अन्नू, बड़ी लड़की सालू, घरवाली सामू, मेरा दोस्त है जी नरेंद्र यादव।
0: हेलो ग्राम संसार।
9: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
9: मैं मांगेराम बोल रहा जी, खेड़ा कुस्तान डिस्ट्रिक्ट।
0: बताइए, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
9: रविंदर जी को सुनवाएंगे।
0: जरूर सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर रविंदर सिंह से ये उपदेश।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहा है?
1: ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर जी।
0: राम शरण जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज सर पूजा शर्मा जी को सुनना चाहेंगे।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
2: शशि भैया नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: पूजा शर्मा को सुना देना, बच्चे हैं जी के साथ प्रयाग पर्यंत।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, बिहार शरीफ जिला नालंदा।
0: अनवर भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: पूजा शर्मा की आवाज में एक लोकगीत सुना दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: हमारे दोस्त हैं शीशपाल अकेला जी और रामनिवास अग्रवाल जी।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: मैं सोनू गांव डोर जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ।
0: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आज सुनना चाहिए बुद्धा शर्मा को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: देखना मैं।
0: हाँ बोल दीजिए।
4: मलबाल माँ से खोटा उठा नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
5: सर जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: सर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी।
0: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: पूजा शर्मा को सुना देना सर जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: बच्चों के नाम है सर?
0: हाँ बोल दीजिए।
5: कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: अशोक कुमार शर्मा, बिठावली खुर्द बुलंदशहर।
0: अशोक भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज सुनूंगा जी पूजा शर्मा को। और नाम कुछ?
0: जी बोल दीजिए।
6: रीशु शर्मा, नीरज शर्मा, लव शर्मा, देव शर्मा, घर शर्मा, किन्नी शर्मा। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
7: भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, विकास त्री गाँव बरहाना जिला।
0: किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: पूजा शर्मा को सुनवा दे रहा हूँ।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
8: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
8: मैं ब्रजपाल बोल रहा हूँ, गाँव राम सावरा जिला सहारनपुर जी।
0: ब्रजपाल भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: पूजा शर्मा को सुना दो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
8: एक नाम लूंगा सर।
0: हाँ बोल दीजिए।
8: बड़े भाई यार, डेडी से बसे सर बटार। राम राम जी।

0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर पूजा शर्मा से ये रागनी। किस्सा रहेगा कृष्ण सुदामा का।
1: रे सारी उमर गई टोटी में,

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: सत्यदेव सागर, ग्राम सरवन्ना, थाना छतारी, जनपद बुलंदशहर से बोल रहा हूँ सर।
0: सागर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: बिदूरी जी की आवाज में कोई रागिनी भजन सुनवाओ।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: दो नाम लेना चाहूंगा, पत्नी संतोष देवी, बेटा शिवदत्त सागर, सुधीर सागर, अंकित सागर।
0: हेलो ग्राम संसार
2: जी। भाई जी, राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: गंगा नए बात से बोल रहा हूँ, घनश्याम।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज सुनवाइए तेज जी को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: दो नाम ले लूं?
0: हाँ बोल दीजिए।
2: मेरी बहन है ज्ञानवती है, और आनंदी है, प्रधान जी है गेंदा, और आकाश पानी को सबको राम राम।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मोहल्ला दौज वाला, शिकारपुर बुलंदशहर से, बबली कुमार प्रजापति बात कर रहा हूँ जी।
0: बबली जी, बताइए आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज हमें तेजवीर बिद्रोही जी की आवाज में अच्छी तरह सुनवा दो।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: और हमारे परिवार का नाम नोट कर लो जी।
0: जी कराएं।
3: पत्नी है पुष्पा देवी, लड़की डॉली कुमारी, लड़का मोनू कुमार, लड़की है पूजा रानी, लड़का छोटा भीम।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं जी डोंगरा हेड जिला महेंद्रगढ़ से पंडित यादराम पटवारी बोल रहा हूँ जी।
0: यादराम जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: जी तेजवीर बिदवड़ी जी के।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार सुशी भाई जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: जयपाल सिंह, ग्राम रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर यूपी से बोल रहा।
0: जयपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: तेजवीर बिदूरी के बोल सुनेंगे जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: और जी चारक नाम है।
0: हाँ बोल दीजिए।
5: एक मेरा पुत्ता है दुष्यंत पवार, पुत्री है श्रद्धा पवार, मिट्टू पवार, मेरी पत्नी है संतोष। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
6: ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
6: बसंत कुमार ठाकुर, ग्राम भिरई, नयापारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से।
0: बसंत भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: तेजवीर।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
7: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं जगदीश चिंडालिया बोल रहा हूँ जी, डाणे जिला भिवानी जी।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: तेजवीर को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: बच्चों के भी नाम है जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
7: राजवीर चिंडालिया, सतीश चिंडालिया, ऋतिक चिंडालिया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर तेजवीर बिदूड़ी से ये रागनी। किस्सा रहेगा सेठ ताराचंद का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731, और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजने को हैं, आपसे कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकाल विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली है और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में आर्थिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो और 15 और 20 किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 2 शतकीय पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानी पूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी

टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम,
0: राम
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, हमारे किसान बहन भाई अपने खेतों से अधिक उत्पादन लेने के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। अब इससे देखिए, फायदा तो कम हो रहा है लेकिन नुकसान ज्यादा हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। वो कैसे? क्योंकि एक तो खेती में इससे लागत बढ़ रही है और साथ ही साथ जो खेत की मिट्टी है, मृदा है, उसका स्वास्थ्य बेकार हो रहा है, जल वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, और जो भी उत्पाद मिलता है हमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उपयोग से, वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है ये हम जानते ही हैं। इसीलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती करने की सलाह जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो किसान भाइयों को दे रहे हैं। हमारे किसान भाई रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती करें ताकि अच्छा उत्पाद सबको मिल सके।
1: बिल्कुल शशि भाई, और भारत सरकार भी इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है और साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भी चला रही है, जिसके अंतर्गत जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और जैविक खेती करने के नए नए तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों के बेतहाशा प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने में जैविक उर्वरक काफी कारगर हैं, तो किसान भाई जैविक खेती करके कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है तो किसानों को जागरूक होकर जैविक खेती करने के तौर तरीकों से भली भांति परिचित होने की।
0: बिल्कुल, जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही आप किसान भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में आप किसान भाइयों को अधिक लाभ होता है, क्योंकि जैविक उत्पाद अधिक मूल्य पर बिकते हैं। और किसान भाइयों, आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती करना बहुत ही जरूरी है। अब किसान भाइयों, जैविक खेती तभी होगी जब आपके पास जैविक खाद होगा, वर्मी कंपोस्ट होगा। अब जैविक खाद कैसे तैयार करें, किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और फिर खेती में इसको कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो खेत की उर्वरा शक्ति है वो अच्छी बनी रहे और खेती में लागत कम आए, तो इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सीमा सागवान जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे जैविक खाद एवं वर्मी कंपोस्ट निर्माण के बारे में। तो डॉक्टर सीमा सांगवान जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जैविक जो खाद है वो क्या है और इसका महत्व क्या है।
2: जैविक खाद वह खाद है जो पौधों एवं पशुओं के अवशेषों, गोबर, फसल अवशेषों तथा अन्य जैविक पदार्थों के अपघटन से तैयार होती है। यह जैविक खाद मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ाती है, मिट्टी की जो जल धारण की क्षमता है उसमें बहुत सुधार करती है, जो मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या को बढ़ाती है और फसलों को एक संतुलित पोषण प्रदान करती है। इसके नियमित प्रयोग के कारण रासायनिक उर्वरकों पर हमारी निर्भरता कम होती है, जिससे आपकी लागत भी कम होगी और टिकाऊ कृषि को एक बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल।

0: बात करें जैसे कि कौन कौन से प्रकार के जैविक खाद उपलब्ध हैं, और जैसा कि आप जानते हैं खरीफ फसलों की बिजाई का समय चल रहा है, तो हमारे किसान भाई किन किन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं?
1: सबसे पहले हमें यही जानने की जरूरत है कि कौन कौन सी जैविक खाद हमारे पास हैं, उपलब्ध होती हैं। अगर बाजार में जाके देखें या घरों में भी, आप इसमें से बहुत सारी खाद हैं जो बना सकते हैं। सबसे पहले आती है गोबर की खाद,
0: जी
1: जो हमारे किसान भाई हैं सबके घरों में पशु होते हैं, जो गोबर निकालते हैं उस गोबर को इकट्ठा करके आप उस गोबर से खाद बना सकते हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी होती है फसलों के लिए और पौधों के लिए। उसके बाद कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है केंचुओं को इस्तेमाल करके। इसी तरह से हरी खाद बनाई जा सकती है, और जैव उर्वरक, जिसका आप सभी ने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा कि जैव उर्वरक, जैसे कि हम अपने पूसा संस्थान में भी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जैव उर्वरक बनाते हैं, वहां एक सेल काउंटर भी है जहां पे ये सब उपलब्ध है। तो ये जितने भी हमारी रासायनिक खाद है उसको हम कहीं ना कहीं उसका बहुत सारा परसेंटेज इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि अगर हम ये जैविक खादें इस्तेमाल करें तो। और अगर खरीफ फसलों की बात करें, ये समय है खरीफ फसलों की बिजाई चल रही है, तो इन खरीफ फसलों में जैसे कि धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द आदि में बुआई से 2-3 सप्ताह पहले अगर उस खेत में आप 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर अच्छे से ये खाद मिला दें, तो इससे फसल की जो प्रारंभिक वृद्धि होगी वही इतनी बेहतर होने लगती है, और वो पोषक तत्व जिसकी उसको जरूरत है, जिसकी वजह से हम रासायनिक अपनी खादें डालते हैं, वो बहुत आसानी से हम इनको इस्तेमाल करके पूरा कर सकते हैं।
0: जैसे कि जैव उर्वरकों की हम बात करें, तो क्या है ये जैव उर्वरक और जैविक खाद की तरह इनका इस्तेमाल होता है?
1: हाँ, जैव उर्वरक भी इसी तरह से हैं, जैसे कि हमारे पास जैव उर्वरक अब हमने स्पेसिफिक बना दिया, जैसे गोबर खाद है उसमें तो एक बहुत सारे तरह के आपको सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे जो वो काम करेंगे, चाहे संतुलित पोषक तत्व देने हैं, कुछ भी देना है उसका काम करेंगे। लेकिन जैव उर्वरक स्पेसिफिक बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास राइजोबियम का कल्चर है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। अगर नाइट्रोजन चाहिए पौधे में तो वो राइजोबियम डाल के आप पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास कल्चर होते हैं, राइजोबियम का है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है। इसी तरह से फॉस्फेट का सोल्यूबलाइजर उपलब्ध है जो फॉस्फेट को घुलनशील बनाता है और वो पौधा आराम से ले लेता है। इसी तरीके से पोटाश के भी घुलनशील जीवाणुओं का एक जैव उर्वरक बनाया गया है। और इन्हीं के साथ साथ माइकोराइजा, शायद हमारे किसान भाइयों ने बहुत नाम सुना होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसकी डिमांड कह लीजिए और उसकी जो जागरूकता है वो इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि माइकोराइजा एक ऐसा बायोफर्टिलाइजर है जो एक किसान को आंखों देखी वो फर्क दिखाता है 30 से 35 दिन के अंदर, क्योंकि ये जड़ों में विकास करता है, जड़ों में अपने आप को स्थापित करता है। उसके बाद वो जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं, वो नींव इतनी मजबूत हो जाती है उस फसल की या उस पौधे की जिसमें वो माइकोराइजा डलता है, कि उसके बाद उसमें वो न्यूट्रिशन जो है, जितना भी पोषक तत्व है जो जमीन में है, जो पौधा वैसे नहीं ले पा रहा था, लेकिन माइकोराइजा डालने के बाद और वो अच्छी जड़ स्थापित होने की वजह से वो बहुत अच्छे से उन पोषक तत्वों को और पानी को भी बहुत आसानी से वो पौधा अपने आप अंदर ले लेता है और उसके पूरे उसमें वृद्धि होती है।
0: बिल्कुल, तो जो हमारे किसान भाई मान लीजिए रासायनिक खादों की जगह जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनको कितना लाभ होता है, लागत में कितनी कमी आती है?
1: अगर देखिए हमारे पास जितने भी जैव उर्वरक हैं वो आपको 25 से लेकर 30% तक भी वो फायदा देते हैं। कि अगर फॉस्फोरस की बात करें, अगर आप माइकोराइजा डालेंगे तो आप 15 से 25% तक फॉस्फोरस जो डीएपी के थ्रू डाल रहे थे उसको कम कर सकते हो। तो इसी तरह से लागत नाइट्रोजन के केस में भी है कि वो भी यूरिया आप कम कर सकते हो इसी तरह से 25 से 30% अगर आप ये राइजोबियम और ये सब इस्तेमाल करेंगे, कल्चर इस्तेमाल करेंगे, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम। इसी तरीके से पोटाश और जिंक सोल्युबलाइजर भी है। और सबसे बड़ी बात कि रासायनिक खाद जो है वो बहुत महंगी है और ये बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि ना तो प्रदूषण होगा इसकी वजह से, ना पर्यावरण में कोई और दिक्कत आएगी, ना जल का प्रदूषण होगा, ना वायु का प्रदूषण होगा, और कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म जीव जब हम दोबारा इनको डालेंगे तो ये और सूक्ष्म जीवों की भी वृद्धि करेंगे और उस जो हमारी मृदा है उसकी उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाएंगे।
0: आपने बात की थी गोबर की खाद की, तो पशुपालन हमारे किसान भाई करते ही करते हैं खेती
1: हाँ।
0: के साथ साथ में, तो जो किसान भाई जैविक खाद के रूप में गोबर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जैविक खाद कितने साल में बन जाता है? किसान भाई अपना इकट्ठा करते रहते हैं गोबर।
1: जैविक खाद सालों में नहीं बनता, इसके लिए दिनों की ही जरूरत होती है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट की बात करेंगे तो ये गोबर की खाद जो है उसका इस्तेमाल करके और इसमें जो अवशेष हैं, जैसे पौधे लगे होते हैं उसकी पत्तियां गिरती हैं, उन पत्तियों का इस्तेमाल करके या जो हमारे किचन में जो वेस्ट आता है उन सबको इकट्ठा करके अगर हम ये खाद बनाना चाहें तो 45 से 60 दिन के अंदर ये बहुत अच्छी खादें तैयार की जा सकती हैं। और इनका थोड़ा सा तरीका अलग अलग है, लेकिन आप उस तरीके को फॉलो करें, जो कि बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कोई ऐसा तरीका नहीं, बहुत सिंपल तरीके हैं। कोई भी किसान भाई या जो युवा हैं वो कोई भी इसको पढ़ के आसानी से अपने घरों में तैयार कर सकते हैं।

0: तो जैसे आपने बताया वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, तो इसके लिए कुछ यंत्र की आवश्यकता होती है?
1: यंत्र की आवश्यकता नहीं है इसमें, सिर्फ आपको एक केंचुआ होता है जो एक स्पेसिफिक स्पीशीज होती है जिसे एसिना फाइटिडा के नाम से जाना जाता है, और केंचुआ खाद बनाने के लिए जो ये केंचुआ इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले अगर वर्मी कम्पोस्ट किसी को बनाना है घर पे, तो वो सबसे पहले क्या करे कि छायादार स्थान पर ईंटों या सीमेंट की सहायता से एक बेड बनाए पहले, और उस बेड के अंदर सूखी पत्तियां, फसल अवशेष या घरों में जो हमारी रसोई का अवशेष है और आंशिक रूप से सड़ा हुआ जो गोबर है, उनकी परतें बनाई जाती हैं, परत उसको भरा जाता है, और नमी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी किया जाता है, और फिर उसमें केंचुओं को छोड़ दिया जाता है, और फिर उस बेड को हम बोरी से या किसी घास के उससे परत से ढक देते हैं, और उसके बाद जब बीच बीच में उसको ऊपर नीचे उसको घुमाते हैं ताकि वो जो वायु है वो उसमें ऑक्सीजन अच्छे से चली जाए और वो जो बन रहा है वो अच्छे से बनता रहे, और 45 से 60 दिनों के अंतर वो वर्मी कंपोस्ट की तरह तैयार होता है। इस तैयार खाद को छानकर अलग किया जाता है और केचुओं को पुनः दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं हम अगली खाद बनाने के लिए। तो ये भूरे रंग की दानेदार खाद की तरह तैयार होती है जो कि बहुत ही लाभकारी है हमारी फसलों के लिए और पौधों के लिए।
0: तो जो भी हमारे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो खासकर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है?
1: देखिए, सबसे पहले तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से अगर सोचेंगे तो इसमें एक जीवित चीज है केंचुआ। अगर वो केंचुआ बहुत ही ज्यादा गर्मी अगर वहां हो जाए तो भी वो मर जाते हैं, ज्यादा पानी भर जाए तो भी मर जाते हैं। तो सबसे पहले गर्मी और पानी का आपको एक संतुलन रखना होगा, और हमेशा ये इकाई हमेशा एक छायादार जगह पे बनानी चाहिए आपको, वहां पे ही रखना चाहिए। बेड में 60 से 70% नमी बनाए रखें, ऐसा ना हो कि पानी ऊपर तक भर जाए या ऐसा जमा होने लगे। और उसके बाद ताजा गोबर, प्लास्टिक, कांच, धातु या रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें गोबर भी जो है थोड़ा सा सड़ा हुआ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव ज्यादा होते हैं, तो ये प्लास्टिक और ये कांच वगैरह उसमें ना हो, और बहुत अत्यधिक गर्मी, धूप और अन्य कीटनाशक जो है वो ना इस पे छिड़के जाएं, क्योंकि केंचुओं को बचाना बहुत आवश्यक होता है, और समय समय पर नमी और तापमान जो कि दो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी आपको जांच करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो वर्मी कंपोस्ट की बात हम कर रहे हैं, तो जो हमारे खासकर युवा साथी हैं और युवा किसान भी हैं, वो चाहते हैं तो अपने खेतों के लिए वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करें, अपने खेतों में उसको इस्तेमाल करें, और दूसरी बात आती है कि निर्माण कर रही हैं तो क्यों ना व्यापारिक स्तर पर निर्माण किया जाए, ताकि हमारे अन्य किसान भाइयों के लिए भी इसका उपयोग लाया जा सके। तो किस तरह से आप रोजगार की दृष्टि से हमारे युवा साथियों को इस क्षेत्र में आने के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की अगर दृष्टि से देखेंगे तो व्यवसाय के रूप में आसानी से अपनाया जा सकता है, क्योंकि एक लाभकारी ग्रामीण उद्यम है। किसान कम लागत में उपलब्ध जो गोबर होता है, कृषि अवशिष्ट होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर से कुछ खरीदना पड़ेगा। एक रॉ मटेरियल हर चीज को, बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है। ये रॉ मटेरियल आपके पास सब कुछ है, आपके पास गोबर खाद है, आपके पास कृषि के अवशिष्ट हैं, उनका उपयोग करके सिर्फ आपको केंचुआ जरूर एक बार खरीदना होगा, वो भी आप एक बार खाद बनने के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। वर्तमान जैविक खेती में वैसे भी प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, वर्मी कंपोस्ट की कहें या और जैव उर्वरकों की मांग कहें, ये बहुत बढ़ रही है। हमारी सरकार भी इसी दिशा में चल रही है, तो इसके साथ साथ वर्मी वॉश और केंचुओं की बिक्री से भी अधिक आय की जा सकती है, कि जैसे आपके पास केंचुए हैं वो भी अपने आप को हर बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बढ़ेंगे, तो उनको भी बेचा जा सकता है जो वर्मी कंपोस्ट में काम आएंगे। तो इस तरह यह रोजगार सृजन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही लाभकारी एक उपाय हो सकता है आय कमाने का।
0: बिल्कुल, क्षेत्र कोई भी हो, कुछ भी हमारे किसान भाई शुरू करना चाहते हैं, बात हम वर्मी कंपोस्ट निर्माण की कर रहे हैं, तो कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी इसकी चलती है ताकि वो सीख करके अपना जो खुद का प्लांट लगा सकें और वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर सकें?
1: जी हाँ, कंपोस्ट की ट्रेनिंग, फार्मयार्ड मैन्योर की ट्रेनिंग और वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग है, ये आप ICR के इंस्टीट्यूट्स में कहीं पे भी देखेंगे, वो बहुत आसानी से आपको कहीं ना कहीं वो विकल्प मिल जाएंगे। नई दिल्ली में भी ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो हमारे किसान भाई आकर देख भी सकते हैं और पता भी कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब तैयार किया जाता है। उनको वो पिट्स दिखाई जाएंगी, किस तरह से बेड तैयार होते हैं, किस तरह से वो जब खाद बन जाती है तो उसकी क्वालिटी को कैसे टेस्ट कर पाएंगे, थोड़ा सा कि देख के कि कैसी वो खाद आपकी अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, तो वो सारे मापदंड उनको वो सब सिखाया जाता है, सब दिखाया जाता है।
0: डॉक्टर सीमा सांगवान जी, इन दिनों भारत सरकार का खेती बचाओ अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत संतुलित उर्वरक प्रबंधन की बात की जा रही है, तो इसमें जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है?
1: जी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये जो हमारा अभियान है हमारे मिनिस्टर साहब ने चलाया

0: में अगर मेन बात करें तो सबसे पहले हम सॉयल टेस्टिंग की बात उनको समझाते हैं कि जिस तरह से एक शरीर को चेक किया जाता है कि उसमें किस चीज की कमी है, उसके हिसाब से उसको वो पोषक तत्व दिया जाए, इसी तरह से हमारे किसान भाइयों को भी हम इस अभियान के जरिए यही समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो अपनी मृदा का चेकअप कराएं, समझें कि उसमें किस चीज की जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें पहले से पूर्ति है, लेकिन हम ऊपर से बिना जानकारी के उसको डाले जा रहे हैं, जो कि जमीन में नीचे जा रहा है या फिर वो पानी में घुल के हमारी नदियों में मिक्स हो रहा है, जो कि हमारी पशु भी पीते हैं और हम लोग भी शायद पीते हैं। तो वो रसायन जो है वो हमारे शरीर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आता है। तो उसकी बजाय सबसे पहले हमें सॉइल टेस्ट कराना चाहिए, अपनी मृदा का टेस्ट कराओ, उसमें ये समझो कि किस चीज की पूर्ति करनी है और उसके हिसाब से जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करो, उनका चयन करो और उनको डालो। क्योंकि जितना जैव उर्वरक इस्तेमाल करेंगे उतनी ही जो पोषक तत्व है और मृदा की शक्ति है वो उतनी ही बढ़ती रहेगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर सीमा सांगवान जी, हमारे किसान भाई जरूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनके खेत की मृदा स्वस्थ रहे और स्वस्थ अच्छा उत्पादन मिल सके, ताकि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, अपने देश का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। डॉक्टर सीमा सांगवान जी, कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब किसान बहन भाइयों, आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं मूलचंद शर्मा।
2: अरे मोहोश।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे उपदेश और कलाकार थे मूलचंद शर्मा।
1: नीलम बहन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन यानी कि MIDH भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और औषधीय पौधों की खेती में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना है।
0: बिल्कुल, और इस मिशन का उद्देश्य बागवानी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है, और फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं विकसित करना है, और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर युवाओं के लिए बागवानी और प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
1: बिल्कुल नीलम बहन, इस मिशन में केंद्र सरकार की 5 प्रमुख योजनाओं को एकीकृत किया गया है, जिसमें पहली योजना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जो पूरे देश में बागवानी के विकास के लिए काम करती है। दूसरी योजना है पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, जो दुर्गम और पहाड़ी इलाकों के लिए काम करती है। तीसरी है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, जो व्यावसायिक बागवानी और कोल्ड स्टोरेज के लिए काम करती है। चौथी है नारियल विकास बोर्ड, जो नारियल की खेती और उत्पाद के लिए काम करती है। और पांचवी है केंद्रीय बागवानी संस्थान, जो नागालैंड में स्थित संस्थान द्वारा क्षमता निर्माण के लिए काम करती है।
0: बिल्कुल, और इस मिशन के तहत वित्तीय सहायता की अगर बात करें तो सामान्य राज्यों में कुल लागत का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती है।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा स्टोरेज और कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में 35% और उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों में 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो आपने जाना एकीकृत बागवानी विकास मिशन यानी कि MIDH के बारे में, और अब नीलम बहन समय हो चला है कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न किया जाए। लेकिन कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात

819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 और ठीक 10 सेकंड्स हुए हैं और हमारे श्रोता जानते हैं कि ये समय होता है आपको चुनिंदा गजलें सुनवाने का। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं पंकज उधास साहब की इस गजल के साथ।

और अब कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले ताई की आवाज़ में सलोनी सी ये गज़ल।

श्रोताओं, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, देश का युवा विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने पिंक स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप का शुभारंभ किया। और भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सम्मेलन देश की युवाओं की आकांक्षाओं, रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि युवा कड़ी मेहनत, इनोवेशन और समर्पण के जरिए देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
2: आज का ये प्रोग्राम शानदार है और ये कह रहा है कि देश का युवा देश की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ये भारत को आगे बढ़ाने की, नई ऊंचाइयों को छूने की ये जिम्मेदारी आज हमारा युवा ले रहा है। भारत का युवा मेहनती भी है, विजनरी भी है, क्रिएटिव भी है और साहसी भी है। देश के हर मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में देश के खड़ा है।
0: कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के सदस्य मैथिली ठाकुर, उद्यमी अमन गुप्ता, अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ साथ कई कंटेंट क्रिएटर्स और खिलाड़ी उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित नियमों के अंतर्गत स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा से विधायक विजेन्द्र गुप्ता ने आज अपने विधानसभा के सेक्टर 18 और सेक्टर 9 में पिंक स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप का शुभारंभ किया। श्री गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस कैंप के माध्यम से महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड वितरित किए जाएंगे। श्री गुप्ता ने विनोबा कुंज कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारी को उनके जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि भगवान श्री बिरसा मुंडा का भारत के इतिहास में एक विशिष्ट और प्रेरणादायी स्थान है। श्री गुप्ता ने कहा कि धरती आबा के रूप में पूजनीय बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जागरण के प्रतीक थे। उन्होंने यह बात आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी भगवान श्री बिरसा मुंडा जनजातीय भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और संग्रहालयों में उनके प्रतिनिधित्व के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। एक रिपोर्ट।
3: अपने संबोधन में श्री

0: गुप्ता ने कहा कि बिरसा मुंडा का आंदोलन केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक संस्थाओं और स्वदेशी जीवन पद्धति की रक्षा का एक सशक्त प्रयास भी था। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब जनजाति समुदाय आर्थिक शोषण, सामाजिक विघटन और परंपराओं के शरण का सामना कर रहे थे, बिरसा मुंडा ने उनमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना का नया संचार किया। जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने, जनजाति गौरव दिवस मनाने और जनजातीय धरोहर के दस्तावेजीकरण के प्रयासों का स्वागत करते हुए श्री गुप्ता ने इन्हें भारत के इतिहास की अधिक समावेशी समझ विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। संग्रहालयों की भूमिका पर बल देते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि संग्रहालय जिन कथाओं को प्रस्तुत करते हैं वे यह निर्धारित करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां अपने राष्ट्र, अपने इतिहास और स्वयं को किस प्रकार समझेंगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संग्रहालयों में जनजाति समुदायों के अनुभवों, आकांक्षाओं, ज्ञान परंपराओं, सृजनात्मकता और राष्ट्रीय जीवन में योगदान को भी सार्थक रूप से प्रतिबिंब करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं की रोजगार के अवसर बढ़ाने और उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रमुख आधार बताया तथा युवाओं के लिए अवसर सृजित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। इससे पहले श्री संधू ने मोहाली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आयोजित एक कार्यक्रम में व्यवसायियों से बातचीत की। दिल्ली के मंत्री और राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सरसा ने आज रघुवीर नगर क्षेत्र का जायजा लिया और स्थानीय निवासियों से बातचीत की। श्री सरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने लोगों से विभिन्न मुद्दों तथा उनकी समस्याओं पर बात की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने श्री सरसा से सड़कों की स्थिति, नालियों की सफाई, पानी की लाइनों और सीवेज से जुड़े समस्याओं की जानकारी दी। वहीं श्री सरसा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की देरी न किए जाने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां आयोजित चिकित्सकों के कार्यक्रम में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात कर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर दिन रात समर्पण और सेवा भाव के साथ लोगों की देखभाल करते हैं, साथ ही उनका योगदान केवल इलाज तक सीमित नहीं है बल्कि समाज को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज ने आज नरेला बवाना रोड स्थित दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्थापित एनएबी व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। श्री इंद्राज ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दृष्टि बाधित जनों के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता तथा जीवन की सुख सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में यह केंद्र एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से कौशल विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री इंद्राज ने कहा कि दिव्यांगजन कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार कल प्रकाश विहार शाहबाद एक्सटेंशन में लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों और नालियों के विकास कार्यों का शिलान्यास करेगी। बवाना विधानसभा से विधायक रविन्द्र इंद्राज सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। इस अवसर पर श्री इंद्राज ने कहा कि बवाना विधानसभा में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज स्वामी दयानंद अस्पताल में नवनिर्मित उन्नत ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: श्री प्रवेश वाही ने अस्पताल में लगभग 1,70,00,000 रुपए की लागत से स्थापित दो अत्याधुनिक 4K लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सिस्टम और आर्थोपेडिक तथा 35,00,000 रुपए की लागत वाली ट्रॉमा सर्जरी के लिए आवश्यक सी आर्म मशीन का भी लोकार्पण किया। इन आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से अस्पताल में मरीजों को उच्च गुणवत्ता की सुरक्षित और सटीक सर्जिकल सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर महापौर श्री वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम का लक्ष्य नागरिकों को बेहतर, सुलभ और आधुनिक

0: स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। वहीं स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का समावेश समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध होगा और अस्पताल की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: दिल्ली के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के उपलक्ष में गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत किया गया। निरीक्षण के दौरान अन्य जनप्रतिनिधियों ने लैंडफिल साइट पर चल रहे बायो माइनिंग, कचरा निस्तारण, पर्यावरणीय सुधार तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों ने उन्हें साइट पर संचालित गतिविधियों, कचरा प्रसंस्करण की वर्तमान स्थिति और भविष्य के कार्य योजना की जानकारी दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइयों को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए थे। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक नए शिशु सदन केंद्र का उद्घाटन किया। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल अधिक समावेशी और काम के लिए जन केंद्रित माहौल को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लगभग 600 वर्ग मीटर में यह केंद्र बच्चों को एक अनुकूल, सुरक्षित और पोषक वातावरण प्रदान करेगा। यहां बच्चों को सीखने, खेलने, आराम करने के साथ साथ उनके विकास की भी सभी सुविधाएं मिलेंगी। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में प्रज्ञाना नंदा ने वीसेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। वह इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस जीत पर उन्हें बधाई दी। राजधानी में आज पूरे दिन धूप रहने के साथ साथ हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, देश का युवा विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। केंद्र सरकार ने कानून माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पिंक स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप का शुभारंभ किया और भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बधाई दी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, वक्त रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मुशायरा।
1: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, यूं तो हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात की शुरुआत 1936 से पहले हो चुकी थी, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो का बाजाब्ता क़याम 8 जून 1936 में अमल में आया, जिसके 90 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की शानदार रिवायात रही हैं। मौसीकी का प्रोग्राम हो या नौजवानों का प्रोग्राम, या बराह रास्त कमेंट्री हो या फिर किसी हिंदुस्तानी जबान का अदब हो, सब ने अपनी एक अलग पहचान कायम की है। इन्हीं रिवायात में एक रिवायत आकाशवाणी से नशर होने वाले मुशायरों की भी रही है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों का कलाम यहाँ से नशर किया जाता रहा है। इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी के स्टूडियो में एक मुशायरे का अहतमाम किया गया, जिसमें शायरी के शायकीन ने भी शिरकत की। ये मुशायरा ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिद किया गया। आइए सुनते हैं उसी मुशायरे का पहला हिस्सा। निजामत के फराइज जनाब मुइन शादाब अंजाम दे रहे हैं।
2: आज का ये जश्न जो आकाशवाणी के 90 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिद किया जा रहा है, किसी इदारे का जश्न नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी का, बल्कि पूरी दुनिया का जो मास मीडिया है और जिस तरह से सकाफत को बचाने की जो कोशिशें दुनिया भर में हो सकती हैं या कौमी यकजहती का जो पैगाम हो सकता है, आज का ये प्रोग्राम उन तमाम चीज़ों का जश्न है। तो आइए हम गुजारिश करें कि जहां आकर हमें ये लगता है कि तंजो मिजाह का वो सफ़र, अगर हम मुशायरों के हवाले से और उसके वक़ार के हवाले से बात करें जो दिलावर फिगार और नाजिद खयामी और सागर खयामी से होता हुआ हम तक पहुंचा था, कि वो सफ़र ठहर गया है पॉपुलर मेरिटी पे आके। तो मैं जनाब पॉपुलर मेरिटी साहब से गुजारिश करता हूँ, आप पुरजोर इस्तकबाल कीजिए जनाब डॉक्टर पॉपुलर मेरिटी।
3: शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए, गजल के चंद अशआर हाजिर कर रहा हूँ। समाज फरमाइए कि बने हो जो रहबर वगैरह वगैरह, बने हो जो रहबर वगैरह
2: वगैरह,
3: है शोहरत का चक्कर वगैरह वगैरह, और गलत कह रहे हो कि होंगे बराबर, गलत कह रहे हो कि होंगे बराबर वसीम और जौहर वगैरह वगैरह, गलत कह रहे हो कि होंगे बराबर वसीम और जौहर वगैरह वगैरह, और गले सावनी रुत में मिलने लगे हैं, गले सावनी रुत में मिलने लगे हैं नदी और समंदर
2: वगैरह वगैरह,
3: नदी और समंदर वगैरह वगैरह, दिखाती है अब तो नई शायरा भी, दिखाती है अब तो नई शायरा भी तरन्नुम का जौहर, सदाए ये उठी मेरे शेर सुनकर मुकर्रर तकर्रर वगैरह वगैरह, मुकर्रर तकर्रर वगैरह वगैरह, और जहाँ देखिए आज टकरा रहे हैं, जहाँ देखिए
2: आज टकरा रहे हैं
3: मोहन्नस मुजक्कर
2: वगैरह वगैरह,
3: जहाँ देखिए यहाँ देखिए आज टकरा रहे हैं मोहन्नस मुजक्कर वगैरह वगैरह, और देखिए कि सभी एक सफ में नजर आ रहे हैं। शेर देखिए नमन भाई, कि सभी एक सफ में नजर आ रहे हैं गवैये सुकनवर
2: वगैरह वगैरह,
3: सभी एक सफ में नजर आ रहे हैं गवैये सुकनवर
2: वगैरह
3: वगैरह वगैरह, तरन्नुम के मारो हुओं को खिलाओ दही और शक्कर वगैरह वगैरह, और देखें कि अदब में बाहर दौर जिंदा रहेंगे जिगर और असगर
2: वगैरह वगैरह,
3: जिगर और असगर वगैरह वगैरह, और मियाँ पॉपुलर तोड़कर फेंक भी दो ये मीना ये सागर वगैरह वगैरह, ये मीना ये सागर वगैरह वगैरह। और देखिए गजल के चंद अशआर और देखें कि पासबां तो रख ही देता सर हमारा तोड़कर, पासबां तो रख ही देता सर हमारा तोड़कर, रख न देते हम अगर जालिम का डंडा तोड़कर, रख न देते हम अगर जालिम का डंडा तोड़कर, और शेर देखिए कि जज्बे इंसानियत से अपना रिश्ता तोड़कर, जज्बे इंसानियत से अपना रिश्ता तोड़कर, डाकुओं क्या मिल गया शायर का जबड़ा तोड़कर, जज्बे इंसानियत से अपना रिश्ता तोड़कर
2: क्या मिल गया
3: शायर का जबड़ा तोड़कर, और कुछ

0: ना हाथ आया तो फिर उतना ही रंजीदा हुआ, कुछ ना हाथ आया तो फिर उतना ही रंजीदा हुआ, चोर जितना खुश था मेरे घर का ताला तोड़ कर। कुछ ना हाथ आया तो फिर उतना ही रंजीदा हुआ, चोर जितना खुश था मेरे घर का ताला तोड़कर, और देखता बीवी को था और सास आती थी नजर। देखता आदिल भाई, देखता बीवी को था और सास आती थी नजर। रख दिया झुंझला के मैंने अपना चश्मा तोड़कर, रख दिया झुंझला के मैंने अपना चश्मा तोड़कर, और तेरे इंजेक्शन से मेरा हाल पतला हो गया। अब तो ये डॉक्टर जैसे हो इसका तोड़कर।
1: फिर पढ़िए।
0: तेरे इंजेक्शन से मेरा हाल पतला हो गया, अब तू ही है डॉक्टर जैसे हो इसका तोड़ कर।
1: इसका तोड़ कर, हाँ।
0: इनके शेर देखिए कि क्या कहूँ तुमसे सुलूक अपने किराएदार का, घर से निकला भी तो जालिम घर का जीना तोड़ कर। क्या कहूँ तुमसे सुलूक अपने किराएदार का, घर से निकला भी तो जालिम घर का जीना तोड़ कर। और पॉपुलर मैंने कहा था उससे मत अंगड़ाई ले, क्या मिला उसको बताओ घर का शीशा तोड़कर, क्या मिला उसको बताओ घर का शीशा तोड़कर। और एक गजल के चंद अशआर और देखिए कि एक बीवी कई साले हैं, एक बीवी कई साले हैं, खुदा खैर करे खाल सब खींचने वाले हैं, खुदा खैर करे खाल सब खींचने वाले हैं, खुदा खैर करे मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, उनके भी होंठों पे ताले हैं,
1: खुदा खैर करे,
0: खुदा खैर करे उनके भी होंठों पे ताले हैं, खुदा खैर करे। और पूछे यार का तय होगा सफर अब कैसे, पाँव में छाले ही छाले हैं,
1: खुदा खैर करे
0: पाँव में छाले ही छाले हैं, खुदा खैर करे। और शेर देखें कि क्या ताज्जुब है किसी रोज हमें भी डस ले, सांप कुछ हमने भी पाले हैं,
1: खुदा खैर करे, वाह वाह वाह,
0: क्या ताज्जुब है किसी रोज हमें भी डस ले, सांप कुछ हमने भी पाले हैं, खुदा खैर करे। और ऐसी तब्दीली तो हमने देखी ना कभी, अब अंधेरे ना उजाले हैं,
1: खुदा खैर करे,
0: अब अंधेरे ना उजाले हैं, खुदा खैर करे। और तन के वो उजले नजर आते हैं जितने यारो, मन के वो उतने ही काले हैं,
1: खुदा खैर करे,
0: मन के वो उतने ही काले हैं, खुदा खैर करे। हर वरक पर है छपी गैर मोहज्जब तस्वीर, कितने बेहुदा रिसाले हैं,
1: खुदा खैर करे।
0: हर वरक पर है छपी गैर मोहज्जब तस्वीर, कितने बेहुदा रिसाले हैं, खुदा खैर करे। कितने बेहुदा रिसाले हैं, खुदा खैर करे। आइए फिर कुछ खतात। फनकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। और बेगम कहोगे हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। और फूलते जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी, तुम मुझे मेरी शबनम। फूलते जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और ये है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, ये है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी। मुझे नाद अपने फन पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी, मुझे नाद अपने फन पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। सच है कि आदमी की है इज्जत खुदा के हाथ, पछताए मेरे घर में जरा सा बड़ा के हाथ, चार ईंटें उनके कांधे पे एक साथ गिर पड़ी, अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ।
1: बहुत शुक्रिया जनाब पॉपुलर मेरठी साहब। आइए हजरात एक और बड़ा अहम नाम उर्दू शायरी के जो चंद मुनफरिद लहजे हो सकते हैं उसमें उन साहब का नाम शामिल है हमारे मोहतरम शायर जिनको मैं आवाज़ देता हूँ। पहले उनके कुछ शेर सुनाता हूँ। हर घर में कोई तहखाना होता है, हर घर में कोई तहखाना होता है, तहखाने में एक अफसाना होता है, नाखून की बेचैनी बढ़ती जाती है जैसे जैसे जख्म पुराना होता है। और क्या शेर कहा है कि आसानी से राह नहीं बनती कोई, दीवारों से सर टकराना होता है। तो दीवारों से सर टकराने वाला शायर और तहों में उतरने वाला शायर तहखानों की, जिसे हम आलम खुर्शीद के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। आलम खुर्शीद साहब,
2: बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब समाप्त फरमाएं कि रास्ते में तेरे फूल बिछाने थे

0: बिछाए।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: रास्ते में तेरे फूल बिछाने थे बिछाए, आंखों में हंसी ख्वाब सजाने थे सजाए। रास्ते में तेरे फूल बिछाने थे बिछाए, आंखों में हंसी ख्वाब सजाने थे सजाए। और 100 काम जरूरी थे ना आना था ना आया, 100 काम जरूरी थे ना आना था ना आया, उसको तो बहाने ही बनाने थे। कि 100 काम जरूरी थे ना आना था ना आया, उसको तो बहाने ही बनाने थे बनाए। और वादे पे हमें उसके भरोसा ही कहाँ था,
1: वादे पे हमें उसके भरोसा ही कहाँ था। वाह वाह वाह।
0: वादे पे हमें उसके भरोसा ही कहाँ था, हमको भी कहीं रंग जमाने थे
1: जमाए।
0: वादे पे हमें उसके भरोसा ही कहाँ था,
1: वाह वाह वाह,
0: हमको भी कहीं रंग जमाने थे जमाए। होना था पशेमा ही पशेमान हुआ वो,
1: वाह।
0: होना था पशेमा ही
1: पशेमान हुआ वो,
0: पशेमान हुआ वो, हमको भी जरा अश्क बहाने थे बहाए। होना था पशेमा पशेमान हुआ वो, और हमको भी जरा अश्क बहाने थे बहाए। और हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई।
1: मैं वाह वाह वाह वाह वाह। हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई,
0: हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई, उसको भी फसाने ही सुनाने थे।
1: वाह वाह वाह।
0: हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई, और उसको भी फसाने ही सुनाने थे सुनाए।
1: वाह।
0: और फिर उसकी गली में ही भटकना था सो भटके, फिर उसकी गली में ही भटकना था सो भटके, गुजरे हुए लम्हे हमें याद आने थे। फिर उसकी गली में ही भटकना था सो भटके, गुजरे हुए लम्हे हमें याद आने थे आए। और जो अहले मोहब्बत थे रहे दिल में हमेशा,
1: वाह वाह वाह वाह।
0: जो अहले मोहब्बत थे रहे दिल में हमेशा, जो गैर जरूरी थे बुलाने थे बुलाए। जो अहले मोहब्बत थे रहे दिल में हमेशा, जो गैर जरूरी थे बुलाने थे बुलाए। रास्ते में तेरे फूल बिछाने थे बिछाए, आंखों में हंसी ख्वाब सजाने थे सजाए।
1: वाह वाह वाह।
0: एक दूसरी गजल देखें। कहा कि मिलने आई थी सलाम करने आई थी,
1: क्या अच्छा मिसरा है। वाह वाह वाह वाह।
0: कहा कि मिलने आई थी
1: सलाम करने आई थी,
0: सलाम करने आई थी, जो एक रात शहर में कयाम करने आई थी।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: कहा कि मिलने आई थी सलाम करने आई थी, जो एक रात शहर में
1: कयाम करने आई,
0: कयाम करने आई थी, और जो ना तमाम रह गया था बाब एक किताब का।
1: वाह।
0: जो ना तमाम रह गया था बाब एक किताब का, उसे किसी तरह भी वो तमाम करने आई थी।
1: वाह।
0: जो ना तमाम रह गया था बाब एक किताब का, उसे किसी तरह भी वो तमाम करने आई थी। और खुला के बीच राह में, खुला के बीच राह में कहीं पे रुक गए थे हम।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: खुला के बीच राह में कहीं पे रुक गए थे हम, उसी जगह सफर को इख्तिताम करने आई थी।
1: वाह।
0: और वो फड़फड़ा के उड़ गई मोहब्बतों की कैद से, वो फड़फड़ा के उड़ गई मोहब्बतों की कैद से, किसी नए परिंद को गुलाम कर

0: थी। और खुशी तो सब समेट कर वो अपने साथ ले गई,
1: खुशी तो सब समेट कर वो अपने साथ ले गई।
0: खुशी तो सब समेट कर वो अपने साथ ले गई, बचे हुए गमों को मेरे नाम करने आई थी।
1: वाह
0: खुशी तो सब समेट कर वो अपने साथ ले गई, बचे हुए गमों को मेरे नाम करने आई थी। और सलाम और कलाम से भला उसे गरज थी क्या,
1: वाह, सलाम और कलाम से भला उसे
0: कि
1: गरज थी क्या।
0: सलाम और कलाम से भला उसे गरज थी क्या, उसे बहुत से काम थे वो काम करने आई
1: वाह
0: थी। और
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: सलाम और कलाम से उसे भला गरज थी क्या,
1: वाह
0: उसे बहुत से काम थे वो काम करने आई थी।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जनाब आलम खुर्शीद साहब। और गजल जो जिसमें उन्होंने जिक्र किया आई थी, हम लड़की समझते रहे, लेकिन वो कभी जिंदगी थी, कभी खुशी थी, कभी तन्हाई थी। ये शायर का फन होता है। मुझसे भी किसी ने पूछा था बशीर बद्र के बाद किसको देख रहे हैं आप, तो मैंने दो चार नाम लिए थे उसमें, नुमान शौक साहब का नाम भी लिया और आलम खुर्शीद साहब का जिक्र किया और भी बहुत से लोगों का। तो आइए अभी कहानी सुनी जाए, और इस कहानी का नाम है नुमान शौक। और एक जुमला कहने की और इजाजत चाहूंगा कि नुमान शौक साहब सिर्फ शख्स नहीं बल्कि एक जज्बे का नाम है।
2: बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ दो गजलें सुनाऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक दूसरी गजल जो होगी वो सिर्फ रेडियो के 40 साल पे होगी। पहली गजल के कुछ अशआर मैं आपकी नजर कर रहा हूं। अर्ज किया है कि रौनक लाएं अपने अपने चेहरों पर, रौनक
1: वाह,
2: लाएं
1: अपने अपने चेहरों
2: अपने
1: पर,
2: अपने चेहरों पर, रंगत जाने कब आएगी फूलों पर। रौनक
1: आहा, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: लाएं अपने अपने चेहरों पर,
1: आहा,
2: रंगत जाने कब आएगी फूलों पर, मेरी बेशर्मी को दावत देते हो,
1: मेरी बेशर्मी को दावत देते हो,
2: मेरी बेशर्मी को दावत देते हो, सोच लो अपने हाथ न रखना आंखों पर।
1: आहा, वाह वाह वाह
2: मेरी
1: वाह वाह वाह वाह
2: बेशर्मी को दावत देते हो, सोच लो अपने हाथ न रखना आंखों पर। यूं तो तुम भी कल मेरे घर आए थे, यूं तो तुम भी कल मेरे घर आए थे, ओस ज्यादा देर रुकी थी पत्तों पर।
1: क्या कहने हैं भाई, वाह
2: यूं
1: वाह वाह
2: तो
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: नवाजिश, यूं तो तुम भी कल मेरे घर आए
1: भाई
2: थे,
1: क्या कहने, किस सलीके से कहा भाई, वाह वाह वाह वाह वाह वाह
2: यूं
1: वाह
2: तो
1: वाह
2: तुम भी कल मेरे घर आए थे, ओस
1: वाह वाह वाह वाह वाह
2: ज्यादा देर रुकी थी पत्तों पर।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
2: मैं तेरी तस्वीर बनाता रहता हूं, मैं तेरी
1: तस्वीर
2: तस्वीर
1: बनाता रहता
2: बनाता
1: हूँ,
2: रहता हूं जब तक फूल नहीं आ जाते शाखों पर।
1: वाह वाह वाह वाह वाह
2: मैं
1: वाह वाह,
2: तेरी तस्वीर बनाता रहता हूं,
1: भाई क्या कहने हैं,
2: मैं तेरी तस्वीर बनाता रहता हूं जब तक फूल नहीं आ जाते शाखों पर। अच्छा कोई ख्वाब लगे तो बतलाना,
1: अच्छा कोई ख्वाब लगे तो बतलाना,
2: अच्छा कोई ख्वाब लगे तो बतलाना, इतने बोसे रखाया हूं पलकों पर।
1: वाह
2: अच्छा
1: भाई वाह
2: कोई
1: वाह वाह
2: ख्वाब
1: वाह वाह
2: लगे,
1: वाह, इतने
2: अच्छा कोई ख्वाब लगे तो बतलाना,
1: बोसे रखाया
2: इतने
1: हूँ,
2: बोसे
1: वाह वाह
2: रखाया
1: वाह
2: हूं
1: वाह,
2: पलकों पर। अच्छा कोई ख्वाब लगे तो बतलाना,
1: क्या कहने,
2: इतने बोसे रखाया हूं पलकों पर। और मेरी कश्ती
1: हाँ
2: में है तेरे पांव की रेत, मेरी कश्ती में है तेरे पांव
1: पांव
2: की
1: की रेत,
2: रेत, मौज में उड़ती होगी पागल लहरों पर।
1: वाह वाह वाह वाह
2: मेरी
1: वाह वाह
2: कश्ती
1: वाह
2: में है तेरे पांव की रेत, मौज में उड़ती होगी पागल लहरों पर। और इस गजल का आखिरी शेर है कि ताजमहल पर सिर्फ मोहब्बत लिखा है, ताजमहल
1: अच्छा,
2: पर
1: सिर्फ मोहब्बत लिखा
2: सिर्फ
1: है,
2: मोहब्बत लिखा है, नाम खुदे हैं जाने क्या क्या महलों पर। ताजमहल
1: भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, अच्छा है भाई,
2: पर,
1: वाह वाह
2: नवाजिश,
1: वाह वाह वाह वाह,
2: ताजमहल पर सिर्फ मोहब्बत लिखा है,
1: नाम लिखे हैं जाने क्या क्या
2: नाम
1: महलों
2: खुदे
1: पर,
2: हैं जाने क्या क्या महलों पर, रौनक लाएं अपने अपने चेहरों पर,
1: वाह वाह वाह वाह,
2: रंगत जाने कब आएगी फूलों पर, मेरी बेशर्मी को दावत देते हो,
1: वाह वाह,
2: सोच लो अपने हाथ न रखना आंखों पर।
1: क्या कहने क्या कहने,
2: और अब जो गजल मैं सुना रहा हूं वो खास तौर से रेडियो के लिए है, उस रेडियो के लिए जिसमें तकरीबन 40-42 साल अलग अलग हैसियतों से मैंने दिए।

0: हम मिले थे होली दिवाली के बीच, रंग था चेहरे पे उसके रोशनी आवाज में।
1: वाह,
0: एक पुल पर हम मिले थे होली दिवाली के बीच, एक पुल पर हम मिले थे होली दिवाली के बीच, रंग था चेहरे पे उसके
2: रोशनी आवाज
0: में। धूप और मैं दोनों में है एक आदत मुश्तरक, धूप और मैं
1: दोनों
0: में है एक आदत मुश्तरक, धूप और मैं दोनों में है एक आदत मुश्तरक, सुबह के रागों को सुनना शबनमी आवाज में, और सुनने वाले देखने वाले सभी थे दमबखुद, सुनने वाले देखने वाले सभी थे दमबखुद, हुस्न में नशा था और जादूगरी आवाज में, सुनने वाले देखने वाले सभी थे दमबखुद, हुस्न में नशा था और जादूगरी आवाज में, और खुदकुशी का सोचकर निकले थे घर से, और वो खुदकुशी का सोचकर निकले थे घर से, और वो छेड़ता जाता था अपनी मनचली आवाज में, खुदकुशी का सोचकर निकले थे घर से, और वो छेड़ता जाता था अपनी मनचली आवाज में।
1: बहुत खूब।
0: इतनी सी पहचान लेकर
1: उम्र भर ढूंढा उसे,
0: चंद तावीजें गले में दिलबरी आवाज में।
1: वाह।
0: इतनी सी पहचान लेकर उम्र भर ढूंढा उसे, चंद तावीजें गले में दिलबरी आवाज में, और जो है उसके साथ वो उसका नहीं बतलाऊं क्या, जो है उसके साथ वो उसका नहीं बतलाऊं क्या, सिर्फ मैं पहचानता हूँ बेरुखी आवाज में, जो है उसके साथ वो उसका नहीं बतलाऊं क्या, सिर्फ मैं पहचानता हूँ बेरुखी आवाज में, ये नया जंगल नई आबो हवा कोयल की कूक, ये नया जंगल नई आबो हवा कोयल की कूक, जहर की तासीर है रस घोलती आवाज में, ये नया जंगल नई आबो हवा कोयल की कूक, जहर की तासीर है रस घोलती आवाज में, और इतनी आवाजों से छलनी है समात का बदन, इतनी आवाजों से छलनी है समात का बदन, मेरी दिलचस्पी नहीं है अब किसी आवाज में, इतनी आवाजों से छलनी है समात का बदन, मेरी दिलचस्पी नहीं है अब किसी आवाज में, और मिल रहे हो आखिरी बार उसको अंदाजा न हो, मिल रहे हो आखिरी बार उसको अंदाजा न हो, हाँ छलकनी चाहिए इतनी खुशी आवाज में, साथ रो सकते नहीं
1: महसूस
0: ही कर लीजिए दर्द लहजे में हमारे बेबसी आवाज में, साथ रो सकते नहीं, साथ रो सकते नहीं, महसूस ही कर लीजिए
1: क्या कहने हैं
0: दर्द लहजे में हमारे बेबसी आवाज में। आखिरी शेर है गजल का कि शायरी है दिल की दीवारों पे सीलन का असर, शायरी है दिल की दीवारों पे सीलन का असर, लाख चाहें छुप नहीं पाती नमी आवाज में।
1: क्या कहने भाई, वाह वाह वाह वाह वाह, तारीख बयान कर दी उन्होंने गजल की जबान में जनाब नौमान शौक साहब। आइए अलीगढ़ से एक ऐसे हम शायर को ज़हमत सुखन देते हैं, इनका ताल्लुक तो रांची झारखंड से है, वहाँ वो प्रोफेसर थे, अब शोबे उर्दू में उनका ट्रांसफर हुआ है अलीगढ़ के। इस्तकबाल कीजिए सरवर साजिद साहब का, प्रोफेसर सरवर साजिद साहब।
3: गजल का मतलब मुलाहजा करें।
1: इरशाद।
3: शौक से आप नई समते सफर में रहिए।
1: आहा, क्या बात है, क्या बात है।
3: शौक से आप
1: नई समते
3: सफर में रहिए, इल्तिजा इतनी है बस हद नजर में रहिए। शौक से आप नई समते सफर में रहिए, इल्तिजा इतनी है बस हद नजर में रहिए। शेर देखिए कि दिल में मंजिल की तमन्ना है तो आगे बढ़िए।
1: आहा, क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह वाह।
3: दिल में मंजिल की तमन्ना है तो आगे बढ़िए, उम्र भर वरना यूं ही राह गुजर में रहिए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
3: दिल में मंजिल की तमन्ना है तो आगे बढ़िए, उम्र भर वरना यूं ही राह गुजर में रहिए। शेर देखिए कि देखिए उनकी ये शो

0: के कहे जाते हैं।
1: आहा, बाबा बाबा बाबा,
0: देखिए उनकी ये
1: ये
0: शोखी
1: कहे जाते
0: के
1: हैं।
0: कहे जाते हैं, हम हैं साहिल पे खड़े, आप भंवर भी
1: हाय
0: लेंगे।
1: हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: देखिए उनकी ये शोखी के कहे जाते हैं,
1: वाह वाह वाह वाह
0: हम हैं
1: वाह,
0: साहिल पे खड़े, आप भंवर में रहिए।
1: वाह।
0: शब गुजर जाएगी, झूठी ही कहानी कहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: शब गुजर जाएगी, झूठी ही कहानी कहिए, ऐसे चुपचाप ना उम्मीदें शहर में रहिए। ऐसे चुपचाप ना
1: क्या
0: उम्मीदें
1: कहने, बाबा
0: शहर में
1: बाबा बाबा
0: रहिए।
1: बाबा,
0: और इश्क के दर्द की मेराज यही है साजिद।
1: इश्क के दर्द की
0: इश्क
1: मेराज
0: के
1: यही है
0: दर्द की
1: साजिद।
0: मेराज यही है साजिद, मोम का जिस्म लिए आग के घर में रहिए।
1: हाँ, वाह
0: मोम
1: वाह
0: का
1: वाह वाह
0: जिस्म
1: वाह वाह
0: लिए
1: वाह वाह वाह,
0: आग
1: अरे
0: के
1: वाह
0: घर
1: वाह
0: में
1: वाह वाह वाह
0: रहिए।
1: वाह वाह,
0: मोम का जिस्म लिए
1: आग के घर में
0: आग के
1: रहिए।
0: घर में रहिए। शौक से आप नई समते सफर में रहिए, इल्तिजा इतनी है बस हद्दे नजर में।
1: वाह वाह वाह वाह
0: दूसरी
1: वाह,
0: गजल का मतलब मुलाहजा करें कि बिछड़े हुओं की फिर से तमन्ना न कीजिए।
1: वाह। बिछड़े हुओं की फिर से तमन्ना न कीजिए,
0: बिछड़े हुओं की फिर से
1: तमन्ना न कीजिए।
0: तमन्ना न कीजिए, बेकार है अब बैठ के रोया न
1: वाह वाह
0: कीजिए।
1: वाह वाह,
0: बेकार है अब बैठ के रोया। सिर्फ देखिए कि मौजों से कीजिए जंग तो कुछ बात भी बने। मौजों से कीजिए जंग तो कुछ बात भी बने, सहरा में गर्क अपना सफीना न कीजिए।
1: वाह वाह वाह
0: मौजों
1: वाह
0: से
1: वाह
0: कीजिए
1: वाह,
0: जंग तो कुछ बात भी बने,
1: बहुत खूब बहुत खूब,
0: सहरा में गर्क अपना सफीना न कीजिए। शेर देखिए कि
1: इरशाद।
0: दो चार दिन के बाद चला जाएगा कहीं।
1: दो चार दिन के बाद चला जाएगा कहीं,
0: दो चार दिन के बाद चला जाएगा कहीं, हर अजनबी परिंद को चाहा न कीजिए।
1: आहा हा,
0: दो चार
1: वाह वाह
0: दिन के
1: वाह वाह वाह
0: बाद
1: वाह वाह वाह,
0: चला जाएगा कहीं, हर अजनबी परिंद को चाहा न कीजिए। मंजिल की जुस्तुजू है तो यकसुई चाहिए। मंजिल की जुस्तुजू है तो यकसुई चाहिए, हर दो कदम पे रास्ते बदला न कीजिए। हर दो कदम पे रास्ते बदला न कीजिए। शेर देखिए कि वाबस्ता कितनी यादें हैं माजी की आंख से।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने सरवर
0: वाबस्ता
1: भाई,
0: कितनी यादें हैं माजी की आंख से, एक मशवरा है आईना देखा न कीजिए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: एक मशवरा है
1: आईना देखा,
0: आईना देखा।
1: बहुत खूब। मोहतरम सरवर साजिद साहब, आपकी इस शायरी के लिए मैं अर्ज कर दूं कि मुशायरा AIR@90 यानी 90 बरस मुकम्मल होने पर यह मुशायरा मुनक्द किया गया। बहुत शुक्रिया।
2: सामईन, अभी आप ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद मुशायरा सुन रहे थे। निज़ामत कर रहे थे जनाब मुईन शादाब। सामईन, इस मुशायरे का बकिया हिस्सा हम 16 तारीख यानी हफ्ते के रोज़ सुनवाएंगे। इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, वक्त रात्रि के 8:30 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और अभी आपने गीत सुना चांदनी चौक टू चाइना फिल्म से शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। इस गीत को लिखा रजत अरोरा ने और संगीत दिया शंकर एहसान लॉय ने। आप जुड़े हुए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और कार्यक्रम है फिल्म संगीत।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म फिजा से सुनिधि चौहान की आवाज़ में। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और कार्यक्रम है फिल्म संगीत का। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 8:40 होने को है। फिलहाल हमें इस आखिरी गीत के साथ आपको छोड़ना होगा यहीं पर, लेकिन मिलेंगे आपसे 11:10 पर लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम

0: शंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार

0: में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरूआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

0: ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Center introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices.

0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपनी इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की मुआशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीजों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रहन सहन में सहूलत और कारोबार करने में सहूलत को और ज्यादा बेहतर बनाने की खातिर मुख्तलिफ असलाहत पर भी गौर किया गया। अरकान ने भारत और दुनिया पर मगरबी एशिया मुहाजराई के असरात के ताल्लुक से अपनी अपनी राय का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज की इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल एक आजादाना इदारा है जो इक्तिसादी और मुतालिका मामलात पर भारत सरकार खास तौर पर वजीर आजम को सलाह देता है। आज की मीटिंग में इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ साथ वजीर आजम के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरियों डॉक्टर पी के मिश्रा और शक्तिकांत दास ने भी शिरकत की। मरकज ने वजन से मुतालिक कानूनी फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल के लिए पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है, जिससे मार्केट में और ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आ सकेगी। सारिफीन के उमूर के महकमे ने मजकूरा फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल और फैट्स के लिए मजमुई मकदार और पैकेट के मयारी साइज का तायुन करने से मुतालिक तरीक़ाकार में तरमीम की है। सारिफीन के उमूर खुराक और तकसीम आमा महकमे की वजारत ने कहा है कि नजरसानी शुदा जब्तों के तहत बड़े खुर्दनी तेलों के लिए पैकेट के मयारी साइज तजवीज किए गए हैं, जिनमें पाम ऑयल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मकई का तेल शामिल है। खुर्दनी तेल के मंजूर शुदा पैकेट 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से लेकर 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम तक के होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने इस हादसे में हलाक होने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जनाब मोदी ने वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका रोड पर एक कुनबे के लोगों को ले जाने वाली एक गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी। इस हादसे में कम से कम 9 अफराद की मौत हुई जबकि 22 जख्मी हो गए। ये लोग अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को दरियाए ब्यास में सुपुर्दे आप करने के लिए जा रहे थे। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि भारत के नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं और ये 2047 तक विकसित भारत के विजन की तकमील में नुमाया रोल अदा करेंगे। नई दिल्ली में यूथ फॉर विकसित भारत माई भारत यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माई भारत की तश्कील के जरिए नौजवानों को अपनी उमंगों, ख्यालात और मुल्क की तामीर के लिए रजाकाराना जज्बे के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। डॉ मांडविया ने कहा कि मुल्क की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस तरह भारत सबसे ज्यादा नौजवान आबादी वाले ममालिक में से एक है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने

0: के बहुत खसूसी ताल्लुकात हैं और उन्होंने कहा कि ये रिश्ते अवाम से अवाम के मजबूत राब्तों, सरहद के दोनों तरफ कनेक्टिविटी और मुश्तरका सकाफती और मजहबी रिवायात की मजबूत बुनियाद पर कायम है। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो उम्मीदवारों, पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कागजात नामजदगी भोपाल असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दाखिल किए गए। कांग्रेस ने मंदसौर की साबिक पार्लिमानी रुकन मीनाक्षी नटराजन को अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर जनाब जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में मुलाजिमीन के बच्चों की देखभाल के लिए एक नई डे केयर सहूलत का इफ्तिताह किया। वजारत के मुताबिक ये इकदाम और ज्यादा शमूलियत वाला, हमदर्दाना और अवाम पर मरकूज काम का माहौल कायम करने के तई एक नुमाया पहल है। तकरीबन 600 मुरबा मीटर में फैले इस मरकज का मकसद एक खुशगवार, महफूज और साजगार माहौल फराहम करना है जहां बच्चे सीखें, खेलें, आराम कर सकें और बेहतर नशोनुमा हासिल कर सकें। ईरान ने आज कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसके बाद खलीज के मुल्कों और अमरीकी फोर्सेज ने तालमेल के साथ फिजाई दिफाई कार्रवाई की। इस तरह मगरबी एशिया के खत्ते में कशीदगी फिर तेजी के साथ बढ़ गई है। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक आबनाए हुरमुज के नजदीक ईरान की साहली निगरानी और रडार तनसीबात पर अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इब्तदाई जायजे से यह इशारा मिलता है कि 6 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया जबकि 7वां मिसाइल अपने निशाने पर नहीं पहुंच सका। अमरीकी फौजी एहलकारों के जानी नुकसान के ताल्लुक से कोई फौरी इत्तला नहीं मिली है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। मगरबी एशिया का तनाजा उस वक्त एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया जब ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। ताहम खलीजी और अमरीकी फजाई दिफाई निजाम ने बेशतर ईरानी मिसाइलों को नाकाम बना दिया जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी ड्रोन सरगर्मियों की इतलात मौसूल होने के बाद अमरीका की जानिब से आबनाए हुरमुस के करीब कैशम जजीरे और गोरख में ईरानी राडार और निगरानी के मरकज को निशाना बनाए जाने के चंद घंटे बाद ये हमले हुए। इन वाकयात ने नाजुक सिफारती कोशिशों को मुतासिर किया है और दुनिया के अहम तरीन तवानाई की गुजरगाहों में से में बहरी हिफाजत के हवाले से खदशात में इजाफा हुआ है। इस दौरान लबनान में अमरीका की हिमायत से होने वाली जंगबंदी को एक और धचका उस वक्त लगा जब इसराइली फजाई हमले में जनूबी लबनान में एक लबनानी फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
1: हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। काकामी गहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 गोल से शिकस्त दी। भारत की तरफ से आशीष पूर्ति ने 3 गोल किए जबकि 1 गोल कप्तान केतन कुशवाहा ने किया। इधर भारत की खवातीन टीम ने जनूबी कोरिया को 3-0 से हराकर कांसे का तमगा जीता। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीतने पर भारतीय मर्दों की टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत और टीम वर्क का मुजाहरा किया और इसके नतीजे में फाइनल में यादगार जीत हासिल हुई। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने कांसे का तमगा जीतने पर 18 साल तक की उम्र की खिलाड़ियों की भारतीय खवातीन टीम को भी मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे शतरंज टाइटल जीतने पर आर प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस शानदार संगे मील से उनकी लगातार उम्दा कारकर्दगी की अक्कासी होती है। वजीर आजम ने उनके मुस्तकबिल के खेल मुकाबलों के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। 19 साला स्वेता श्री भास्कर ने मंगोलिया के शहर उलानबातर में खवातीन की एशियाई इन्फिरादी शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस कामयाबी के साथ ही स्वेता ने 2027 के

फिडे खवातीन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मडगांव में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। आज अहमदाबाद में आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के रोहन त्यादे ने सोने का तमगा जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल मुकाबले में यह कामयाबी हासिल की। आलमी दर्जे के इस योग मुकाबले में भारत अब तक सोने के 6 तमगों समेत मजमुई तौर पर 7 तमगे जीत चुका है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद क्रिकेट टेस्ट के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो कप्तान शुभमन गिल 103 रन पर और ऋषभ पंत 50 रन पर खेल रहे थे। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 81 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल साहली कर्नाटक केरलम और माही में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। उधर शुमाल मशरकी भारत के बेशतर हिस्सों कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों गोवा तमिलनाडु पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल मशरकी राजस्थान और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी पेशगोई की है। दूसरी तरफ साहली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल शदीद गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट्स को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में यह ख्याल है कि ये चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैना तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निजाम के सिंगापुर के मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वो सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। यूक्रेन के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों में आज सुबह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। इस हमले से यह बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खदमात में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबीह भी की थी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इक्तसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता के एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की

0: कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नामांकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थीं। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान

0: है, ना सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
1: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों, तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी की लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता, क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था। तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी। तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी शची रानी गुड्डू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वर्ट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत। यंग था वो मेरी चाचा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के। उसने कहा यार तुम लिखते थे हमारे यहाँ, दिखाओ तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा

0: मैगजीन है, कौन छापेगा, क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने दी, उन्होंने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे। तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करना। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेके वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गया और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया, मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा है। पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूँ लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
0: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती हैं। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं। क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, एक खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं। तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को किसी को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए। बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों इसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है, आपने सहा है तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वो यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान ली कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सकता है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर रहे, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जिस तरह से उसको

0: आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है, उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मक है, जो लिखना है, उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। ये इसका महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है, और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा, ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे, जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है, उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था
3: जी,
4: उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए, और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर, विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य

0: को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है।
1: जी
0: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहां पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र,
1: जी
0: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है।
1: जी
0: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया,
1: जी
0: इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
1: जी, अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
0: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था, और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में, वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों, या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया, और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं, और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है, और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान
1: है
0: वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है।
0: जी,
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर, और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदाजी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी, उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें, तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा, लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है, लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल

0: वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है।
1: जी
0: मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के, आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है,
1: जी
0: उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया, और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हों, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों,
1: जी
0: चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई,
1: जी
0: लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता
1: बिल्कुल
0: हूं,
1: बिल्कुल
0: वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं। तो
1: जी
0: मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए, और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में
1: जी
0: सुने,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं,
1: जी
0: उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता
2: है। सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी। सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन। वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुर्डे जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुर्डे।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुर्डे से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉ विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय

0: अपू को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इन टू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाय हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुर्डे। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: Rishikesh Gangurde आकाशवाणी के ए श्रेणी के गायक कलाकार है। उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है, जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है, और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है, और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing. Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashalkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। ऋषिकेश बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग बिहागड़ा। द विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू 3 ताल। दिस विल बी फॉलोड बाय द्रुत कॉम्पोजिशन इन 3 ताल।

0: यह था राग बिहागड़ा।
1: That was राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवारा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कॉम्पोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुर्डे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में

0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, 2 principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्वागत है आपका आपके फेवरेट प्रोग्राम आपकी फरमाइश में। इसमें हम सुनवाएंगे आपके भेजे हुए फरमाइशी गीत, और फरमाइशी गीत भेजने के लिए आपको हमारा ईमेल आईडी पता है। हमारे पास कई मेल्स आनी भी शुरू हो गई हैं, तो चलिए श्रोताओं, मेल्स लेने से पहले हम सुनवाते हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं, भी आपने गीत सुना और उम्मीद करते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में इस गीत को आपने पसंद किया होगा। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से और कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ और आप पहचान ही गए होंगे आपके अपनी दोस्त चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम का पहला गीत शुरू हो चुका है, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, मेल्स की शुरुआत हो चुकी है। इंतज़ार रहेगा आपके संदेशों का।

हाँ श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने की सुना फिल्म मेरे सनम से। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से और मैं हूँ आपके साथ चेतना। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:25 हो चुके हैं और चलना होगा हमें आपके संदेशों की तरफ। तो चलते हैं संदेशों में। मीरा सिंह जी का हमारे पास संदेश आया है, लिखते हैं कि बिहार से ही इन्होंने अपना संदेश हम तक पहुंचाया है और एक गीत की भी रिक्वेस्ट भेजी है, रोहतास बिहार से सोनम अनामिका जी। तो आज जो है हम थोड़ा सा मिक्स म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं लेकिन आपके गीत को लेने की पूरी कोशिश करेंगे। ताज मोहम्मद जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, अपना आदरणीय नमस्कार हम तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास संदेश आया है मुकेश पाटा जी का, बसंत कुमार सिन्हा कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और विकास बंसोड़े जी भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आफताब अंसारी जी, अनिल जैन, सुशांत प्रिया झा ने भी अपनी एक रिक्वेस्ट के साथ अपने संदेश को हम तक पहुंचाया है।

जी हाँ दोस्तों, साथ साथ भाई गाता रहे मेरा दिल, और बिल्कुल गाता रहे आपका दिल। अगर आप खुश हैं तो भी गाने का दिल करता है, अगर आप थोड़े से उदास हैं तो भी गाने का दिल करता है। गीत जो है ना, वो हमारे आसपास हमेशा रहते हैं, चाहे कोई भी ओकेज़न हो। अब देखिए ना, सतीश अनेजा जी ने बहुत खूबसूरत हमें लाइनें लिख के भेजी हैं। लिखते हैं कि हर एक सजदा मकबूल एक खुदा हो जाए, तेरी दुआओं के संग रब की रज़ा हो जाए, मिले आज तुम्हें वो खुशियाँ कि हज़ारों साल तक गम तुझसे खफा हो जाए। बहुत ही खूबसूरत, और कहीं ना कहीं एक संदेश भी है कि वाकई में गम जो है ना, वो सब आपकी ज़िंदगी से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अनिल मोहन जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, लिखते हैं, नमस्कार चेतना जी, हमें ना चाहिए कुछ और दिलकशी के लिए, तुम्हारा प्यार ही बहुत कुछ है मेरी ज़िंदगी के लिए। बहुत खूबसूरत, पहाड़गंज से इन्होंने हमें संदेश भेजा है, साथ में उषा टिल्लू और मधु नायक भी हैं। खूबसूरत, किशन सपकाल जी ने भी अपना नमस्कार हम तक पहुँचाया है। मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में गीत सुनना चाहते हैं, तो किशन सपकाल जी बिल्कुल प्ले करने की कोशिश करेंगे। हम वन बाय वन आप ही के पसंद के जो सॉन्ग्स हैं वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं छूट जाए तो नाराज़ मत होइएगा। साथ में स्वर्ण सिंह जी लोहागढ़ से हमें सुन रहे हैं, और साथ में राजदीप गुरनूर गुरनाल अविराज सिंह भी हैं। अब्दुल गफ्फार जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। बसंत कुमार सिन्हा जी ने भी फिल्म चुकनू से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत की रिक्वेस्ट करी है, और अहमद फूल वाले जी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई। बहुत खूबसूरत, और पाकिजा फिल्म से गीत की रिक्वेस्ट भेजी है इन्होंने, और ये हैं अहमद फूल वाले, और ये हमें करजत मुंबई से मैसेज भेज रहे हैं। नवी हसन जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, मरसूल हसन जी कार्यक्रम सुन रहे हैं, फागुराम यादव, जसवीर सिंह, दीपेश वर्मा, अनिल मोहन, और एक हमारे पास संदेश आया है मेरा साया फिल्म से गीत सुनने का, और इन जनाब ने चंडीगढ़ से हमें संदेश तो भेजा है, लेकिन नाम है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। खूबसूरत, तो मेरी भी फेवरेट फिल्म्स में से है साया, मेरा साया बिल्कुल प्ले करने की कोशिश करूँगी आपके बहाने, कहीं ना कहीं मेरी पसंद भी इस कार्यक्रम में प्ले हो जाएगी। रश्मि पांड्या जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया है, राजकोट गुजरात से। लिखते हैं कि वाकई आप जो आती हैं तो श्रोताओं को पूरा आनंद आ जाता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत, आपके ये मोटिवेशनल जो संदेश होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मेरी ऊर्जा को, मेरी एनर्जी को बहुत बढ़ाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, कैसे मैं किसी का सहारा बनूँ। भाई सहारे की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं हमें, लेकिन वो सहारा ना आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कमज़ोर कर दे, मजबूत बनाए, वो सहारा होना चाहिए। और मोहब्बत के लिए प्रीति ने हमें दिल्ली से मैसेज भेजा है, लिखती हैं कि मोहब्बत नाम है उस एहसास का जो हो जाए तो जीना सिखा दे और ना हो तो सांस लेना भी सजा दे। बेहद खूबसूरत। शायद आप मोहब्बत में हैं किसी के साथ, तभी इतना खूबसूरत संदेश आपने हम तक पहुंचाया। और सभी लिसनर्स जो मुझे सुन रहे हैं उन तक भी ये बात पहुंच गई होगी, वाकई में अगर कोई मोहब्बत में है और उससे बात ना हो, इंतज़ार हो, तो वाकई में वो मोहब्बत ना सजा सी बन जाती है। खैर, हो सकता है ये इनके विचार हैं। पंजाब से हमें संदेश भेजा है सोमदत्त, कैरव, ज्योति, रानी, गुरमत और मनु ने, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत की रिक्वेस्ट भेजी है। और इन्होंने बचपन फिल्म से एक फिल्म की रिक्वेस्ट भेजी है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और जब मैंने रिक्वेस्ट को देखा ना अपनी स्क्रीन पर कि ये बचपन फिल्म से गीत था, हमेशा हम गुनगुनाते थे इस गीत को, लेकिन जब ये आज मैंने रिक्वेस्ट में देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। बहुत खूबसूरत गीत है, इसे सुनेंगे अभी। साथ में आपके संदेश भी ले लेते हैं। हाजी मजहर जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, ये हमें सुनते हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से। और रियासत हुसैन जी, बसंत कुमार सिन्हा, सोमदत्त जी ने ये हमें पटियाला पंजाब से रिक्वेस्ट भेजी है। बहुत खूबसूरत गीत है, चलिए इसका गीत को सुनते हैं और फिर लौट के आते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। मैं हूँ आपके साथ चेतना। और श्रोताओं, बहुत सारे खूबसूरत संदेश और बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं और इतनी सारी अच्छी बातें। दिलावर खान जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया रघुवीर नगर से। ये हमें सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि जिंदगी को इतना शानदार बनाओ कि याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में ना चमक आ जाए। बिल्कुल सही बात कि जिंदगी को इतना शानदार या अपनी शख्सियत को इतना शानदार बनाना चाहिए कि आपका नाम सुनकर या आपको देख के लोग खुश हों। लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो ज़रूर आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। और अनिल मोहन जी का मैसेज आ गया है, बहुत खूबसूरत बधाई के साथ इन्होंने अपने संदेश को भेजा है। लिख रहे हैं कि सकारात्मक सोच ही जीवन की दिशाओं को नया मोड़ देती है। कब कहाँ किस पल निराश जीवन में खुशियों की बहार आ जाए नहीं मालूम। हाँ, इतना ज़रूर है कि वक्त हमेशा समान नहीं रहता, बुरा वक्त भी धीरे धीरे ढल जाता है। इसलिए हम तो बस इतना ही कहेंगे कि पोछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो बात बने। बहुत बहुत खूबसूरत आपके संदेशों के साथ, आपकी बात के साथ। जब कोई ना कोई ऐसी मोटिवेशनल बात होती है ना, तो गीतों के साथ कार्यक्रम का आनंद आता है। इसी के साथ साथ अश्विनी चुग जी ने भी हमें अपना संदेश भेजा है। लिखते हैं कि मुस्कुराहट भी एक खुशी है जनाब, लीजिए और दीजिए, कुछ भी कम नहीं होगा। पंचकुला से आशु चुग, अश्विनी और गोविंद है। बिल्कुल सही बात है, जब मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके सामने आता है ना, तो सब खुश हो जाते हैं। चाहे उदास व्यक्ति भी है, कहीं ना कहीं हल्की सी एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ज़रूर आती है। तो उदास मत रहिए, मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बना के रखिए। और इन्हीं सारे संदेशों में हमारे पास एक शिकायत भरा संदेश भी आया है बसंत कुमार सिन्हा जी का। वो लिख रहे हैं कि आप प्रोग्राम को सुन रहा हूँ, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है, गीत लाजवाब है, मन खुश हो गया है। लेकिन अफसोस सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ नाम ही पढ़ती हैं, पता नहीं। तो बसंत कुमार सिन्हा जी, कभी कभी क्या कार्यक्रम में गीत भी होते हैं, आपके संदेशों को भी शामिल करना होता है, तो इतना समय नहीं होता कि हम पूरा संदेश पढ़ सकें। और हमारी शिकायत तो इतनी रहती है कि एक ही लिसनर बहुत सारे संदेशों को एक साथ भेजते हैं, तो एक ही संदेश को आप अपनी बात के साथ भेजेंगे तो शामिल करना आसान हो जाएगा। ये थे दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा। उम्मीद करती हूँ आपकी शिकायत दूर हो गई होगी।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म कामचोर से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, खूबसूरत गीत। उम्मीद करते हैं आप सभी ने पसंद ज़रूर किया होगा। और हमारे पास संदेश आ गया नजफगढ़ से, और शाहरुख फारूक है, शबनम शहनाज हैं ये, और लिख रहे हैं कि ये हाल तो तब है जब सब कुछ यहीं रह जाना है, क्या होता अगर हम सब कुछ साथ ले जा पाते। बिल्कुल सही बात, ये हाल तो तब है जब हम सभी जानते हैं कि यहीं पे सब रह जाएगा, उसके बाद भी शिकायतें नफ़रत का माहौल कहीं ना कहीं बना रहता है। तो बहुत खूबसूरत बात है, हम कहीं ना कहीं अपने दिल की बात ना इस कार्यक्रम में रखते हैं, जो भी हमारे दिल में दिमाग में चलता है वो हम रख देते हैं। और अनिल मोहन जी के साथ साथ बहुत सारे, नासिर शेख जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं कि अगर कोई निराश है, अगर कोई हौसला बढ़ाओ, खुश हो जाओ, ऐसी कोशिश करें। बिल्कुल सही है, और ये हमें फ़ातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख जी नाजिया हमें संदेश भेज रही हैं। और देखिए ना कितना अच्छा लगता है कि आप और मोटिवेशनल मैसेजेस के साथ साथ अपनी बात को भी रखना चाहते हैं, इसके लिए शुक्रिया। कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। फारूक अली खान जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, और इसी के साथ साथ नारायण खर्चे जी मध्य प्रदेश से लगातार अपने संदेशों को भेज रहे हैं। और ये DN से हमारे पास संदेश आया है, हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, अपनी बात नहीं लिखी है, सिर्फ एक ब्लैंक मैसेज हम तक पहुंचाया है। तो जनाब आप अपनी बात लिखकर भेजिए तो अच्छा लगेगा हमें।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और कार्यक्रम है फिल्म संगीत का आपकी फरमाइश का। मैं हूँ कार्यक्रम में आपके साथ चेतना। जी हाँ, दिलावर खां जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया है। श्री रघुवीर, यह है रघुवीर नगर से दिलावर खां, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू, साथ में उषा मोहन जी भी कार्यक्रम से जुड़ गई हैं, अपनी बधाई भेज रही हैं। रियासत हुसैन जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया है जसपुर उत्तराखंड से, और साथ में लिख रहे हैं प्रोग्राम बहुत खूबसूरत चल रहा है और हमारे नाम को भी शामिल करें, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी जी हैं ये। तो बिल्कुल हमने अपने नाम, आपके नाम को आपकी जगह के नाम के साथ बिल्कुल शामिल कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी सभी पसंद हमने इस कार्यक्रम में शामिल की होंगी। कार्यक्रम में प्रसारित सभी गीत आपने पसंद किए होंगे। अपनी प्रतिक्रियाएँ भेजना ना भूलें, हमें इंतज़ार रहेगा। समय स्टूडियो के घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:55 हो चुके हैं और इस आखिरी गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, इस वादे के साथ कि आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 12 बजने को है। इन मीटरों पर अब हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। फिलहाल रात्रि के 12 बजने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली

0: राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। वेनेजुएला गणराज्य की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज अपना भारत दौरा पूरा कर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हो गईं। सेक्रेटरी और प्रोटोकॉल प्रमुख डॉ. राजेश गांवड़े, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिनव देशमुख, मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर सौरभ कटियार और अन्य गणमान्य व्यक्ति हवाई अड्डे पर विदाई देने के लिए उपस्थित रहे। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart, Shishir Khanal, last evening in New Delhi, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship, one that is built on a strong foundation of vibrant people-to-people ties, cross-border connectivity and shared cultural and religious traditions. He conveyed best wishes for the success of the government in Nepal. The External Affairs Minister said there are strong complementarities between the objectives outlined by the Nepal government and the initiatives that India has taken in the neighborhood. He said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy development cooperation, education, disaster response and culture. Israel's Consul General in Mumbai, Yaniv Rivach, met Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis at his official residence in Mumbai yesterday. During the meeting, Chief Minister Fadnavis thanked Rivach for his recent announcement to install a grand statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Israel, made on the occasion of Shivaji Maharaj's coronation day. Describing the proposal as a historic initiative, Fadnavis assured the Israeli Consul General that the Maharashtra government would extend full support for the installation of the statue.

श्रोताओं, कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और ये है आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको लिए चलेंगे हिंदी फिल्म संगीत के उस सुनहरे दौर में जहां शब्दों की मिठास, भावनाओं की गहराई और शायरी की खूबसूरती ने करोड़ों दिलों को छुआ। आज के सुरों के सफर में बात होगी एक ऐसे गीतकार की जिनके गीत लिखे, जिनके हाथों से, जिनके शब्दों से, जिनके लिखे गीत आज भी प्रेम, विरह और जीवन के रंगों को बड़ी सादगी से बयां करते हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर गीतकार असद भोपाली की। आइए शुरू करते हैं उनके अमर गीतों का ये खूबसूरत सा सफर एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ।

जी हाँ, असद भोपाली के गीतों में वो मिठास थी जो मिठास आज भी बरकरार है, वो मिठास आज भी हम लोगों के दिलों पर छाई हुई है, वो मिठास जो एक कलाकार की जज्बे की होती है। दोस्तों, हर कलाकार अपने नाम के लिए, अपने संघर्ष के लिए और अपनी पहचान के लिए हर वक्त आगे बढ़ता रहता है। असद भोपाली का असली नाम था असदुल्लाह खान। उनका जन्म 10 जुलाई 1921 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। बचपन से उन्हें उर्दू शायरी और

साहित्य में गहरी रुचि थी। कम उम्र में ही उन्होंने गजलें और नज्में लिखना शुरू कर दिया था। उन दिनों भोपाल में होने वाले मुशायरों में उनकी शायरी खूब सराही जाने लगी। धीरे धीरे असद भोपाली का नाम साहित्यिक जगत में पहचान बनाने लगा। उनकी लेखनी में प्रेम था, संवेदना थी और आम इंसान के जज्बातों की सच्ची और उजली

जी हाय मेरे दिले नादान, तू कल से ना घबराना। कुछ ऐसा ही एहसास और ऐसा ही संदेश उनकी गीतों से सामने आता है जिसकी बात हम कर रहे हैं। कलाकार हैं असद भोपाली और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। दोस्तों, हर कलाकार की जिंदगी में संघर्ष का एक अध्याय जरूर होता है। 1949 में एक बड़े मुशायरे में असद भोपाली की मुलाकात फेमस निर्माता या यूं कहें प्रसिद्ध फिल्म निर्माता फैजल ब्रदर्स से हुई। उनकी शायरी से प्रभावित होकर उन्होंने मुंबई आने का निमंत्रण मिला, लेकिन मुंबई की राह आसान नहीं थी दोस्तों। न कोई पहचान, न कोई फिल्मी पृष्ठभूमि, बस अपनी कलम और प्रतिभा के भरोसे वो सपनों की नगरी पहुंच गए। कई दिनों तक उन्हें स्टूडियो के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार वो दिन आया जब असद भोपाली को फिल्मों में पहला अवसर मिला। 1949 की फिल्म दुनिया के लिए उन्होंने गीत लिखे और यही उनकी यात्रा की शुरुआत थी। वो यात्रा जो कभी खत्म नहीं हुई, वो यात्रा जो आज भी चलती जा रही है, गानों के जरिए, संगीत के जरिए, शब्दों के जरिए और उनके उस एहसास के जरिए जो आज भी हम महसूस करते हैं उनकी एब्सेंस में भी।

दोस्तों जब बात आती है असल भोपाली की तो उनके गीत चाय की उस प्याली की तरह हैं जो सुबह ना मिले तो कुछ अधूरा लगता है। उनके गीत कुछ इसी तरह से हैं। दोस्तों फिल्म उद्योग में धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। निर्देशकों और संगीतकारों को उनकी सरल लेकिन प्रभावशाली लेखन शैली बेहद पसंद आने लगी। 1950 और 1960 के दशक में असद भोपाली का नाम तेजी से लोकप्रिय होने लगा। उन्होंने उस दौर के कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। उनके गीतों में प्रेम की कोमलता और शब्दों की सहजता दिखाई देती थी।

यही वजह थी कि आम श्रोता उनके गीतों से तुरंत जुड़ जाते थे। उनके गीतों को मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश और आशा भोसले जैसे महान गायकों ने अपनी आवाज़ दी, और वही आवाज़ आज भी

वाकई में वो जब याद आए बहुत याद आए और ऐसे याद आए कि बार बार याद आए। कुछ इसी तरह की बातें, कुछ इसी तरह के एहसास, कुछ इसी तरह के संदेश असद साहब के गीतों में नजर आते थे और वही रंग, वही रंगीनियत और वही फूलों का चमकीला रंग उनके गीतों में नजर आता था। जब भी हम असद साहब के गीत सुनते हैं, उनके सामने हम कुछ भी बोलें, लेकिन उनका गीत जब आता था, वो उनकी उनका उनका शख्स, उनकी जो मुस्कान सामने आती थी, तो लगता था कि हाँ, उनके गीत और उन्हीं के गीत हैं जो इस तरह से आज भी हमारे दिलो जुबान पर, दिलों पर और हमारे कानों में शहद और मिश्री की तरह घूमते हैं। श्रोता, हम बात कर रहे हैं असद भोपाली की और कार्यक्रम है सुरों का सफरनामा। असद भोपाली ने अपने करियर में लगभग 400 से ज्यादा गीत लिखे। उन्होंने सफल फिल्मों के साथ साथ अपनी लेखनी का जादू ऐसा बिखेरा कि वो हमेशा के लिए छा गए। इनकी फिल्में हैं टार हाउस, पारसमनी, एक सपेरा एक लुटेरा, मैंने प्यार किया, हम हैं राही प्यार के। उनकी खासियत थी कि वो बदलते दौर के साथ खुद को ढाल लेते थे। 1950 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक उन्होंने लगातार यादगार और

जी हाँ श्रोताओं, बात तो कुछ इसी तरह की है जिसका एहसास आज भी हम करते हैं। बात असद भोपाली की हो रही है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, और ये है AIR लाइव न्यूज 24/7 आकाशवाणी दिल्ली का ये खास चैनल। श्रोताओं, अब बात करते हैं कुछ ऐसे गीतों की जिन्होंने असद भोपाली साहब को अमर बना दिया। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वो जब याद आए बहुत याद आए, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, कबूतर जा जा जा, आते जाते हंसते गाते और आजा शाम होने आई। इन गीतों ने अलग अलग पीढ़ियों के दिलों में अपनी जगह बनाई। पीढ़ियां कुछ भी हों, लेकिन पीढ़ियां कोई भी हों, लेकिन असद साहब के गीतों की जो गुनगुनाहट है हर पीढ़ियों से आती है, हर पीढ़ियों में सुनाई देती है, चाहे वो जेंजी हो, मिलेनियल हो या उससे पहले की पीढ़ियां, हर कोई असद साहब के गीत सुनना चाहता है, जानना चाहता है।

दोस्तों, असद भोपाली को उनके योगदान के लिए अनेक सम्मान मिले। फिल्म मैंने प्यार किया के गीतों को खूब सराहना मिली। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि उन्होंने 4 दशकों से ज्यादा समय तक फिल्मों में बेहतरीन गीत दिए। उनकी शायरी में सादगी थी, लेकिन गहरा प्रभाव था जिसकी झलक उनके हर गाने में दिखती थी। असद भोपाली का मानना था कि गीत सीधे दिल से निकलना चाहिए और सीधे दिल तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कभी शब्दों की जटिलता पर भरोसा नहीं किया। उनके गीतों में प्रेम, उम्मीद, दर्द और जीवन की सहज भावनाएं दिखाई देती थीं। यही वजह है कि उनके गीत समय की कसौटी पर खरे उतरे।

जी हाँ श्रोताओं, ये वो गीत हैं जो आज भी लोगों की जुबां पर हैं, ये वो गीत हैं असद भोपाली के जो आज भी हर एज ग्रुप के, हर जनरेशन के लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। आप सुन रहे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और ये है आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल। श्रोताओं, 1989 में रिलीज हुई फिल्म मैंने प्यार किया ने असद भोपाली के करियर को नई ऊंचाई दी। फिल्म के गीत जबरदस्त हिट हुए, युवा पीढ़ी उनके लिखे गीतों को हाथों हाथ लिया, विशेष रूप से दिल दीवाना, कबूतर जा जा और आते जाते हंसते गाते आज भी सदाबहार गीतों की सूची में शामिल है। श्रोताओं, जाते जाते आपको असद भोपाली साहब का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 9 जून 1990 को असद भोपाली इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन एक सच्चा कलाकार कभी नहीं जाता। वो अपने शब्दों, अपनी रचनाओं और अपनी यादों में हमेशा जीवित रहता है। असद भोपाली ने हिंदी फिल्म संगीत को जो अनमोल गीत दिए, वो आज भी हमारी भावनाओं की आवाज बने हुए हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं सुरों का सफरनामा का ये विशेष अंक जिसमें आज हमने बात की असद भोपाली की। अंत में सुनते हैं उनका एक और सदाबहार सा गीत, फिर मुलाकात होगी एक और महान कलाकार के जीवन के सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। रात के 1 बजने को हैं, अब समाचार होंगे। पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शेशेर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में

0: चलो चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा दुश्मन।
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।
1: अच्छा जी, ओह टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया। क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है।

0: फूलवती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही वो
1: रहने दो काका, रहने दो,
2: मैं बोलता हूँ। फूलवती, काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
3: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

झांझ जप बाजत तापर नाच त कृष्ण कन्हैया गोपी लगे संग राज रचावत नाच चावत ताता तैया थई तैया थई तैया गेंद गेंद गिरी यमुना बिच नित्य कियो तहां नागन थैया गोप के इंद्र चढ़ो बिज ऊपर गोपी करत सब हा हा दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देनु चरैया जगके मोहन मन में माये नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

ये लगता है कि यहाँ

0: मोहिबे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। गाजा में इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित लगभग 7 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि काहिरा में हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्धविराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इसराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन

0: से सर को हुस्न वालों पास आ बैठो।
1: हमारा हुस्न मेरा हो

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर। रात के 3 बजने को हैं, अब समाचार होंगे। पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने भुजबल के आसपास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गजलें। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं बेगम अख्तर की आवाज़ में गज़ल ए मोहब्बत।

गजल गायकी का ये अंदाज अभी तक छाया हुआ है। कई नए नए फनकारों ने इस अंदाज को बरकरार रखा है, जैसे

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी, और लीजिए अब पेश है राधिका चोपड़ा की आवाज़ में ये गज़ल दर्द-ए-उल्फत।

जीप्स ने श्री घनश्याम वैश्वानी की आवाज़ में गज़ल मोहब्बत में दिखावे।

0: इसके साथ ही आज की गजलों का ये कार्यक्रम भी यही होता है संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के ठीक 4 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इसके अंतर्गत आज आप

करेंगे बांसुरी वादन। कलाकार हैं जी रघु रमन। आपने प्रस्तुत किया है रागम मध्यमवती। संगीतकार हैं श्री श्यामा शास्त्री। आपके साथ मृदंगम पर संगत किया है एम बी चंद्रशेखर ने और वायलिन पर साथ दिया है वी एस आनंद ने। तो लीजिए प्रस्तुत है जी रघु रमन का बांसुरी पर बजाया रागम मध्यमवती।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे बांसुरी वादन। कलाकार थे जी रघुरमन। आपने प्रस्तुत किया राग मध्यमवती। संगीत दिया था श्री श्यामा शास्त्री ने। मृदंगम प्रसाद दिया था MV चंद्रशेखर ने और वायलिन प्रसाद दिया था VS आनंद ने।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शनिवार है। आज रविवार है। शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून 2026। सुबह की 4:58 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने

0: भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Realize the full potential of our ties.
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में कल श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा भी की। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कल मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। 21 वर्षीय सागर जगलान ने फाइनल में तामिर एशिनिमायेव को 3-2 से हराकर पुरुषों के फ्री स्टाइल 74 किलो वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय पहलवान ने क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश के जयदीप को 7-2 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद सागर ने सेमीफाइनल में मंगोलिया के तोलुई मुखबंत को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 10-0 से मात दी। मौसम विभाग ने आज केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर सुबह की 5:10 में है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।
1: आओ योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख

आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें। यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें। हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती है। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें। यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंडासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। आपकी कोहनी आपके बाएं कान के साथ मिल रही होगी। अब दाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे से लेकर बाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें और इस अवस्था में भी लगभग एक मिनट श्वास लें। कुछ देर बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों के लॉक को खोल दें और पुनः दंड आसन की स्थिति में आ जाएं।

0: इस तरह आपका एक चक्र पूरा हुआ। हाथों के पंजों को पीछे पकड़े रहने की सुविधा अनुसार 30 सेकंड से 1 मिनट की स्थिति तक रह सकते हैं। इस आसन के चक्र को 2 या 3 बार दोहरा भी सकते हैं। गौमुख आसन करते हुए कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे किसी भी अन्य आसन को करते समय। यदि आपके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर रोग हो तो गौमुख आसन न करें। इसी तरह जबरदस्ती पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ने का प्रयास न करें। जब आप इस आसन को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया इतनी आसानी से न हो पाए। जब धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ता चला जाए और शरीर को कष्ट ना हो, तब कोशिश करें कि पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ा जाए। चलिए अब इस आसन के लाभ से आपको अवगत करवाया जाए। गौमुख आसन करने से हाथ और पैरों की मांसपेशियां चुस्त और मजबूत बनती हैं। योग करें, हर रोज करें और अपने चेहरे पर योग करते समय मुस्कान को बनाए रखें, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके जीवन को सुखमय बना देगी, रोग से दूर कर देगी। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 5:30 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको हम सुनवाएंगे बिमल मुखर्जी का सितार वादन। आपने प्रस्तुत किया है राग भटियार।